मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई सन 2026।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। 6 बजने वाले हैं। कुछ पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही

0: में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सू के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आराधना कार्यक्रम की आइए शुरुआत करते हैं देश वंदना से और सुनते हैं समूह स्वरों में ये देशभक्ति गीत।

गूंजे जय ध्वनिया, गूंजे आराधना। देशगान में अभी आपने समोसरों में ये देशभक्ति रचना सुनी। आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में ये भजन।

हरिओम शरण के स्वर में अभी आपने शिव भजन सुना। आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये राम भजन। बोल हैं, हे राम जग में साँचो तेरो नाम। आइए सुनते हैं ये भजन।

जगजीत सिंह के स्वर में अभी आपने राम भजन सुना, आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में कृष्ण भजन। बोल हैं मुरली की हर तान पे राधा का नाम सजे रे।

0: हरिओम शरण और साथियों के स्वर में अभी आपने ये कृष्ण जी की आरती सुनी। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं विचार बिंदु। शीर्षक है परवरिश। संकलन और वाचन स्वर शबनम खानम का है।
1: परवरिश यानी संस्कारों की छाओं और प्रेम की सबसे सुंदर विरासत। ये वो मौन प्रक्रिया है जिसमें केवल एक बच्चे का बचपन नहीं संवरता बल्कि उसका संपूर्ण भविष्य आकार लेता है। परवरिश केवल पालन पोषण नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की सबसे सुंदर कला है। परवरिश केवल बच्चे को बड़ा करने की प्रक्रिया नहीं होती बल्कि ये उसके व्यक्तित्व, विचारों और संस्कारों को आकार देने की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी होती है। ये केवल देखभाल का नाम नहीं बल्कि प्रेम, धैर्य, अनुशासन और संवेदनाओं से बुनी हुई वो यात्रा है जो किसी मासूम मन को एक सुंदर व्यक्तित्व में बदल देती है। ये वो आधार है जिस पर किसी भी इंसान का भविष्य खड़ा होता है। जिस प्रकार एक माली अपने पौधे को प्रेम, धैर्य और देखभाल से सींचता है, उसी प्रकार अच्छी परवरिश एक बच्चे के जीवन को सुंदर दिशा देती है। परवरिश का अर्थ केवल भोजन, वस्त्र और शिक्षा देना नहीं। सच्ची परवरिश वो है जहां बच्चे को अच्छे संस्कार, संवेदनशीलता, आत्मविश्वास और मानवता का पाठ सिखाया जाए, क्योंकि जीवन में केवल सफल होना ही पर्याप्त नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना उससे कहीं अधिक आवश्यक है। बच्चों का मन एक कोरे कागज की तरह होता है। वे वही सीखते हैं जो अपने आसपास देखते और महसूस करते हैं। इसलिए माता पिता और परिवार का व्यवहार ही उनकी पहली पाठशाला बन जाता है। यदि घर में प्रेम, सम्मान और सकारात्मकता का वातावरण हो तो बच्चे के भीतर भी वही गुण सहज रूप से विकसित होने लगते हैं। अच्छी परवरिश में अनुशासन भी होता है लेकिन वो कठोरता से नहीं, समझ और स्नेह से जुड़ा होता है। जब बच्चों को सही और गलत का अंतर प्रेम पूर्वक समझाया जाता है तब वे डर से नहीं बल्कि समझदारी से सही रास्ता चुनना सीखते हैं। यही समझ आगे चलकर उन्हें मजबूत और जिम्मेदार इंसान बनाती है। परवरिश का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है।

0: कि बच्चों को केवल जीतना नहीं बल्कि हारना और फिर उठना भी सिखाया जाए। जीवन हमेशा आसान नहीं होता, इसलिए यदि बचपन से ही धैर्य, संघर्ष और आत्मविश्वास का भाव दिया जाए तो वे हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाते हैं। आज के आधुनिक समय में जहां तकनीक और व्यस्तता ने रिश्तों के बीच दूरी बढ़ा दी है, वहां बच्चों को समय देना सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। खिलौनों और सुविधाओं से अधिक उन्हें अपनापन, संवाद और साथ चाहिए। कई बार माता पिता की एक मुस्कान, एक प्रेरणादायक बात या कुछ पल का साथ बच्चों के जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। अच्छी परवरिश बच्चों को केवल शिक्षित नहीं करती बल्कि संस्कारित भी बनाती है। ये उन्हें केवल सपने देखना नहीं बल्कि दूसरों के सपनों का सम्मान करना भी सिखाती है। ये उनके भीतर आत्मबल, करुणा और सच्चाई की ज्योति प्रज्वलित करती है। परवरिश में सबसे सुंदर बात यह होती है कि इसका प्रभाव केवल एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता। जिन बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं वे आगे चलकर समाज को भी बेहतर बनाते हैं। परवरिश में शब्दों से अधिक व्यवहार का प्रभाव होता है। यदि माता पिता अपने जीवन में ईमानदारी अपनाते हैं तो बच्चा भी सत्य का महत्व समझता है। यदि घर में बड़ों का आदर होता है तो वही सम्मान बच्चों के स्वभाव में उतर जाता है। इस प्रकार अच्छी परवरिश केवल परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को समृद्ध बनाती है। परवरिश एक जिम्मेदारी से कहीं अधिक एक साधना है। इसमें धैर्य चाहिए, प्रेम चाहिए और सबसे अधिक चाहिए समझ, क्योंकि बच्चे केवल हमारे शब्द नहीं सुनते, वे हमारा व्यवहार भी पढ़ते हैं। और सच तो ये है कि किसी बच्चे को दी गई सबसे बड़ी विरासत धन नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और सुंदर परवरिश होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु, शीर्षक था परवरिश, संकलन और वाचन शबनम खानम का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

पवित्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए।

0: लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के स्वर में आप सुन रहे थे रामचरितमानस का गायन। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बात। जानकारी का विषय है अपना पोल्ट्री फार्म कैसे शुरू करें।
1: अपना पोल्ट्री फार्म बनाकर हम अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं, आज की खेती की बात में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है, और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। वाणिज्यिक पोल्ट्री उत्पादन स्थापित करने के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो ज़्यादा बेहतर होगा। भूमि का क्षेत्र उन पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है जिन्हें आप पालना चाहते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। शोरमुक्त और शांत जगह का चयन करें। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो। साथ ही भूमि का चयन करते समय पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का एक बड़ा स्रोत सुनिश्चित करें। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें, और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपका परिवहन का व्यय काफ़ी हद तक बच जाएगा। जमीन खरीदने से लेकर मुर्गी पालन तक आपको काफ़ी खर्च करना पड़ता है, इसलिए पहले आप वित्त व्यवस्था की ओर ध्यान दें। अगर आपके पास जमा पूंजी है तो ठीक है, अन्यथा आप बैंक लोन के बारे में भी विचार कर सकते हैं।

0: वर्तमान में बैंक पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन प्रदान करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे मुख्य कदम होता है मुर्गियों का चयन करना। दरअसल आपको पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि मुर्गी पालन के जरिए आप किस तरह आमदनी करना चाहते हैं। मसलन आप अंडे बेचना चाहते हैं या मीट। अगर आप अंडे उत्पादन करके उन्हें बेचना चाहते हैं तो इसके बाद बारी आती है मुर्गियों के लिए घर तैयार करने की। हालांकि यह ज़मीन खरीदने जैसा महंगा भी नहीं है। पोल्ट्री पक्षियों के लिए एक अच्छा घर बनाने के कई तरीके हैं। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि घर या पिंजरे पर्याप्त और विशाल हों ताकि पक्षियों को उसमें किसी तरह की परेशानी ना हो। उनके पिंजरे में उचित वेंटिलेशन सिस्टम बनाएं। घर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ताज़ी हवा और प्रकाश का प्रवाह सुनिश्चित करें। यदि आप बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन करना चाहते हैं तो कई घर बनाएं और एक घर से दूसरे घर की दूरी कम से कम 40 फीट रखें। घर को हमेशा साफ और ताज़ा रखें और चूज़ों को खेत में लाने से पहले अच्छी तरह साफ कर लें। इसके अलावा घर के अंदर एक उपयुक्त जल निकासी व्यवस्था भी बनाएं। यह आपको घर को आसानी से साफ करने में मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय अच्छा चले तो आपको मुर्गियों का सही तरह से ख्याल रखना होगा। अच्छे और उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन कमर्शियल पोल्ट्री उत्पादन के लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ कई पोल्ट्री फीड उत्पादक कंपनियाँ उपलब्ध हैं। वे सभी प्रकार के पोल्ट्री पक्षियों के लिए फीड का उत्पादन करते हैं। आप अपने पक्षियों के लिए उन भोजन का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पोल्ट्री रोगों के कारण हजारों किसान भारी नुकसान का सामना करते रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने पक्षियों की अच्छी और उचित देखभाल करें और उन्हें पौष्टिक भोजन और स्वच्छ पानी प्रदान करें। उनका समय समय पर टीकाकरण करें और कुछ सामान्य और आवश्यक दवाओं का भंडारण भी जरूर करके रखें ताकि उन्हें समय समय पर दिया जा सके। पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस का आखिरी और सबसे मुख्य स्टेप है मार्केट की तलाश करना। इसके लिए आप सबसे पहले अपने लोकल मार्केट में कस्टमर ढूंढें। विभिन्न दुकानों पर आपके अंडे और मीट बिक सकते हैं। अगर आपको अपने काम के लिए बाजार अपने आसपास ही मिल जाता है तो इससे आपका परिवहन खर्च बच जाएगा। इस तरह से किसान भाई अगर अपना स्वयं का पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और उससे अच्छी आय प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सब मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा, तभी वो अपना पोल्ट्री फार्म खोलकर बनाकर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं।
1: कार्यक्रम खेती की बात में अपना पोल्ट्री फार्म कैसे शुरू करें, इस विषय पर जानकारी अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, और अब आइए हम आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

हमारी इस पहली सभा में सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल। इसमें आज हम आपको सुनाएंगे विजय सरदार और साथियों के गाए सरस्वती वंदना गीत, रामलल्लू पांडे और साथियों के गाए देवी पचरा गीत और धर्मसाय राजवाड़े और साथियों के गाए बायर गीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:15 पर आज हम आपको सुनवाएंगे हरिहरन की गाई गजलें। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुरानी फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा पेश करेंगे सुबह 7:30 पर। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम इनसे मिलिए हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन पेश करेंगे सुबह 9 बजे और नए तराने आप सुनिएगा सुबह 10 बजे। सुबह 11:05 पर श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री का प्रसारण होगा। 12 बजे सुनिएगा NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। एक ही शीर्षक से लिए गए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन पेश करेंगे दोपहर 12:30 पर। ग्रामीण महिलाओं के लिए गर्गोसैन कार्यक्रम प्रसारित करेंगे दोपहर 1:10 पर। इसमें सामयिक चर्चा के अलावा सुनिए

0: का क्रम किस्सा कहने और साथ ही अन्य विषयों पर चर्चा आप सुन सकेंगे। दोपहर 1:40 पर श्रोता साथियों के ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंदा पेश करेंगे दोपहर 2:30 पर। हमारी तीसरी सभा में शाम 5 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। 5:05 पर भजन संध्या और युवा श्रोताओं की युवाणी आज शाम 5:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। लोकगीतों का कार्यक्रम गोदली शाम 6:20 पर। फिल्मी गीतों से सजी माधुरी शाम 6:30। आज शाम 7:05 पर सुनिएगा सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम चौपाल सुन सकेंगे शाम 7:20 पर। रात 8 सुनिएगा सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। चित्रपट संगीत रात 9:15 पर और ईमेल की गूंज आप सुनेंगे रात 9:30 पर। शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम राग प्रधान पेश करेंगे रात 10 और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन आज रात 10:30 पर। इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदेहल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडॉलिड्स इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। श्री क्रिस्टोडॉलिड्स इत्येषः ह्यः नवदेहल्लीं प्राप्तवान्। विमानस्थानके केंद्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा इत्यनेन तस्य स्वागतं कृतम्। सः मुंबईनगरम् अपि गतवान्। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः च परस्पर हितस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपाक्षिक सहकरणं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः। वार्तायाः अनन्तरं अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विनिमयञ्च भविष्यति। श्रीमोदी अतिथिविशेषस्य सम्मानार्थं भोजस्य आयोजनं करिष्यति। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सहापि मिलिष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्य अवदत् यत् विश्वं भारतदेशं विश्वसनीयसहभागिरूपेण पश्यतीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीवर्यस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः विषये नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीगोयलः अवदत् यत् इयं यात्रा समाजस्य प्रत्येकवर्गाय लाभस्य प्रत्याभूतिं करोतीति। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिमण्डलस्य भ्रमणेन प्रतीयते यत् भारतं वैश्विकस्तरे दृढतया स्थितम् अस्तीति। सः एकस्य प्रश्नस्योत्तरे अवदत् यत् राहुलगान्धिनः नकारात्मकराजनीतेः कारणात् जनाः निर्वाचने काङ्ग्रेसेति दलं निराकृतवन्तः। पश्चात् अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतम् अमेरिकाञ्च स्वाभाविकसहभागिरूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रौद्योगिकी नवान्वेषणं रक्षा डिजिटल दत्तांशकेन्द्राणि क्वांटम कंप्यूटिंग अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्। सशस्त्रलुण्ठनं सागरीय आतंकवादः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणम् अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रितमत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीयसङ्कटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्च

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए पेश है लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं विजय सरदार और साथियों के स्वर में ये सरस्वती वंदना गीत।

लोकगीतों की कार्यक्रम गुंजे जंगल में आइए अब सुनते हैं रामलल्लू पांडे और साथियों की आवाजों में ये देवी पचरा गीत।

धर्मसाय राजवाड़े और साथियों के स्वर में अभी आपने बायर गीत सुना। इसी के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 और 25 सेकंड हुए हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की गाई गजलें। पहली गजल आइए सुनते हैं हरिहरन की आवाज में। शब्द रचना खुमार बाराबंकवी की है और संगीत निर्देशन हरिहरन का है। बोल हैं, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। आइए सुनते हैं ये प्यारी सी गजल।

मुझे फिर वही याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। हरिहरन की गाई ये गजल अभी आपने सुनी। सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। अगली गजल आइए सुनते हैं हरिहरन की आवाज में ही। शब्द मुशीर झुंझानवी के हैं और संगीत निर्देशन हरिहरन का है। गजल के बोल हैं, जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, कुछ खास दोस्तों के भी चेहरे उतर गए।

0: हरिहरन की गाई इसी मजमुआ गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। पेश है जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को कल्पना सिन्हा का नमस्कार। श्रोताओं, सूचनाओं का क्रम शुरू करते हैं। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। इस जानकारी के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म CID से। आवाज शमशाद बेगम की है, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत निर्देशन OP नैयर का है।

हिंदुस्तान का तेरा तू। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

0: श्रोताओं, अभी आपने श्री रामचंद्र और शमशाद बेगम की आवाजों में सुना फिल्म पतंगा का गीत। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की थी और संगीत निर्देशन श्री रामचंद्र का था। और अब आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: चल छैया।
2: आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
3: तुम भी चलो, हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी।
2: चलिए बनाएं एक मिसाल अपनी प्यारी संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
4: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी 23 मई 2026।

26 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।

इस संदेश के बाद अगली सूचना है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा का मॉडल उत्तर विभागीय वेबसाइट https://ekalavya.cg.nic.in पर जारी किया गया है। दावा आपत्ति 30 मई 2026 रात्रि 12 बजे तक लिए जाएंगे। जिले के अंतर्गत दावा आपत्ति करने वाले आवेदक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अंबिकापुर में स्वयं उपस्थित होकर दावा आपत्ति के पक्ष में दस्तावेजों सहित जमा करना होगा। बिना प्रमाण पत्र के दावा आपत्ति को पूर्णतः अमान्य किया जाएगा। प्राप्त दावा आपत्ति के परीक्षण के पश्चात विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दावा आपत्ति के संबंध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। डाक और कोरियर के माध्यम से दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस जानकारी के बाद आइए अगला गीत सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में। फिल्म का नाम है बाजी, शब्द साहिर के हैं और संगीत SD बर्मन का है।

नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम इसमें आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं और इस वक्त मैं हूं जानकारी के साथ कल्पना सिन्हा। अगला समाचार है, एकीकृत बाल विकास परियोजना अंबिकापुर ग्रामीण के परियोजना अधिकारी ने बताया है कि आंगनबाड़ी सहायिका के 2 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक एवं पात्र महिला अभ्यर्थियों से 3 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट https.aww.e.bhrti.in के माध्यम से भरे जाएंगे। रिक्त पदों में सेक्टर सकालों के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र चिखलाडीह में सहायिका 1 और सेक्टर भफौली अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र उरांवपारा में आंगनबाड़ी सहायिका के 1 पद पर भर्ती की जानी है। उन्होंने बताया है कि उक्त पदों पर केवल महिला ही आवेदन कर सकती है। विभागीय वेबसाइट https.aww.e.bhrti.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी परियोजना कार्यालय जनपद पंचायत अंबिकापुर कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। इस जानकारी के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज 55, शब्द मजरूह के हैं और संगीत ओपी नैयर का है।

कार्यालय कलेक्टर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली चयन परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी गई है। आदिवासी विकास विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार विद्यार्थियों के चयन हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से योग्य एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। विभाग ने परीक्षा से संबंधित सभी दिशा निर्देश, आवेदन प्रक्रिया एवं तिथियों की जानकारी जारी करते हुए विद्यार्थियों और पालकों से समय सीमा का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। जारी कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थी 20 जून 2026 तक अपने आवेदन पत्र विद्यालय में जमा कर सकेंगे। इसके बाद विद्यालय प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों के आवेदन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किए जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संकुल वार आवेदनों की सूची तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजी जाएगी। वहीं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय द्वारा राज्य कार्यालय को आवेदन संख्या जिला विकास खंडवार भेजी जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र 24 जुलाई 2026 को जिला मुख्यालय से वितरित किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय से अधिकृत प्रतिनिधि प्रश्न पत्र प्राप्त करेंगे तथा नव रायपुर अटल नगर से उन्हें सुरक्षित तरीके से जिला मुख्यालय लाया जाएगा। जिला स्तर एवं विकास खंड स्तर पर परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई 2026 को किया जाएगा। परीक्षा परिणाम 27 जुलाई 2026 को जिला स्तर पर संकलित कर दावा आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। दावा आपत्ति निराकरण की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद राज्य मुख्यालय द्वारा अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी तथा कक्षा छठवीं की प्रवेश परीक्षा 7 अगस्त 2026 शुक्रवार को आयोजित होगी। परीक्षा से संबंधित विस्तृत सूचना अलग से जारी की जाएगी।

रहेंगे। दावा आपत्ति निराकरण की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद राज्य मुख्यालय द्वारा अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी तथा कक्षा छठवीं की प्रवेश परीक्षा 7 अगस्त 2026 शुक्रवार को आयोजित होगी। परीक्षा से संबंधित विस्तृत सूचना अलग से जारी की जाएगी। आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट एवं जिला कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने तथा विभागीय दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इस जानकारी के बाद आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाजों में फिल्म मुगले आजम का ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

की मंशानुरूप आम नागरिकों को उनके अधिकारों और शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने के लिए चलाए जा रहे सुशासन तिहार का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। शासन की योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन की एक ऐसी सुखद वानगी जिले के उदयपुर विकासखंड के मूड़ गांव में देखने को मिली, जहां एक नवविवाहिता को राशन कार्ड प्रदान कर उसकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई। जिनका हाल ही में विवाह हुआ है, उनके पास विवाह के बाद नया राशन कार्ड नहीं होने के कारण राशन नहीं मिल रहा था। नवविवाहिता होने के चलते उनका नाम किसी कार्ड में दर्ज नहीं था, जिससे परिवार को शासकीय राशन दुकान से मिलने वाले अनाज से वंचित रहना पड़ रहा था। इस समस्या के निराकरण हेतु सेजल ने सुशासन तिहार में खाद्य विभाग को नए राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया। राज्य सरकार के सुशासन तिहार के अंतर्गत लगाए गए जन समस्या निवारण शिविर में सेजल की समस्या का न केवल त्वरित निराकरण हुआ, बल्कि उन्हें नया राशन कार्ड हाथों हाथ सौंपा गया। अपना अधिकार पाकर हितग्राही के चेहरे पर खुशी दोगुनी हो गई है। उन्होंने शासन की इस त्वरित पहल की सराहना करते हुए बताया कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है, तो मेरे पास राशन कार्ड नहीं था, जिसकी वजह से मुझे राशन नहीं मिल पाता था। मैंने इसके लिए फॉर्म भरा था, सुशासन तिहार ने मुझे राशन कार्ड प्रदान किया। नमस्कार सरगुजा में आज की सूचनाएं यहीं तक, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म फिर वही दिल आया हूँ का गीत सुना। इसी गीत के साथ ही नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ का गीत सुना। इसी गीत के साथ ही नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज़।

0: और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट लाइन शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय

0: गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क

0: जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
3: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के

0: आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज दो और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासू और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है

0: पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है, हीट स्ट्रोक का कहर, दो मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाई तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोडोलाइडस इन न्यू दिल्ली टुडे। फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली ऑन जून 1st पोस्टपोन्ड। Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
3: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over 2 decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and Cyprus share close and time-tested partnership. The two countries will mark 65 years of diplomatic relations in February next year. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices relating to boosting ease of living, ease of doing business, and how to further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat.

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज सुनिए वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ श्री वीरेंद्र सिंह से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है रमाशंकर।

0: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी बहुत ही नायाब है और इस पृथ्वी में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब इस जैव पारिस्थितिकी तंत्र के एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं। श्रोताओं, हम जब अपने पृथ्वी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्राकृतिक तत्व हैं उनमें जल, वायु, इस तरह के जो तत्व होते हैं ये हमें धरती पर स्वतः ही प्राप्त हुए हैं। ये एक सीमित संसाधन है, इन्हें बचाए रखना, संरक्षण करना हमारा दायित्व होता है। और श्रोताओं, जल की बात करें तो पृथ्वी का लगभग 70% से ज़्यादा भाग जल से घिरा हुआ है। हमारे पृथ्वी में नदियाँ, तालाब, सागर, महासागर जैसे जल के कई स्रोत हैं, लेकिन पीने के पानी के स्रोत कम ही हैं। और श्रोताओं, शनह शनह जैसे जैसे समय बीत रहा है हमारे पृथ्वी में पानी की मात्रा घटती जा रही है। तो श्रोताओं, जल संरक्षण हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जल का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। और श्रोताओं, जल संरक्षण की बात करते हैं तो ये किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है, ये एक सामूहिक दायित्व होता है जिसके लिए लोगों को जागरूक करना होता है और इसके लिए स्वतः जागरूकता की भी आवश्यकता होती है। श्रोताओं, भारत में कई ऐसे लोग हैं जो जल संरक्षण से जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से वीरेन सिंह जी हैं जो जल संरक्षण के कार्य से कई सालों से जुड़े हुए हैं और इन्हें वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो वीरेन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं वीरेन सिंह दली राजरा जिला बालोद से हूँ। विगत 28 वर्षों से जल संरक्षण के लिए काम कर रहा हूँ। इसमें मैं पारंपरिक हमारे जो हैं तालाब, कुआँ, इन्हें बचाने के लिए मैं जन सहयोग से जुटा हुआ हूं। अब तक छत्तीसगढ़ में 40 तालाबों की सफाई कर चुका हूं। हमारे बालोद जिला का एक तांदुला नदी है, जन सहयोग से इसमें मैंने हर साल अपना योगदान देता हूं और लोगों से निवेदन करता हूं कि नदियों को भी स्वच्छ रखें, इसमें कूड़ा करकट, प्लास्टिक, पॉलीथीन ना फेंकें। और हमारे तालाब जो

0: धरोहर हैं, इन्हें बचाना है। आप इसमें आसपास नहाते हैं तो रैपर, प्लास्टिक, दातुन, ये सब इस पानी में ना फेंकें, इससे पानी प्रदूषित होगा। तो आज हमारे छत्तीसगढ़ का वाटर लेवल को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान तालाबों का ही और कुओं का ही है।
1: जी, तो वीरेन जी, जैसे आप पालो जिले से हैं जो दल्ली राजरा ग्राम है, तो ये जो है एक तरह से हमारा छत्तीसगढ़ का मध्य जो क्षेत्र है, यहाँ कई तालाब हैं, पोखर हैं, नदियां हैं यहाँ पर, और जल के कई स्रोत हैं। तो जब जल संरक्षण का कार्य आपने शुरू किया और आज तक आप देखते हैं कि जो जल के संसाधन थे उनमें क्या अंतर आया है, ये बढ़ रहे हैं कि सिमट रहे हैं?
0: वर्तमान में मैं जहाँ दिल्ली राजरा हूँ, कई प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो 24 घंटे उनके जल प्रवाह होते रहते हैं। आज पानी की तो हमारे यहाँ भरपूर है, बाकी इसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तालाब भी सिमट रहे हैं। छत्तीसगढ़ तालाबों के नाम से जाना जाता था, लोग अब उसे पाट कर आसपास घर बना रहे हैं, कुओं को पाट कर घर बना रहे हैं, जिससे अब पानी का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, धरती में समा रहा है। हम सबको एक जरूरी काम ये करना है कि अपने खेतों में भी पानी के संरक्षण के लिए डबरी उबरी बनाएँ, और किसानों से भी निवेदन करते हैं कि आप गर्मी के दिनों में धान ना बोएं, इसकी जगह कम पानी वाली फसल लें, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर आधुनिक तकनीक का उपयोग करें और उन्नत कृषि का दर्जा पाएं। ये छोटे छोटे प्रयास अभी हम किसानों के साथ भी कर रहे हैं।
1: जी जी जी वीरेन सिंह जी, तो हम एक जो मूल सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है?
0: सोचो एक पल, ना होगा जल तो क्या होगा कल, जल बिना सब सुना, ये कहावत हमने सुनी है। वर्तमान में धरती का बढ़ता हुआ तापक्रम और पानी का जल स्तर गिर रहा है दिन प्रतिदिन। पूरे वर्ल्ड में 71% पानी है खारा पानी, जो पीने योग्य नहीं है। इसमें से मात्र हम 3% पानी का उपयोग मीठा जल के लिए कर रहे हैं, इसमें आधा से अधिक तो ग्लेशियर हैं। आज हमारे आसपास जो वर्षा जल है इसको बचाना है। वर्षा के जल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से, चाहे कुओं के माध्यम से या डबरी के माध्यम से या तालाबों के माध्यम से धरती तक पहुंचाना होगा, तभी हमारे वाटर लेवल बढ़ेंगे और हमें पीने का पानी मिलेगा। ये सब छोटे छोटे प्रयास हम सबको करना होगा।
1: तो वीरेन सिंह जी, जब हम जल संरक्षण की बात करते हैं तो आपने जल संरक्षण में अभी तक कौन कौन से कार्य किए हैं?
0: जल संरक्षण में सर, मैंने जन सहयोग से अब तक 28 वर्षों में 35 से 40 तालाब को साफ सफाई किए हम छत्तीसगढ़ के, और वर्तमान में भी ये जारी है। हमारे यहाँ बहुत सारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, तालाब हैं, वर्तमान में गाँव के लोगों को लेकर इन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार प्रयास अभी जारी है।
1: वीरेन सिंह जी, जब हम छत्तीसगढ़ में आपके किए गए कार्यों की बात करते हैं तो आपको वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, तो ये उपाधि आपको कब मिली और क्यों मिली?
0: वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ मुझे अभी 2026 में कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़ का पहला वेटलैंड घोषित हुआ, वहाँ मुझे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मानित किया गया। मेरे छोटे छोटे प्रयास तालाबों को संरक्षण के लिए लेकर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जन सहयोग भी मुझे मिल रहे हैं, इसलिए मुझे वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ का खिताब से छत्तीसगढ़ शासन ने कोपरा जलाशय में सम्मानित किया। इसके लिए सर मैं जल संरक्षण के काम अपने घर के आसपास से लोगों से निवेदन करता हूँ कि व्यर्थ पानी को बहने ना दें, जहाँ भी पानी बहे उसे रोकना होगा। और मैं तो जहाँ रहता हूँ दिल्ली राजरा, वहाँ तो पानी 24 घंटा अविरल जल धारा प्रवाह है, प्राकृतिक जल स्रोत हैं, तो इन्हें बचाने का भरकस प्रयास करता हूँ। तो लोग आसपास भी मुझे आमंत्रित करते हैं कि हमारे यहाँ भी आइए और एक अभियान के माध्यम से लोगों को संदेश दीजिए। तो मैं गांव में जाता हूँ, वहाँ भी तालाबों को बचाता हूँ, वहाँ भी जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उन्हें संरक्षण के लिए स्कूली बच्चों को लेकर, राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे, स्काउट गाइड सबको लेकर एक जन जागरण नुक्कड़ माध्यम से गाँव वालों को संदेश देता हूँ कि जल को बचाइए, बारिश के जल को आप सब इसको कैच करना है और इसका संरक्षण करना है, तभी हमारे वाटर लेवल बढ़ेंगे।
1: जी जी, तो वीरेन सिंह जी, कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिससे हम जल का शरण कर रहे हैं या जल को हम बर्बाद कर रहे हैं?
0: जल का बर्बादी तो हम अपने घरों से ही हम शुरुआत करते हैं। जैसे हमें पानी की आवश्यकता नहीं है तो हम उसका व्यर्थ उपयोग ना करें। जैसे हमें सेविंग करना है, सावर से नहाना कोई जरूरी नहीं, आप मग और बाल्टी का उपयोग कर सकते हैं, गाड़ी धोने के लिए बाल्टी से उपयोग कर सकते हैं, स्कूटर को बाल्टी से लेकर आप साफ सफाई कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द घर के आसपास कोई नल बह रहा है तो उसको बंद करिए। अपने बच्चों को भी उसको बाल्यकाल से प्रेरित करिए, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के लिए उन्हें आपके

0: संस्कार में शामिल करना होगा। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इस स्वस्फूर्त जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान देंगे। हमें इन्हें अपने घर के आसपास या स्कूल के बच्चों को भी प्रेरित करना होगा। मैं अब तक छत्तीसगढ़ के 2.5 लाख बच्चों को 28 सालों में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर चुका हूँ और निरंतर मेरा प्रयास जारी है।
1: तो वीरेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में अभी आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, तो क्यों ना हम कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम ले और आपकी पसंद का एक गीत सुने।
0: सर, मेरा पसंद का एक गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों में मिलेंगे राहें बहार के, ओ राही ओ राही।
1: वीरेंद्र सिंह जी ने जो गीत पसंद किया है, आइए सुनते हैं।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे वीरेंद्र सिंह जी से, जिन्हें वाटर मैन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ये जल संरक्षण के कार्य से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो वीरेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम जानना चाहेंगे, जो आपने कार्य किए हैं इसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया है, उन्हीं में से एक भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आपको वाटर हीरो और जल प्रहरी के नाम से भी सम्मानित किया गया है। तो इसके बारे में बताएं कि ये सम्मान आपको कब प्राप्त हुआ और क्यों प्राप्त हुआ और ये इसके लिए आप कैसा महसूस करते हैं?
1: लगातार 26-27 वर्षों से जल संरक्षण के लिए प्रयास करते हुए मुझे जल शक्ति मंत्रालय ने 2023 में वाटर हीरो और जल प्रहरी सम्मान से देकर मुझे सम्मानित किया और मुझे बहुत खुशी भी और मुझे ऊर्जा भी मिला। लगातार उसके बाद मैं और जल संरक्षण के लिए ज़ोर शोर से भिड़ा हुआ हूँ और आसपास के लोगों, चाहे स्कूल कॉलेज के बच्चे हों और अपने से ग्रामीण जनता हो, सबको अब साथ लेकर हम जल के लिए जुट चुके हैं। किसानों से साथ हम बैठ रहे हैं कि अब जल के एक एक बूंद बचाना है, बारिश के जल को बचाना है। हमारे पास तालाब हैं, कुआं हैं, बारिश के जल को वहाँ तक, धरती तक पहुँचाने के लिए हमारे पास माध्यम है।

0: वाटर एंड हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी अपनाना है, तो ये छोटे छोटे प्रयास हम सब कर रहे हैं।
1: तो वीरेंद्र सिंह जी, जैसे आपके दल्ली राजरा का क्षेत्र है, बालोद जिला का है, तो वहाँ आपको ग्रीन कमांडो के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में बताइए कि ग्रीन कमांडो क्या होते हैं।
0: सर, हरियाली के लगातार मुझे प्रयास करते हुए बहुत लंबे समय हो गए, तो मुझे शुरुआत करने में 8-10 युवाओं को लेकर जब शुरुआत किया था 25 साल पहले, हमने छोटे छोटे प्रयास करते थे, वृक्षारोपण, गांव में जाकर आसपास बोरिंग तालाबों की सफाई करते थे, और उसके बाद धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता गया। हमने साइकिल से यात्रा करके रात में नुक्कड़ नाटक करके 2007 में हमने पूरे छत्तीसगढ़ का साइकिल से भ्रमण किया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए नुक्कड़ के माध्यम से संदेश दिए। 2008 और 9 में हम भारत और नेपाल की यात्रा की है साइकिल से, और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए पेपर पाम्पलेट के माध्यम से उनको संदेश दिए, और वर्तमान में भी हम लोगों से निवेदन करते हैं आप साइकिलिंग ज़्यादा उपयोग कीजिए, पेट्रोल डीजल का हमें बचाना है और बिजली का भी बचत करना है, तो ये सब हमके छोटे छोटे प्रयास से ये सब ऊर्जा हम बचत होगी और हम देश में आगे एक बढ़ते चले जाएंगे।
1: बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है वीरेंद्र सिंह जी। तो वीरेंद्र सिंह जी, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो इसके लिए हमारा नाम होता है, आपके अच्छे कार्य के पुरस्कारों की बात करते हैं, तो इसकी एक काफ़ी लंबी फहरिस्त आपके पास है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि अभी तक कौन कौन से सम्मान आपको प्रदान किए गए हैं।
0: सर, मुझे तो वाटर हीरो और जल प्रहरी के साथ जल शक्ति मंत्रालय ने मुझे 2023 में सम्मानित किया, इसके साथ साथ 2011 में छत्तीसगढ़ दैनिक भास्कर ने इन्होंने भी सम्मानित किया मुझे, और अब वर्तमान में 2026 में सीट्स संस्था ने रांची में मुझे एकम सम्मान से सम्मानित किया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करते हुए मुझे 26 साल हो गए, इसके लिए एकम सम्मान मुझे मिला। नित्य नए नए अभियान के माध्यम से लोगों को संदेश देने लग जाता हूँ।
1: तो वीरेंद्र सिंह जी, जब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो इसमें जो है प्लास्टिक काफ़ी हानिकारक हो रहा है, और इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, और इससे जलाशयों और जल के संरक्षण में किस तरह बाधा आती है।
0: वर्तमान में हम शादी ब्याह में भी जाकर लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप प्लास्टिक की जगह आप स्टील का गिलास उपयोग कीजिए, दोना पत्तल का उपयोग कीजिए, और हमारे ग्रामीण अंचल में अभी लोग दोना पत्तल तो उपयोग कर ही रहे हैं, वर्तमान में शहरों में थोड़ा सा देखा जा रहा है डिस्पोजल का ज़्यादा उपयोग। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि स्टील गिलास का उपयोग करिए और अपना काम करिए, इस प्लास्टिक पूरे नदी तालाब और पर्यावरण को प्रदूषण कर रहे हैं, ये तो गलती भी नहीं, और धरती में ये पूरा प्रदूषण कर रहे हैं, बंजर भूमि

0: तो इसमें जो है प्लास्टिक काफ़ी हानिकारक हो रहा है, और इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए और इसे जलाशयों और जल के संरक्षण में किस तरह बाधा आती है?
1: वर्तमान में हम शादी ब्याह में भी जाकर लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप प्लास्टिक की जगह आप स्टील का गिलास उपयोग कीजिए, दोना पत्तल का उपयोग कीजिए, और हमारे ग्रामीण अंचल में अभी लोग दोना पत्तल तो उपयोग कर ही रहे हैं, वर्तमान में शहरों में थोड़ा सा देखा जा रहा है डिस्पोजल का ज़्यादा उपयोग। हम उनसे निवेदन करें कि स्टील गिलास का उपयोग करिए और अपना काम करिए, इस प्लास्टिक पूरे नदी तालाब और पर्यावरण को प्रदूषण कर रहे हैं, ये तो गलते भी नहीं, और धरती में ये पूरा प्रदूषण कर रहे हैं, बंजर भूमि को बंजर कर रहे हैं, गौ माता के पेट में समा रहे हैं। तो हम सबको अब सोचना होगा कि इसके जगह वैकल्पिक रूप हम स्टील गिलास ही उपयोग करें और शादियों में दोना पत्तल का उपयोग करें, प्लास्टिक और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग तो बिल्कुल ही ना करें।
0: जी, तो ये जन जागरूकता से ही प्लास्टिक इस्तेमाल को रोका जा सकता है। तो विनय सिंह जी, आपने अभी बताया कि कोपरा जलाशय जो बिलासपुर में है, और यहाँ पर भी वेटलैंड संरक्षण के कार्य के लिए आपको बर्ड वॉक ऑफ संगोष्ठी में आमंत्रित किया गया था, तो इसके बारे में बताएं कि ये आयोजन कैसा था और इस आयोजन का क्या महत्व था?
1: ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ का पहला वेटलैंड साइट रामसर साइट घोषित किया गया। इसमें देश के और भी विशेषज्ञ आए हुए थे, मुझे भी आमंत्रित किया गया और कुछ अपना पक्ष रखने को दिया गया। तालाबों और वेटलैंड को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। ये वेटलैंड साइड हमें मत्स्य हो चाहे कृषि हो, ये हर क्षेत्र में इनका योगदान होता है, वहाँ प्रदूषण नहीं करना चाहिए हमें। ये बात मैंने वहाँ रखी थी कि इसे भी प्रदूषण से बचाना होगा, आसपास

0: कोपरा जलाशय जो बिलासपुर में है, और यहाँ पर भी वेटलैंड संरक्षण के कार्य के लिए आपको बर्ड वॉक ऑफ संगोष्ठी में आमंत्रित किया गया था, तो इसके बारे में बताएं कि ये आयोजन कैसा था और इस आयोजन का क्या महत्व था।
1: ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित कोपरा जलाशय, ये छत्तीसगढ़ का पहला वेटलैंड साइट रामसर साइट घोषित किया गया। इसमें देश के और भी विशेषज्ञ आए हुए थे, मुझे भी आमंत्रित किया गया और कुछ अपना पक्ष रखने को दिया गया। तालाबों और वेटलैंड को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। ये वेटलैंड साइड हमें मत्स्य हो चाहे कृषि हो, ये हर क्षेत्र में इनका योगदान होता है। वहाँ प्रदूषण नहीं करना चाहिए हमें, ये बात मैंने वहाँ रखी थी कि इसे भी प्रदूषण से बचाना होगा। आसपास क्षेत्रों में वृक्षारोपण और हरियाली लाने के लिए भरकस प्रयास सब ग्रामीणों को लेकर करना होगा।
0: तो आपने एक बात और बताई थी, एकम सम्मान 2026 में आपको दिया गया, साथ ही बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2023 में आपको दिया गया, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: छत्तीसगढ़ शासन 22 मई 2023 को जैव विविधता पुरस्कार और 25,000 रुपये से मुझे सम्मानित

0: क्षेत्रों में वृक्षारोपण और हरियाली लाने के लिए भरकस प्रयास सब ग्रामीणों को लेकर करना होगा।
1: तो आपने एक बात और बताई थी, एकम सम्मान 2026 में आपको दिया गया, साथ ही बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2023 में आपको दिया गया, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: छत्तीसगढ़ शासन 22 मई 2023 को जैव विविधता पुरस्कार और 25,000 रुपये से मुझे सम्मानित किया था। मैंने जंगलों में आग लगाने से और जीवों को बचाने के लिए, जैसे गर्मियों में मिट्टी के सकोरे, हर वर्ष 200 सकोरे लोगों को भेंट करता हूं और जंगलों में जाकर वहां पानी की व्यवस्था करता हूं कि जो पशु पक्षियों के लिए, और आग को स्वयं बुझाता हूं। इसलिए शासन ने मुझे जैव विविधता का पुरस्कार भी दिया था। वर्तमान में भी गर्मी के दिनों में लोग महुआ को बीनने जाते हैं और उस नीचे वृक्ष के नीचे आग लगा देते हैं, जिससे पूरा सारा जंगल में आग फैल जाता है। तो ये जन जागरूकता भी मैंने चला रहा है कि आप महुआ को बीनने से पहले उसे झाड़ू से साफ करिए, जंगल को बचाना जरूरी है। आज जंगल रहेगा तो जैव विविधता रहेंगी, पर्यावरण का संरक्षण होगा, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। वर्तमान में मैं 3,000 सीड बॉल, जो विलुप्त होते बीज हैं, हर्रा, बेहड़ा, आंवला, और इनको लेकर मैं जंगलों में सीड बॉल बनाकर अभी फेंक रहा हूँ बारिश से पूर्व, और लोगों को भी भेंट कर रहा हूँ। लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आम, आपके घर में भी आम के सीजन है, गुठली निकलेंगे, इसको आप जंगलों में फेंकिए, कम से कम ये हरा भरा जंगल होंगे, फल फलेंगे तो पशु पक्षियों के भी काम आएंगे। तो वर्तमान में अभी मेरा ये काम बारिश से पूर्व हरियाली लाने के लिए मैं सीड बॉल और बीजों को एकत्रित करके जंगलों में फेंक रहा हूँ। और आप सबसे भी निवेदन है कि आपके घर में जो जामुन के बीज मिलेंगे, अभी आम के गुठली मिलेंगे, इन्हें जंगल में फेंकिएगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान दीजिएगा।
1: जी जी, वीरेंद्र सिंह जी, जब हम बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश वन संपदा से काफ़ी भरपूर है, और जब हम आपके क्षेत्र की बात करते हैं, दल्ली राजरा बालोद क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये वहाँ भी हमारा वन आच्छादित प्रदेश है। और जब देखिए, जब वनों की बात होती है तो वहाँ वन्य जीवों का भी जो है उनका वो एक प्राकृतिक रहवास है, पेड़ पौधों का काफ़ी कटाव किया जा रहा है, जिससे इनकी धमक जो है अब

0: ये तो यहाँ हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश वन संपदा से काफ़ी भरपूर है। और जब हम आपके क्षेत्र की बात करते हैं, दल्ली राजरा बालोद क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये वहाँ भी हमारा वन आच्छादित प्रदेश है। और जब देखिए, जब वनों की बात होती है तो वहाँ वन्य जीवों का भी जो है उनका वो एक प्राकृतिक रहवास है। पेड़ पौधों का काफ़ी कटाव किया जा रहा है, जिससे इनकी धमक जो है अब गाँवों में हो गई है, ये घरों तक पहुँच गए हैं। तो इसका जो कारण है, हमारा जो मानव अस्तित्व का जंगल की ओर बढ़ना, इसे आप कैसे देखते हैं?
1: यूँ तो हमारा छत्तीसगढ़ 44% हरियाली से आच्छादित है। उसमें एक ज़िला है हमारा बालोद ज़िला, वहाँ डैम है बहुत बड़ा, तांदुला जलाशय है। और दल्ली राजरा में भी कई प्राकृतिक जल स्रोत होने के कारण आसपास आपको रात को जब भी आप कभी विचरण करेंगे, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू और हिरण, ये सब आपको बंदर बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और राजराव बालोद के मार्ग में आप गुजरते, बस में कभी भी जाएं या रात्रि को विचरण आप किसी भी माध्यम से जाएं, तो आपको हिरण अवश्य देखने को मिलते हैं। मन बहुत खुश हो जाता है कि ये इन्हें नेचुरल जगह मिला हुआ है।

0: भेंट करता थे रमा शंकर। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम
1: इनसे मिलिए। अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, आइए हम आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में। थोड़ी देर बाद यानी 9 बजे आप सुनेंगे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। सुबह 10 बजे नए तराने। श्रोता साथियों के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री का प्रसारण होगा 11:05 पर। NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे और 12:30 पर होगा एक ही शीर्षक से लिए गए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। दोपहर 1:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल की गूंज और इंस्टा फरमाइश पेश करेंगे आज रात 8 बजे। श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

गुंजन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को नमस्कार। आज कल्पना सिन्हा की ओर से श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपसे बातें होंगी कुछ अपने पन की, कुछ अपने पर्यावरण की, साथ ही कुछ प्रेरणादायी शायरियां जो निश्चित ही हम सभी के अंदर एक नया जोश पैदा करेंगे, और साथ ही सुंदर भावनाओं से सजे गीत आप सुनेंगे, और इसके अलावा कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी आपसे होंगी आज के इस कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। श्रोताओं, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन मुस्कुराने वाले लोग हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। हर ठोकर हमें एक नया सबक सिखाती है और हर मुस्कान हमें जीने का हौसला देती है। इसलिए जिंदगी में चाहे लाख परेशानियां हों, उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालते हुए जीवन के हर पल को खुशी खुशी जीना चाहिए। फिलहाल तो इसी बात पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, ये थी आज के गुंजन कार्यक्रम की पहली पेशकश फिल्म मैंने प्यार किया से। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की, शब्द असद भोपाली के थे और संगीत राम लक्ष्मण का था। श्रोताओं, आज 22 मई है। हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस साल की आधिकारिक थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी स्थानीय स्तर पर कार्य वैश्विक प्रभाव। इस थीम का उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि यदि हम अपने गांव, शहर, जंगल, जल स्रोत और पर्यावरण की स्थानीय स्तर पर रक्षा करेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव

शहर, जंगल, जल स्रोत और पर्यावरण की स्थानीय स्तर पर रक्षा करेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व की जैव विविधता पर पड़ेगा। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आगे और भी बातें करेंगे, फिलहाल आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

سنانی. मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरिया जिले में सुशासन तिहार के दौरान खाद्य वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहायक आयुक्त और प्रभारी शाखा प्रबंधक को निलंबित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है। और आकाशवाणी द्वारा आज रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सुशासन तिहार के दौरान चिरमिरी में अधिकारियों की बैठक में पेयजल समस्या और स्कूल परीक्षा परिणामों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कोरिया जिले में खाद्य वितरण में गड़बड़ी सामने आने पर सहायक आयुक्त और सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं आयुष प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। इस बीच कोरिया जिले की जिल्दा समिति खड़गवां में खाद्य वितरण से जुड़े गबन प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी शाखा प्रबंधक और नोडल अधिकारी को काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत कल कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के कुशहा गांव में आयोजित चौपाल के दौरान नीति आयोग द्वारा वित्त पोषित कामयाबी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन विज्ञान और गणित जैसे विषयों को अधिक रोचक तथा व्यावहारिक तरीके से समझाने में सहायक होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है। इस पहल के तहत टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी किया गया है। इस नंबर पर आम नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिज संबंधी अनियमितताओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। सूचना केंद्र का संचालन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा। राजनांदगांव जिले को स्टेट कैपिटल रीजन SCR में शामिल कर लिया गया है। वित्त मंत्री OP चौधरी ने गुरुवार को राजनांदगांव में आयोजित व्यापारी महाअधिवेशन में इस संबंध में घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इसे जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में आगामी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा आज रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शांति नगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवालय द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। रायपुर के कृषि महाविद्यालय का 66वां स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। इस मौके पर वार्षिक समारोह के साथ ही महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का सम्मेलन भी आयोजित होगा। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के पहले बैच के उन 3 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा जो अब विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरिया जिले में सुशासन तिहार के दौरान खाद्य वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहायक आयुक्त और प्रभारी शाखा प्रबंधक को निलंबित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है। और आकाशवाणी द्वारा आज रायपुर में

स्वर उत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब हम आपको तापमान की सूचना दे दें। स्थानीय मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये थी तापमान की सूचना और अब एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर।

थोड़ी देर में आप सुनेंगे नए तराने कार्यक्रम। ग्यारह बजकर पांच मिनट पर होगा श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। दिन में बारह बजे आप सुनेंगे एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दोपहर बारह बजकर तीस मिनट पर एक ही शीर्षक से लिए गए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चयन का प्रसारण होगा। महिलाओं के लिए घर गोसैन कार्यक्रम हम लेकर आएंगे दोपहर एक बजकर दस मिनट पर। इसमें राजा राममोहन राय जयंती पर सामयिक चर्चा होगी। इसके अलावा सुनिएगा क्रम कथा कहनी। श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज पेश करेंगे दोपहर एक बजकर चालीस मिनट पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंदा हम आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर दो बजकर तीस मिनट पर। हमारी तीसरी सभा में शाम पांच बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। भजन संध्या कार्यक्रम प्रसारित करेंगी शाम पांच बजकर पांच मिनट पर और युवा श्रोताओं की युवा वाणी सजेगी शाम साढ़े पांच बजे। इसमें आज आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स।

फिल्मी गीतों से सजी माधुरी शाम 6:30 बजे हम पेश करेंगे। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा सुनिएगा शाम 7:05 पर। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल रोजाना की तरह शाम 7:20 पर। इसमें सामयिक चर्चा के अलावा सुनिएगा क्रम आजकल, श्री अन्न समृद्ध अन्न इस विषय पर चर्चा और मंडी भाव, लोकगीत और मौसम की जानकारी आप सुन सकेंगे। आज रात 8 बजे सुनिएगा सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। चित्रपट संगीत पेश करेंगे रात 9:15 पर। श्रोता साथियों के ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:30 बजे। शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग प्रधान हम आपके लिए लेकर आएंगे आज रात 10 बजे और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन पेश करेंगे रात 10:30 बजे। श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं अरिजीत सिंह के गाए फिल्म ऑल इज वेल के इस गीत से।

0: दी, ये देख
1: कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने

0: की भी यही उम्र है।
1: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
1: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: जीत गांगुली का था।
1: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
2: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
1: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
2: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जुड़िए आपके अपनों को भी।
1: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
0: श्रोताओं, नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने इस वक्त आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अगले पायदान पर आइए अब सुनते हैं जावेद अली की आवाज में फिल्म राज 3 का गीत और संगीत निर्देशन राशिद खान का है।

अरिजीत सिंह और पलक मुछल की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म आशिकी 2 का गीत। शब्द इरशाद कामिल के थे और संगीत

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 0777423006000। नंबर एक बार फिर 0777423006000।
2: कार्यक्रम नए तराने इस वक्त आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं केके की आवाज में फिल्म काइट्स का गीत। शब्द रचना प्रसून जोशी की है और संगीत निर्देशन शंकर एहसान लॉय का है।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म खामोशियां का गीत। शब्द रचना सईद कादरी की थी और संगीत निर्देशन जीत गांगुली का था। श्रोताओं, कार्यक्रम नए तराने इस वक्त आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। अगला गीत आइए सुनते हैं, मोहित चौहान, श्रेया घोषाल और न्यूमन की आवाज में। फिल्म का नाम है आरक्षण।

0: छैया।
1: आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
2: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी।
1: चलिए बनाए एक मिसाल अपने प्यारे संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
3: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना रक्षाबंधन फिल्म का गीत, हिमेश रेशमिया, अरिजीत सिंह और साथियों की आवाजों में। शब्द रचना इरशाद कामिल की थी और संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का था। अगला गीत ये सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाजों में, शब्द तुरास के और संगीत शारिप और तोशी का है। फिल्म का नाम है जैकपॉट।

श्रोताओ, अभी आपने सुना श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म जैकपॉट का गीत। कार्यक्रम नैतराने में अब हम आपको सुनवा रहे हैं बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म गजनी का गीत। शब्द प्रसून जोशी के हैं और संगीत अमल मलिक का है।

और अब चलते चलते हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर। हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में फिल्म नूर का ये गीत।

0: इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम नए तराने अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। हम आपको बता दें, श्रोता साथियों के पत्रों और ईमेल पर आधारित चिट्ठी पत्री कार्यक्रम का प्रसारण होगा 11:05 पर। कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे 2:40 पर और 9:30 पर। ग्रामीण महिलाओं के लिए घर गोसाइन कार्यक्रम हम लेकर आएंगे 2:10 पर। युवा श्रोताओं की युवावाणी 5:30 और ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल 7:20 पर। ये थे आज के कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइट्स की ये पहली भारत यात्रा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होना है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएम के सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और राज्य को अनेक नई रेल सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। रेल मंत्री आज जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे और 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। इसमें पहले केवल 8 डिब्बे थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में RG कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोडे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोडे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। यह हर किसी के लिए आह्वान है कि वह जैव विविधता के नुकसान को रोकने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि समृद्ध जैव विविधता सतत विकास

0: की अनगिनत चुनौतियों का समाधान है। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजा राम मोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई करने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति बीएसएफ की अजेय शक्ति का प्रमाण है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिट्ठी पत्री कार्यक्रम।

0: चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन और अभिनंदन के साथ मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त तरुण और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके प्यार, आपके संदेश और आपकी भावनाओं से सजा कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। आज आपकी चिट्ठियों और संदेशों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कल्पना जी। कल्पना जी, आपको मेरे नमस्कार के साथ हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: जी जी तरुण, और साथ ही सभी श्रोताओं को हमारा हार्दिक नमस्कार। तरुण, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम श्रोता साथियों के पत्रों के माध्यम से, उनके ईमेल के माध्यम से हम उनके विचारों से जुड़ते हैं, उनकी भावनाओं से जुड़ते हैं।
0: जी,
1: हमारे केंद्र के कार्यक्रमों को जब श्रोता साथी सराहते हैं, सराहना करते हैं, तो तरुण वाकई में एक बहुत ही अच्छा सा एहसास होता है हम सभी को और इससे हम सभी को प्रेरणा भी मिलती है।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए शुरू करते हैं पत्रों को पढ़ने का सिलसिला।
0: तो कल्पना जी, आज यकीनन गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस गर्म भरे माहौल में श्रोताओं के जो प्यारे प्यारे पत्र चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में आए हैं, उनसे जो ठंडक और सुकून हमें मिल रहा है ना, उसका तो कहना ही क्या। क्या कहना चाहेंगी आप?
1: वाकई में बहुत पत्रों से ही लग रहा है कि जैसे हमारी गर्मी कुछ कम हो रही है। काफ़ी अच्छे पत्र मिले हैं।
0: जी जी, तो सबसे पहला पत्र ईमेल के रूप में हमारे पास आया है सावरगांव महाराष्ट्र से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं रघुनाथ पाटिल नारे और समस्त नारे परिवार की ओर से ये पत्र आया है हमारे पास।
1: जी।
0: सबसे पहले तो इन्होंने सप्रेम नमस्कार हमें लिखकर भेजा है। दिनांक 21 मई को प्रसारित विचार बिंदु कार्यक्रम में आपके द्वारा मौन विषय पर प्रस्तुत आलेख संकलन स्वर अत्यंत प्रभावशाली लगा। मौन आत्मचिंतन का माध्यम है, इससे आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और विनम्रता का भाव विकसित होता है। यह सुंदर संदेश कार्यक्रम के माध्यम से हमें सुनने को मिला। विचार बिंदु से हमेशा की तरह इस बार भी बहुत अच्छी प्रेरणादायक जानकारी प्राप्त हुई। इस शानदार प्रस्तुति के लिए कल्पना जी, आपको और आकाशवाणी अंबिकापुर के समस्त परिवार को इन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं लिखकर भेजी है और अंत में अब आपसे उत्तर जानना

0: सुर सिंगार, आप मन के गीत, बांस गीत, पंडवानी और युवाणी जैसे कार्यक्रम पूरे परिवार के साथ बड़े चाव से सुना करते थे। हम छोटे छोटे बच्चे रेडियो के पास बैठकर सोचते थे कि शायद रेडियो के अंदर ही लोग बैठे होंगे। तब पिताजी बताते थे कि ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होता है। समय बीतता गया। वर्ष 1993 में मैंने पहली बार पोस्टकार्ड के माध्यम से युवाणी और आपके पत्र कार्यक्रम के लिए पत्र भेजा, जो कार्यक्रम में शामिल भी हुआ। उस दिन जो खुशी मिली उसने मुझे हमेशा के लिए आकाशवाणी से अब तक जोड़ दिया है। एक समय ऐसा भी था जब मुझे हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का अधिक ज्ञान नहीं था, लेकिन आकाशवाणी की संगत से मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा और जाना। आज भी आकाशवाणी रायपुर और अंबिकापुर के कार्यक्रमों से मेरा गहरा लगाव बना हुआ है। स्वयं को इनका नियमित श्रोता होने का जो मुझे गर्व महसूस होता है उसका तो कहना ही क्या। वास्तव में आकाशवाणी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि सीख, संस्कार और आत्मीयता का अनमोल संगम है। समस्त आकाशवाणी परिवार को दिल से धन्यवाद, शुभकामनाएं।
1: जी पवन कुमार सेन जी, आपका हम अभिवादन और नमस्कार कहते हैं और साथ ही शुक्रिया भी कहते हैं कि आपने अपने पत्रों से हमें अवगत कराया, अपने विचार हम

0: आकाशवाणी परिवार को दिल से धन्यवाद, शुभकामनाएं।
1: जी पवन कुमार सेन जी, आपका हम अभिवादन और नमस्कार कहते हैं और साथ ही शुक्रिया भी कहते हैं कि आपने अपने पत्रों से हमें अवगत कराया, अपने विचार हमसे साझा किए। आकाशवाणी से जुड़ी आपकी आत्मीय स्मृतियाँ पढ़कर वाकई में मन भावुक उठा है। सन 1976 के रेडियो से शुरू हुआ यह सुंदर सफर आज भी उसी अपनत्व और प्रेम के साथ जारी है
0: जी।
1: ये हमारे लिए अत्यंत गर्व और खुशी की बात है तरुण। पवन कुमार सेन जी, आप जैसे श्रोताओं का स्नेह, जुड़ाव और विश्वास ही आकाशवाणी की सबसे बड़ी पूंजी है। आपकी यादों ने सचमुच आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवमयी यात्रा को और भी विशेष बना दिया है
0: जी।
1: समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से आपके प्रेम, शुभकामनाओं और आत्मीय जुड़ाव के लिए हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखें
0: जी। अगले पत्र में छत्तीसगढ़ की माटी की महक आ रही है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो चिट्ठी में लिखा है, राम राम जय जोहार।
1: जी बहुत अच्छा, राम राम माखन वर्मा जी, जय जोहार, नमस्कार।
0: और ये पत्र आया है अड़ार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश एवं दीपेश वर्मा की ओर से
1: जी।
0: ये लिखते हैं, 19 मई को ईमेल की गूंज और इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम में श्रोताओं के संदेशों के साथ शानदार गीतों का चयन बेहद पसंद आया। सुंदर प्रस्तुति के लिए शक्ति जी, जयमाला और आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई। 21 मई को माटी के आखर और गुंजन कार्यक्रम में राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय विविधता दिवस पर दी गई जानकारी बहुत ज्ञानवर्धक लगी। रैना जी को शानदार प्रस्तुति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार को सुंदर एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद। और अंत में ये आपसे जवाब जानना चाहते हैं
1: जी। माखन वर्मा जी, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम काफी पसंद आए हैं। ईमेल की गूंज, इंस्टा फरमाइश, माटी के आखर और गुंजन कार्यक्रमों के प्रति आपका स्नेह और आत्मीय प्रतिक्रिया पाकर हमें वाकई में बहुत प्रसन्नता हो रही है। कार्यक्रमों की प्रस्तुति और जानकारी आपको बेहद पसंद आई, ये हमारे लिए काफी उत्साहवर्धक है। शक्ति जी, जयमाला जी, रैना जी और हमारे समस्त आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से आपके सुंदर संदेश और शुभकामनाओं के लिए हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। इसी तरह अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें।
0: और अब एक गीत सुनने की बारी है कल्पना जी।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं सुनिए विरासत फिल्म का ये गीत, आवाजें हैं चित्रा और कुमार सानू की, गीत जावेद अख्तर ने लिखा है, संगीत है अन्नू मलिक का।

0: आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं चिट्ठी पत्री कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगला पत्र है कल्पना जी।
1: जी जी।
0: तारकेश्वरपुर जिला सूरजपुर से लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं मधुसूदन प्रजापति, सुखमनिया प्रजापति, झिलमिल दक्ष, कुंती, मंगलराम और रिद्धि सिद्धि प्रजापति। ये लिखते हैं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित वॉकथन कार्यक्रम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं इन्होंने भेजी हैं। दिनांक 15 मई के चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में तरुण जी द्वारा यानी मेरे द्वारा पत्रों का सुंदर वाचन और प्रमेंद्र जी द्वारा आत्मीय अंदाज में दिए गए जवाब बेहद पसंद आए। एक श्रोता मित्र द्वारा सप्ताह में किसी एक श्रोता को आकाशवाणी आमंत्रित करने का सुझाव भी बहुत ही सराहनीय लगा। आकाशवाणी की 90 वर्षों की यात्रा ने हमें देश भर के श्रोताओं से जोड़ते हुए ज्ञान, मनोरंजन और आत्मीय रिश्तों की अनमोल सौगात दी है। इसके लिए आकाशवाणी परिवार का दिल से धन्यवाद। देश की वाणी आकाशवाणी कार्यक्रम में समीर शुक्ला जी से दीपक हटवार जी की भेंटवार्ता बेहद रोचक लगी। वहीं माटी के आखर में गीतकार विजय सिंह दमाली जी से जुड़ी बातचीत से सरगुजा की संस्कृति की सुंदर झलक सुनने को मिली। गुंजन कार्यक्रम में रैना द्वारा दी गई रोचक जानकारी और मधुर गीतों की प्रस्तुति भी मन को बहुत भा गई। समस्त आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार को सफल एवं शानदार प्रस्तुतियों के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
1: जी, बहुत अच्छा पत्र लिखा है मधुसूदन प्रजापति जी ने।
0: जी,
1: आपको और आपके परिवार को मधुसूदन जी हमारा सादर नमस्कार। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आपकी आत्मीय शुभकामनाएं और सुंदर प्रतिक्रिया पाकर वाकई में हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। चिट्ठी पत्री देश की वाणी आकाशवाणी माटी के आखर और गुंजन कार्यक्रमों के प्रति आपका स्नेह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मधुसूदन जी, आवाज की इस अनमोल यात्रा के 90 स्वर्णिम वर्षों पर हम सभी श्रोता साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आकाशवाणी का ये सफर कार्यक्रमों और श्रोताओं के सम्मिलन से ही संभव हो पाया है। आकाशवाणी की ये मधुर आवाज आने वाले वर्षों में भी जन जन तक प्रेरणा, ज्ञान और मनोरंजन पहुंचाती रहे, हमारी यही शुभकामना है। इसके लिए एक बार फिर से हम सभी श्रोता साथियों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं।
0: जी, अगला पत्र आया है हमारे पास सारसताल सोनगुड़ा जिला सूरजपुर से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा, राजकुमार निर्वाणी और नैन दास दीवान। ये लिखते हैं, आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी कार्यक्रम हमें बेहद अच्छे लगते हैं। 15 मई का चिट्ठी पत्री कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया। इसके लिए मुझे और प्रमेंद्र सर जी को हार्दिक शुभकामनाएं इन्होंने लिखकर भेजी है। 18 मई को आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम भी सुंदर प्रस्तुति के लिए पोलोमी जी को बधाई। 21 मई को माटी के आखर में सरगुजा अंचल के गीतकार विजय सिंह दमाली जी से प्रशांत खिमरिया जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। इसी दिन आपकी पसंद और ईमेल की गूंज की कार्यक्रम भी शानदार लगे। इसके लिए इन्होंने शबनम खानम जी को बहुत बहुत बधाई दी है। हम अंबिकापुर केंद्र के सुबह से रात तक प्रसारित सभी कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, जो हमेशा एक से बढ़कर एक होते हैं, और अंत में ये एक गीत सुनना चाहते हैं।
1: जी जी, बिल्कुल। प्रेम साय जी और समस्त श्रोता परिवार को हमारा सादर नमस्कार। आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रमों के प्रति आपका निरंतर स्नेह और आत्मीय प्रतिक्रिया पाकर अत्यंत खुशी महसूस हो रही है।
0: जी।
1: प्रेम साय जी ने लिखा है, चिट्ठी पत्री आपकी बात आपके गीत, माटी के आखर आपकी पसंद और ईमेल की गुंज कार्यक्रम आपको बहुत पसंद है, ये हम सभी के लिए वाकई में प्रेरणादायक है। तरुण कुमार जी, प्रेमेंद्र कुमार जी, पोलोमी जी, प्रशांत खेमरिया जी और समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से आपके प्रेम और शुभकामनाओं के लिए हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और आपने फिल्म राजा का मधुर गीत सुनाने का प्रयास किया है, तो आइए सुनते हैं फिल्म राजा का यह गीत।
0: जी, तो श्रोताओं सुनिए राजा फिल्म का यह गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की।

0: जी हाँ श्रोताओं, हम तो हमेशा ही कहते हैं कि आपके प्यारे प्यारे पत्र हमें बहुत अच्छे लगते हैं कार्यक्रम चिट्ठी पत्री में, और बहुत ही स्नेही बहुत ही आदर के साथ इन पत्रों को आप हम तक पहुंचाते हैं। तो कल्पना जी, कार्यक्रम में अगला पत्र है
1: जी
0: हमारे पास चिरमिरी कुरासिया कालरी से, और लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे। ये लिखते हैं, 17 मई को प्रसारित कानून की बात कार्यक्रम में विचाराधीन एवं दंडित कैदियों के कानूनी अधिकारों पर अधिवक्ता सौरभ जी द्वारा दी गई जानकारी बेहद उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी। उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को धन्यवाद और शुभकामनाएं।
1: चिरमिरी कुरासिया के हमारे श्रोता साथी इंद्रबान सिंह जी, तरुण बहुत ही नियमित श्रोता हैं
0: जी।
1: ये लगातार हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, कार्यक्रमों को पसंद करते हैं, उनकी सराहना और साथ ही साथ समीक्षा भी लिखकर भेजते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इंद्रबान सिंह जी, आपका आत्मीय पत्र हमें प्राप्त हुआ है। कानून की बात कार्यक्रम के प्रति आपका स्नेह और सराहना हमारे लिए उत्साहवर्धक है। अधिवक्ता सौरभ शेंद्रे जी द्वारा दी गई उपयोगी जानकारी आपको काफी ज्ञानवर्धक लगी, ये जानकर बेहद ही प्रसन्नता हुई। इसी तरह हमारे केंद्र से और कार्यक्रमों से अपना स्नेह और सहयोग बनाकर रखें। पत्र के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं
0: जी।
1: अगला पत्र हमारे किन साथी का है तरुण
0: जी? अगला पत्र आया है हमारे पास प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और परिवार की ओर से, और ये पत्र आया है गुजरात गांधीग्राम से
1: जी।
0: लिखते हैं, हम ईमेल की गूंज कार्यक्रम में समय पर अपने ईमेल भेजते हैं, लेकिन हमारे संदेश शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कृपया हमारे ईमेल और फरमाइशों को भी कार्यक्रम में स्थान देने की कृपा करें। आपके सभी कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आते हैं, धन्यवाद के साथ आपसे जवाब जानना चाहते हैं
1: जी। प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपको हमारा सादर नमस्कार। आपका स्नेह और आत्मीय संदेश हमें प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम ईमेल की गूंज के प्रति आपका जो जुड़ाव है वो हमारे लिए बेहद मूल्यवान है। सभी श्रोताओं के संदेश क्रमवार शामिल करने का प्रयास किया जाता है। प्रवीण जी, कृपया हमारे केंद्र के कार्यक्रमों से अपना स्नेह और सहभागिता इसी तरह बनाए रखें। बहुत जल्द ही आपके संदेश और फरमाइश भी कार्यक्रम में सुनने को मिलेगी, हमारी यही शुभकामना है। पत्र भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और
1: तो तरुण, गीतों के खजाने में से अब कौन सा गीत आप हमारे श्रोता साथियों को सुनवा रहे हैं
0: जी? गीतों के खजाने में से जो अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं, उससे पहले आप एक सूचना

0: देना चाह रही थी श्रोताओं को।
1: जी जी हम हमारे सभी श्रोता साथियों को सबसे पहले तो आवाज़ की इस अनमोल यात्रा के 90 स्वर्णिम वर्षों पर सभी को शुभकामनाएं देते हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हमारे देश भर के विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों द्वारा आयोजित किए जा रहे वाकथन के क्रम में आकाशवाणी अंबिकापुर द्वारा भी कल यानी शनिवार 23 मई को भव्य आयोजन किया जा रहा है। हम सभी शहरवासियों से और हमारे सभी श्रोताओं से अनुरोध करते हैं और विनम्र निवेदन करते हैं कि वे सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम को सफल बनाएं अपनी उपस्थिति देकर।
0: जी, और ये जो विशेष दौड़ में हम सब शामिल हो जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। संस्कृति, साहित्य, जन जागरण और राष्ट्रीय चेतना की इस ऐतिहासिक यात्रा को जब हम साथ में मिलकर लेकर चलेंगे तो सच में जो आनंद हमें प्राप्त होगा ना, उसका तो कहना ही क्या।
1: जी, वो आनंद सोचकर ही मैं बहुत ही रोमांचित हूँ तरुण
0: जी। और अब गीत सुनवाने की बारी है।
1: जी जी,
0: तो अगला गीत है फिल्म मैंने प्यार किया से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।
1: जी,

0: श्रोताओं, ये जो गीत आपने सुना उसमें आवाजें आवाज थी एस टी बाला सुब्रमण्यम की और फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। और कल्पना जी, अब पत्रों की बारी।
1: जी जी,
0: अगला पत्र आया हमारे पास पाटन गुजरात से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं धीरज वी रवारी।
1: जी,
0: लिखते हैं, हमारे ईमेल का हृदय से जवाब देने हेतु प्रवेंद्र जी का दिल से धन्यवाद। सोमवार को फोन इन कार्यक्रम सुनने का अवसर मिला जिसमें पोलोमी जी की शानदार प्रस्तुति बेहद पसंद आई। इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लग रहा है जिसमें श्रोता बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली प्रसारण यात्रा के अवसर पर हमारी विनम्र गुजारिश है कि आकाशवाणी अंबिकापुर के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिकारियों, उद्घोषकों, भाई बहनों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की स्मृति और अनुभवों पर भी आधारित विशेष मुलाकातें प्रसारित की जाएं। साथ ही यदि संभव हो तो नियमित श्रोता मित्रों को भी अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करने हेतु आमंत्रित किया जाए। यदि पत्र में कोई त्रुटि हो तो ये क्षमा प्रार्थी के रूप में उन्होंने क्षमा मांगी है।
1: जी धीरज वी रवारी जी, हमारे ये साथी हैं पाटन गुजरात से
0: जी।
1: आपको हमारा सादर नमस्कार। धीरज जी, आपके पत्र हमें मिले हैं और हमें बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो रही है। आपका आत्मीय संदेश और सुझाव हमें प्राप्त हुआ है
0: जी।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवानिवृत्त अधिकारियों, उद्घोषकों और नियमित श्रोताओं की यादों और अनुभव

0: भावों को प्रसारित करने का जो आपका सुझाव है वो निश्चित ही हमें बहुत ही सराहनीय लगा और बहुत ही पसंद आया है। हमारे केंद्र से पूरी कोशिश की जाएगी कि यहाँ से जितने भी तरुण सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी या उद्घोषक रहे हैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: और इसके साथ ही आपने लिखा है कि सोमवार के जो फोन इन कार्यक्रम जिसकी पुलोमी जी की प्रस्तुति थी वो आपको बहुत पसंद आया है, तो इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपके पत्रों के जरिए पुलोमी जी को भी कार्यक्रम की तारीफें हम उधर प्रेषित कर रहे हैं पुलोमी जी की तरफ।
1: जी
0: धीरज जी, पत्र भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी अगला पत्र आया है हमारे पास जेल रोड रायगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी और समस्त परिवार की ओर से ये पत्र आया है हमारे पास।
0: जी
1: ये लिखते हैं कि निवेदन है कि ईमेल की गूंज कार्यक्रम में कुछ श्रोताओं के मेल दिन में और रात में भी बार बार शामिल हो जाते हैं, जबकि कई नियमित श्रोताओं के ये संदेश एक बार भी प्रसारित नहीं हो पाते। हमारा विनम्र सुझाव है कि मेल की प्रिंट सूची तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सभी श्रोताओं को समान अवसर मिले और किसी एक श्रोता का नाम एक ही बार में दिन में शामिल हो न हो दिन में बार बार शामिल न हो इससे कार्यक्रम में संतुलन और पारदर्शिता बनी रहेगी तथा सभी श्रोताओं का उत्साह भी बढ़ेगा। आशा है कि आप हमारे इस सुझाव पर अवश्य ध्यान देंगे और अंत में ये आपसे जवाब जानना चाहते हैं।
0: जी बिल्कुल, नरेंद्र जी, महेंद्र जी और उनके परिवार के हमारे ये सदस्य रायगढ़ के हैं।
1: जी
0: आपका पत्र हमें प्राप्त हुआ है और ये तरुण बहुत ही सुझावपूर्ण पत्र हमें मिला है।
1: जी
0: और नरेंद्र तिवारी जी हमारे बहुत ही नियमित श्रोता हैं।
1: बिल्कुल,
0: लगातार कार्यक्रमों को सुनते हैं और अपनी अपने सुझावों से हम सभी को अवगत कराते हैं।
1: जी
0: नरेंद्र जी, आपका सुझाव जो आपने अपने पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से हमें दिया है उस पर निश्चित ही अमल किया जाएगा। आपका सकारात्मक सुझाव निश्चित ही सराहनीय है और सभी श्रोताओं को समान अवसर मिलेगा ये भावना वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय है। आपका ये सुझाव हम संबंधित टीम तक अवश्य पहुंचाएंगे। आकाशवाणी के प्रति आपका स्नेह और सजगता के लिए हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं।
1: जी
0: नमस्कार।
1: जी और अब गीत सुनाने की बारी है।
0: तो कौन सा गीत है तरुण सुनवाने जा रहे हैं आप हमारी श्रोता साथियों को?
1: श्रोताओं, फिल्म का नाम है हम तुम पे मरते हैं, आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की और
0: जी, जी।
1: संगीत है उत्तम सिंह का और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।
0: जी

0: चिट्ठी पत्र कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है और अगला अंतिम पत्र हमारे पास आया है जलगांव जंक्शन से और लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं डॉक्टर दिनेश काले
1: जी।
0: लिखते हैं, आज चिट्ठी पत्र कार्यक्रम में प्रस्तुत करने वाली हरदिल अजीत जोड़ी तरुण जी और कल्पना जी को हम हार्दिक रूप से धन्यवाद लिखते हैं। दिनांक 22 मई को सुबह की सभा में प्रस्तुत दो कार्यक्रम विशेष रूप से बहुत अच्छे लगे। विचार बिंदु में परवरिश, जिसमें अच्छे अच्छी बातों के साथ जो समावेश किया गया बातों का, वो बहुत ही अच्छा लगा। संस्कारों से जुड़े बहुआयामी विचार अत्यंत प्रेरणादायक और अनुकरणीय लगे। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए शबनम खानम जी को धन्यवाद। साथ ही गुंजन कार्यक्रम में बेहतरीन गीतों की श्रृंखला सुनने को मिली। कल्पना जी, आपका इस कार्यक्रम में जो प्रस्तुति थी वो इन्हें बहुत भा गई है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन इसे आसान बनाने वाले लोग जीवन को खुशी देकर बहुत आसान बना देते हैं। बहुत ही सार्थक और दिल को छू लेने वाला ये कार्यक्रम लगा। और अंत में आपसे जवाब चाहते हैं
1: जी। जलगांव जंक्शन के दिनेश काले जी, आपको हमारा सप्रेम नमस्कार। चिट्ठी पत्री कार्यक्रम के प्रति आपका स्नेह और आत्मीय शब्द हमें सदैव प्रेरित करते रहते हैं। विचार बिंदु और गुंजन कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आए, ये जानकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। परवरिश और संस्कारों पर आधारित विचारों के साथ साथ गीतों की श्रृंखला, और इन्होंने लिखा है कि हमारे शब्द गुंजन कार्यक्रम में जो हमने आज कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसके शब्द आपको काफ़ी सार्थक लगे। इसके लिए दिनेश जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार अपना स्नेह, मार्गदर्शन और शुभकामनाएं बनाए रखें। पत्र और ईमेल के लिए आपका सादर धन्यवाद।
0: और अब पता बताने की बात ही बारी। कार्यक्रम चिट्ठी पत्री द्वारा केंद्रीय निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, आकाशवाणी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़, पिन है 497001 और हमारी ईमेल आईडी है phambikapurair@gmail.com।
1: जी,
0: तो अब इस पत्र
1: तो श्रोता साथियों से विनम्र निवेदन है कि कार्यक्रमों के संदर्भ में अपने विचार, अपने सुझाव हमें इस पते पर अवश्य भेजते रहें।
0: जी,
1: और तरुण आगे बढ़ते हैं।
0: जी, तो इस कार्यक्रम से दीजिए मुझे यानी तरुण
1: और कल्पना सिन्हा को
0: इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 11:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
1: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द राष्ट्रगीत विच विल बी परफॉर्म्ड बाय
2: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान। सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का, जिसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: जाए सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही।
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओं, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है।

0: है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
0: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
0: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
0: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है, तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
0: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
0: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
0: जी
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओं, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी
1: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी, यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे, तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ,
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।

0: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
1: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है मेरे जीवन का।
0: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ उठो, आ जा, आओ। हाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो क्या क्या तुम्हें नहीं लगता तिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
1: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
0: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं तिमक्का, तुम्हारे बच्चे। संतान न होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
1: शायद आप ठीक कहते हैं, ये हमारे बच्चे ही हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
2: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
3: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
3: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
4: बाजी सुनिए।
0: हाँ।
4: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
0: ये लो तिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
4: हाँ।
0: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
4: अरे अरे इसको भी डालो।
0: हाँ हाँ ये
4: देखो
0: देखो देखो कितना छोटा था, नहीं ये पौधा कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया ना।
4: प्यारा लग रहा है मेरा छोटा सा बच्चा।
2: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
0: देखा तिमक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे, ये और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
4: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
0: ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
5: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
6: साधु
5: देखो देखो तो
6: ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे हमारा शहर हो।
2: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती तिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा।

0: 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रहे हैं। थिमक्का, होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालूमरदा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
2: सालूमरदा थिमक्का समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालूमरदा थिमक्का का कहना है,
3: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालूमरदा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे सदा याद रखा जाएगा।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालूमरदा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालूमरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है, अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चैन।

नमस्कार, शुभ दोपहरिया और आप सभी को अपने इस रेडियो दोस्त का स्नेह भरा प्रणाम। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त तरुण। आशा करता हूं कि दोपहर की इस गुनगुनी घनी धूप के बीच भी आपके चेहरों पर सुकून की एक खिली हुई मुस्कान बरकरार होगी। दोस्तों, आज जैसे ही मैंने इस स्टूडियो में कदम रखा तो हवा के एक ठंडे और मखमली झोंके ने मेरे कानों में धीरे से कहा, तरुण, आज हवाओं में एक अलग ही सुर्खी है, फिजाओं में एक अलग ही नशा है। और मैंने भी मुस्कुराकर हवा को जवाब दे दिया, अरे भाई, सुर्खी होगी क्यों नहीं। आज रेडियो के उस पार मेरी जो इतनी खूबसूरत दुनिया

बैठी है। उनके चेहरों की ये पावन चमक और आंखों का अपनापन जो इस हवा में घुला हुआ है। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम चयन, जहां हर दोपहर हम और आप मिलकर चुनते हैं जिंदगी कुछ अनकहे जज्बात, कुछ बेहद मीठी यादें और वो प्यारे चेहरे जो बिना कुछ कहे हमारी पूरी कायनात को खुशियों से बदल देते हैं। तो बस अपने दिल के दरवाजे खोल लीजिए और अपनी इस हसीन मुस्कान को होठों पर टिके रहने दीजिए। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं सुरों और एहसासों का एक बहुत ही नायाब और खूबसूरत चयन। अब सोचिए वो शब्द कौन सा होगा जो मैंने इस कार्यक्रम में आज लिया है। चलिए कुछ हिंट दे देते हैं इस शायरी के जरिए। अरे जनाब, इरशाद तो बोलिए। सादगी का हुस्न भी क्या कमाल का होता है, चेहरे पर मुस्कान हो तो हर लम्हा बेमिसाल होता है। यूं तो रूप रंग की कमी नहीं इस महफिल में, मगर जो दिल को छू ले वही चेहरा लाजवाब होता है। तो धूप भले ही तेज है, लेकिन अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान हमेशा बना कर रखिए। यकीनन इस गर्मी भरे मौसम में भी जो आपकी मुस्कान है ना, वो किसी ठंडक से कम नहीं होगी।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: दोस्तों, आज चयन कार्यक्रम में हमने जो शब्द चुना है वो है चेहरा। जब हम सुबह उठकर आईने में खुद को देखते हैं तो वहाँ सिर्फ एक चेहरा नहीं दिखाई देता, वहाँ दिखाई देती है ईश्वर की बनाई हुई एक अनमोल कलाकृति, जिसके भीतर एहसासों का पूरा समंदर धड़कता है। हर चेहरे की अपनी एक कहानी होती है। कुछ बातें आँखों कह देती हैं, कुछ मुस्कानें दिल का हाल बता देती हैं और कुछ खामोशियां भी बहुत कुछ बोल जाती हैं। और सच मानिए दोस्तों, जब उसी चेहरे पर एक सच्ची, मासूम और बेफिक्र मुस्कान सजती है ना, तो सिर्फ चेहरा ही नहीं खिलता, पूरा माहौल रोशन हो जाता है। किसी की मुस्कुराहट कभी सुबह की पहली धूप जैसी लगती है, तो किसी का चेहरा बरसात के बाद निकले इंद्रधनुष जैसा सुकून दे जाता है। यही तो खूबसूरती है इंसानियत की, कि एक प्यारी सी मुस्कान बिना कुछ कहे दिलों को जोड़ देती है। तो आइए दोस्तों, आज चयन में एक छोटी सी कोशिश करते हैं अपने चेहरे पर मुस्कान सजाने की, क्योंकि हो सकता है आपकी यही मुस्कान किसी की उदासी को कम कर दे। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम चयन, जिसमें आज मैं हूं आप सभी के साथ तरुण।

और जब हम किसी का चेहरा देखते हैं ना और उनके होठों पर एक मुस्कान खिली होती है तो स्वतः ही हमारे होठों पर भी एक प्यारी मुस्कान आ जाती है। तो जब भी आप किसी से मिलें तो एक मधुर मुस्कान जरूर दें सामने वाले को।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: जब हम किसी चेहरे को देखते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले कहाँ ठहरती है? यकीनन आंखों पर। कहते हैं कि चेहरा अगर पूरी किताब है तो आंखें उस किताब का सबसे पहला और सबसे गहरा पन्ना होती हैं। जुबां तो कभी कभी लफ्जों के जाल में सच को छुपा लेती है, लेकिन ये आंखें, ये बहुत मासूम होती हैं, ये झूठ बोलना नहीं जानती। कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिनमें डूब कर इंसान अपनी सारी दुनिया भूल जाता है। कुछ आंखें बिना कुछ कहे भी दिल का सारा हाल बयां कर देती हैं, जैसे वो हमारी माँ की आंखें, जो हमारी एक हल्की सी उदासी को भी एक पल में भांप लेती हैं। और कुछ आंखें ऐसी होती हैं जो बरसों बाद भी जब बंद आंखों से याद आती हैं तो मन को एक शांत उजाले से भर देती हैं। समय चेहरे की रंगत को भले ही थोड़ा धीमा कर दे, लेकिन आंखों में छुपा हुआ अपनापन और वो मासूमियत कभी बूढ़ी नहीं होती। आईने में चेहरा तो हर कोई देखता है, लेकिन कभी किसी की आंखों में झांक कर उस रूह को पढ़ना, यही तो जिंदगी का सबसे सुंदर चयन है। तो चलिए आज इस दोपहर में अपने दिल की खिड़की को थोड़ा सा खोलते हैं और याद करते हैं उन आंखों को जिन्होंने हमें हमेशा बिना किसी शर्त के बेहद प्यार किया है। जैसे हमारी प्यारी माँ, हमारे पिताजी और हमारे आदरणीय वो सभी जिन्होंने हमें बहुत प्यार किया है। तो उन्हें आज याद कीजिए कि किन्हें आपके इस चेहरे से प्यार हुआ है।

आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे

0: जिंदगी।
1: चलिए बनाएं एक मिसाल अपनी प्यारी संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
2: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।

आज के इस दौर में हम अपने चेहरों को दुनिया के हिसाब से बदलने की कितनी कोशिश करते हैं ना। कभी कोई बनावटी गुस्सा, कभी कोई मजबूरी की मुस्कान, और कभी दुनिया को दिखाने के लिए वो कामयाबी का एक झूठा सा रौब। मगर सच बताऊं, इस पूरी कायनात में सबसे मुकम्मल और सबसे सुंदर चेहरा जानते हैं किसका होता है? एक छोटे से बच्चे का। उस मासूम से चेहरे पर ना कोई नफरत होती है, ना कोई चालाकी, और ना ही कल की कोई फिक्र। वो जब मुस्कुराता है तो दिल से मुस्कुराता है, और जब रोता है तो पूरी शिद्दत के साथ रोता है। उसकी उस सादगी में भी एक ऐसा नूर होता है जो बड़े से बड़े उदास दिल को भी एक पल में खुशी से भर देता है। जिंदगी का भी यही फलसफा है। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, उम्र के किसी भी पड़ाव में पहुंच जाएं, मगर हमारे भीतर वो मासूम बच्चा हमेशा जिंदा रहना चाहिए। जब हमारे दिल के भीतर सादगी होती है तो वो चमक हमारे चेहरे पर खुद ब खुद दिखाई देने लगती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि असली खूबसूरती महंगे लिबासों या रंगों में नहीं, बल्कि मन की सादगी और पाक साफ इरादों में होती है। तो आज चैन के इस मखमली मोड़ पर चलिए

अपनी उस खोई हुई मासूमियत को फिर से ढूंढ लेते हैं। दुनिया के सामने जो मुखौटा अपनी लगाया है उसे कुछ पलों के लिए उतार कर रख दीजिए और अपनी उस सादगी से भी पूरी दोपहर को महका दीजिए, यानी एक मुस्कान से। और जब हम दिल से मुस्कुराते हैं ना तो पूरी कायनात हमें बहुत सुंदर लगती है।

0: समय की कमी के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, जिसका हमें खेद है। मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले

0: महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी समाचारों का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खेती की बात का पुनः प्रसारण। जानकारी का विषय है, अपना पोल्ट्री फार्म कैसे शुरू करें।
3: अपना पोल्ट्री फार्म बनाकर हम अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं, आज की खेती की बात में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। वाणिज्यिक पोल्ट्री उत्पादन स्थापित करने के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो ज़्यादा बेहतर होगा। भूमि का क्षेत्र उन पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है जिन्हें आप पालना चाहते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। शोरमुक्त और शांत जगह का चयन करें। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो। साथ ही भूमि का चयन करते समय पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का एक बड़ा स्रोत सुनिश्चित करें। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि इससे आपका परिवहन का व्यय काफ़ी हद तक बच जाएगा। जमीन खरीदने से लेकर मुर्गी पालन तक आपको काफ़ी खर्च करना पड़ता है, इसलिए पहले आप वित्त व्यवस्था की ओर ध्यान दें। अगर आपके पास जमा पूंजी है तो ठीक है, अन्यथा आप बैंक लोन के बारे में भी विचार कर सकते हैं। वर्तमान में बैंक पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन प्रदान करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे मुख्य कदम होता है मुर्गियों का चयन करना। दरअसल आपको पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि मुर्गी पालन के जरिए आप किस तरह आमदनी करना चाहते हैं। मसलन आप अंडे बेचना चाहते हैं या मीट। अगर आप अंडे उत्पादन करके उन्हें बेचना चाहते हैं

0: हैं, तो इसके लिए इसके बाद बारी आती है मुर्गियों के लिए घर तैयार करने की। हालांकि यह ज़मीन खरीदने जैसा महंगा भी नहीं है। पोल्ट्री पक्षियों के लिए एक अच्छा घर बनाने के कई तरीके हैं। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि घर या पिंजरे पर्याप्त और विशाल हों, ताकि पक्षियों को उसमें किसी तरह की परेशानी ना हो। उनके पिंजरे में उचित वेंटिलेशन सिस्टम बनाएं। घर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ताज़ी हवा और प्रकाश का प्रवाह सुनिश्चित करें। यदि आप बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन करना चाहते हैं तो कई घर बनाएं और एक घर से दूसरे घर की दूरी कम से कम 40 फीट रखें। घर को हमेशा साफ और ताज़ा रखें और चूज़ों को खेत में लाने से पहले अच्छी तरह साफ कर लें। इसके अलावा घर के अंदर एक उपयुक्त जल निकासी व्यवस्था भी बनाएं। यह आपको घर को आसानी से साफ करने में मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय अच्छा चले तो आपको मुर्गियों का सही तरह से ख्याल रखना होगा। अच्छे और उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन कमर्शियल पोल्ट्री उत्पादन के लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ कई पोल्ट्री फीड उत्पादक कंपनियाँ उपलब्ध हैं। वे सभी प्रकार के पोल्ट्री पक्षियों के लिए फीड का उत्पादन करते हैं। आप अपने पक्षियों के लिए उन भोजन का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पोल्ट्री रोगों के कारण हजारों किसान भारी नुकसान का सामना करते रहते हैं, इसलिए हमेशा अपने पक्षियों की अच्छी और उचित देखभाल करें और उन्हें पौष्टिक भोजन और स्वच्छ पानी प्रदान करें। उनका समय समय पर टीकाकरण करें और कुछ सामान्य और आवश्यक दवाओं का भंडारण भी जरूर करके रखें, ताकि उन्हें समय समय पर दिया जा सके। पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस का आखिरी और सबसे मुख्य स्टेप है मार्केट की तलाश करना। इसके लिए आप सबसे पहले अपने लोकल मार्केट में कस्टमर ढूंढें। विभिन्न दुकानों पर आपके अंडे और मीट बिक सकते हैं। अगर आपको अपने काम के लिए बाजार अपने आसपास ही मिल जाता है तो इससे आपका परिवहन खर्च बच जाएगा। इस तरह से किसान भाई अगर अपना स्वयं का पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और उससे अच्छी आय प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सब मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा, तभी वो अपना पोल्ट्री फार्म खोलकर बनाकर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात। जानकारी का विषय था अपना पोल्ट्री फार्म कैसे शुरू करें। मिडवीप और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है।

जय जोहार संगी हो, मैं हूँ सुमतिया बहन, आप मन सुना तहा आकाशवाणी अंबिकापुर कार्यक्रम घर गोसाइन में स्वागत करता हूँ। बहनी हो, जब समाज हमर अंधविश्वास कुरुति और भेदभाव में जकड़ल रहीस, तब एक ऐसन व्यक्ति के जन्म होइस जो शिक्षा समानता और महिलाओं के अधिकारों के प्रति आवाज उठाइन। वो महान व्यक्ति रहिन राजा राम मोहन राय जी। और देखी उनकर जन्म 22 मई 17 देखत ही कि हमर जो जन्म स्थान रहीस वो देखी 1772 के पश्चिम बंगाल के राधानगर गांव में हुए रहीस। नान कुनले देखी बहुतेच बुद्धिमान रहीन, समाज के प्रति जागरूक रहीन, अपन देखी बहुते अकन भाषा के उनके ज्ञान रहीस, जैसे कि संस्कृत फारसी अरबी और अंग्रेजी, जैसे कई भाषाओं कर उनके बहुत ही विशेष रूप से बढ़िया ले ज्ञान भी रहीस। देखी समाज में फैलल अनेक बुराई के खिलाफ संघर्ष करीन। ओ घनी देखी समाज में सती प्रथा, जिसे अमानवीय कुरुति हर जन्म ले रहीस, और जेमे देखी पति के मरे के बाद हमर जितरा बहिन मन रहीन, जे भी जिनकर पति भई मर गए रहीन, उनके देखी कहतरी चिता में जलाल दिहल जात रहीस। ए प्रथा सला तो हमन जाना तही, वही घनी देखी हमर राजा राम मोहन जी आगू आइन और ये प्रथा कर कड़ा विरोध करीन। उनकर प्रयास ले 1918 देखी 29 में

सती प्रथा के प्रति ये सब हमारे सन में प्रतिबंध लगाल गई। ये हमारे भारतीय समाज के सुधारक के इतिहास में एक बहुते बड़खा कदम रहिस। संगी हो उनकर उद्देश्य रहिस कि हमारे समाज में फैलल

0: हमर जितरा बहिन मन रहीन जे भी जिनकर पति भाई मर गए रहीन उनके देखी कहत रही चिता में जलाल दिहल जात रहीस। ए प्रथा सला तो हमन जानत ही वही घनी देखी हमर राजा राम मोहन जी आगू आइन और ये प्रथा कर कड़ा विरोध करीन। उनकर प्रयास ले 1829 में सती प्रथा के प्रति ये सब हमर ईसन में प्रतिबंध लगाल गईस। ये हमर भारतीय समाज के सुधारक के इतिहास में एक बहुते बड़खा कदम रहीस। संगी हो उनकर उद्देश्य रहीस कि हमर समाज में फैलल रूढ़िवादी अंधविश्वास ला खत्म करी और वो मानवता धर्म में विश्वास राखत रहीन। आज के समय में घलो राजा राम मोहन जी के विचार हमर बर बहुत महत्व रखते। उनकर से ही देखी हमन ला ये सीख मिलते कि हमन अपन समाज में बदलाव लाए सकते ही जेमें हमन ला देखी साहस शिक्षा सही सोच विचार ला जन्म दे के हमन जम्मू झन मिल के अनेक जितना कुरुति है समाज में जो अंधविश्वास है दहेज प्रथा है हमर देखी घरेलू हिंसा हवे जो हमर बहनी मन पर अत्याचार हुआता है वो इतना जितना अकन कुरुति मना है इला हमन जम्मू झन बहनी मन मिल के हमर समाज से खत्म कर सकते है। देखी बेटी ला शिक्षा दी महिलाओं कर सम्मान करी अंधविश्वास ला दूर भगई तभी देखत ही कि एक सच्चा अर्थ में हमन देखी एक बढ़िया भारत के जो सपना देखती जिमें हमर बहन बेटी मन सुरक्षित हैं जिमें कोई दहेज प्रथा के गोट नहीं है जो कहीं अंधविश्वास के जगह नहीं हवे ऐसा बढ़िया समाज कर हमन निर्माण कर सकते ही। अंत में मैं यही कहूँ राजा राम मोहन जी के देखी जयंती पर हमन सब जन संकल्प ले सकते ही कि हमर समाज में समानता शिक्षा जागरूकता ला बढ़ावा दे ताकि हर कदम में हमर बेटी बहनी मन सुरक्षित रह सके उनके उनकर अधिकार भेटाए सके और जो हमन सपना देखती एक बढ़िया समाज के एक बढ़िया भारत के और हमर जो बेटी बहनी मन आगू बढ़त हैं उनकर में देखी शिक्षा में कोई कमी ना आए ऐसे बढ़िया समाज कर निर्माण कर सकत ही। संगी हो देखी आज के समय में देखी हमन ला कोशिश करना है हर पिता ला हर माँ बाप ला अगर घरे बेटी हैं तो एक ठो चिंता जरूर रथे देखी है ला पढ़ाबो लिखाबो कैसे एके हमन एकर बिहाव शादी कैसे करब हमन ला देखी जब बेटी जन्मते तो हमन पैसा कौड़ी जुटाना शुरू कर देती हमन ला दिमाग में रथे कि हमन ला देखी इतना बड़खा बड़खा काम करना है अगर लड़का हर बढ़िया पढ़त लिखत है बेटी ला तो आगू पढ़ाई लिखाई पर हर मुमकिन कोशिश करते हर माता पिता उनके सही दिशा दिखाते पालते हैं पोसते हैं लेकिन कहीं जग आगू आए कि अगर हमर समाज में ही हमर बेटी मन अगर असुरक्षित महसूस करता है अगर वो दहेज प्रथा कर शिकार होते हैं घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं तो हमर समाज आगू नहीं बढ़ता है कहीं ना कहीं पीछे रहता है। आज भी हमन कितनो आधुनिक हो गए हैं लेकिन आज भी हमन ला सुने पर बेटा थे कि दहेज प्रथा के कारण वो बेटी कर जीव हत्या हो गई तो ओके मारपीट हो गई घरेलू हिंसा के शिकार हो गई तो हमन बेटी ला बिहाव करे ले आगू मैं तो यही कहूँ कि बिहाव करे ले आगू हमन उनके इतना मजबूत बनाए दे ही उनके बढ़िया शिक्षा दे दे ही उनके ऐसा प्रशिक्षण दे दे ही कि वो अपन आत्मरक्षा कर सके और आगू बढ़ सके और अपन अधिकार के बारे में जानकारी उनके देखी हर दिशा में आगू ले जा सकते है। तो बिहाव पाछू करिहा आगू अपन बहन बेटी ला पढ़ाई लिखाई लेवा उनके जमो जात कर ज्ञान रही तो देखी अपन जिंदगी ला आगू बढ़िया ले गढ़ सकी। देखी ढेरे चकन गोइट बात करत हन गोइट बात हर कैसन लागत है हमर बहनी मन ला एहू मन ला हमन ला संदेश मन में चटिक लिख मन भेजत रही हो ओकर ले आगू देखी गीत मन ला सुनब मोर जग संदेश है एला सुन लेहल जाए।
1: ये देख कैसे
2: हैप्पी बर्थडे भाई
1: दीका
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग
4: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है
6: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
4: आई नो ना
6: RBI कहता है
7: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

हाँ तो संगी हो देखी सुघर अकन छत्तीसगढ़ी लोकगीतला सुनत रहें और गवैया रहें गौरी नंदनी रानी टंडन मंजू मोहन स्मृति टंडन। तो देखी सुघर अकन बहुते बढ़िया गीत रहीस। देखी बहनी मन साग भात रांधत होही बाटत होही या खात होही और एकस में गीत मन हर सुने पर भेटाए जाते तो बड़ा बढ़िया लागते सुनत सुनत। देखी रेडियो मन ला हमर एक अलग ही माहौल बन जाते। देखी एक गर्मी के बेरा चलत है और ऐसे चिलचिलात गर्मी में हर मनखे हर सोचत है कि देखी हमन ला घर से बगरा निकलना झन पड़े और हमन निकली तो देखी अपन सुरक्षा कर ध्यान ला दे आँखी कान मुँह ला ढाँक लई देखी पानी ला संघे राखी कि थोड़कुन देर देर में बेरा बेरा में देखी लंबा समय कहीं जात ही तो हमन ला पीना है या ऐसे भीड़ भाड़ बगरा एरिया में झीन जाई ताकि हमन देखी कोनो भी ऐसे इतना ज़्यादा गर्मी है कि कोशिश करी हमन घर में रही और अपन स्वास्थ्य कर तिहा जतन करी। घरे अगर सियान है लइका है वे नान तो उमन कर भी तिया करी ताकि देखी उमन अस्पताल जाए ले बैठ जाई और हमर बहनी मन पर बढ़िया गोट हुई कि हमन अस्पताल नहीं जाना पड़े गर्मी कर मजा घरे बैठ के ले तो घरे बैठ के भी बहुत सा हमन ऐसे काम कर सकत हन अमन अपन समय ला बिताए बर हमन लइका मन ला नवा नवा कुछ कुछ कहनी मन किस्सा कहनी मन सुनाए सकत हन सिखाए सकत हन या आगू आए वाला सत्र के पढ़ाई लिखाई ला कटिक उमन ला थोड़कुन करके पढ़ाए सकत ही ताकि उमन आगे आए वाला समय में लइका मन बढ़िया से पढ़ लिख ले हैं। बहुत अकन ऐसा काम है जिला हमन घरे बैठ के कर सकत ही। देखी आज हवे हमर दिन कथा कहने के और हमन देखी भाई सुगर सुगर गोट लानथन कि हमन ला का भाई देखी विषय में गोट करना है का हमन ला बताना हवे नवा नवा जानकारी देना है कथा कहनी होए चाहे हमर धरोहर होए चाहे हमर देखी भेंटवार्ता होए चाहे बहनी के कहनी नवा नवा विषय में हमन सुगर सुगर चीज लानथन ताकि हमन बहनी मन ला नवा जानकारी मिल सके। देखी आज हवे जैसे कि हमर धरोहर और हमर धरोहर में मैं लाने हो देखी जो समय हमर चलत है जितना मान गर्मी हवे और ये गर्मी से हमन ला जंगल से देखी जो आग लगत है इला कैसे बचाना हवे। संगी हो हमन जानते ही कि दुनिया भर में बगरा जंगल में आग मानवीय गतिविधि के कारण लागथे प्राकृतिक कारण घलो भी होते लेकिन बगरा हमर जैसे कि देखी जैसे बिजली गिरना है अधिक जैसे तेज हमन देखत ही कि तापमान बढ़त है चट्टान कर घर्षण होता है लेकिन देखी प्रकृति के मार ले बगरा हमन जो लापरवाही करत ही कभो कभो ऐसा लापरवाही कर देती जेकर से बहुत ही बड़खा नुकसान उठाना पड़ते हमर जंगल झाड़ी मन ला और उनके जो पलत है वो जकर जीव जंतु मन ला। तो देखी गर्मी हर आग उगलत है हर मनखे हर यही सोचत हवे कि एतिक मान काबर हर साल गर्मी हर बढ़त जात हवे और देखियो आए वाला समय में हर आव बढ़त जाही जितना देखी हमन आगू माटी के घर खपरा के घरे रहत रहें अब सुघर सुघर सुघर देखी बढ़िया बड़खा बड़खा बिल्डिंग जे हिसाब से बनात जात ही पेड़ पौधा ला काटत जात ही खेती किसानी और हमर देखी कहाँ बांट जाते समझ में नहीं आते ही जीव जंतु विलुप्त हो जाते हैं एकस में हमन केतरा दिन जीबो अगर हमन जी गए तो का आए वाला हमर पीढ़ी मन है कुछ भेटा ही उमला शुद्ध हवा शुद्ध पानी का हमर जंगल एकस हरा भरा रही कुछ नहीं रहे जे हिसाब से हमन एकर इस्तेमाल करत ही आगू आए वाला समय में कुछ नहीं बाछी। और जैसे मैं कथों कि भाई बरखा आते तो हमन कथन खूब पेड़ पौधा लगाना है खूब हमन लती जतन करना है इतने मान अगर हमन उत्साह और उकर महत्व ला समझते तो देखी हमार आए वाला समय में देखी जैसे पेड़ पौधा के जो कमी हो जाता है हर साल वो हर तो झटकुन पूरा

हो जाती, बस हमन लगाथन सोचथन हमन की देखी मार फोटो वीडियो बनाथन कि आज हमने तक माँ के नाम से एक पेड़ पौधा लगाएं, लेकिन ओकर सुरक्षा करना ओके पोसना पालना जैसे लइका पोसते ओकर भी हमन लतिहा जतन करना पड़ते। तो वही लगा तो जितना ही उत्साह से हमन पेड़ पौधा बरखा में लगाती उतना ही उत्साह से ओकर तिहा जतन करते, तो इतना मान गर्मी हर बाढ़तीस नहीं धीरे धीरे कम होतीस। लेकिन हमन एक गोटला कब समझब हमला समझ में नहीं आता है गर्मी के समय में देखी अपन जंगल झाड़ी और जंगल में रहे वाला जीव जंतु ला आग से बचाना हवे संगी हो कुछ प्रयास जो हर मनखे ला हर व्यक्ति ला हर बहनी ला करना चाहिए ताकि आए वाला समय में ये गर्मी से हमन बैंस सकी सही मौसम में सही बेरा में सही चीज अगर मौसम के बदलाव हुआ था तो हमर पर भी बढ़िया है हमर स्वास्थ्य पर भी बढ़िया है। नहीं तो जे हिसाब से हमन आधुनिकता की ओर बढ़तन हमन देखी हमर सोच और खाली मोबाइल में बढ़तन आउ कति हमर जैसे कि कहतों कि मैं हमर परंपरा भाषा बोली हमर संस्कृति हर कहों पीछे ढकला जाता है। आजकल हमर लइका मन जैसे जोन मार मोबाइल टीवी में देखत हैं वैसे में हमन कोई चीज लागू नान कुन तिहार बार ही मनाई तो देखी ओमें हमन देखी मांदरे बाजत रहीस तो झूम उठत रहन। आजकल तो डीजे ला तो बजाए कि जीव हर लागल कि धरधराए के कहन कति भाग जाऊँ। अगर रोडे चलत है तो जितना मोबाइल हर देखी ऐसा बाजते सामान वन हड़ाए जाते नीचे तो ऐसा तो माहौल है इसे तो ऐसे में कहाँ जग हमन भाषा बोली संस्कृति कर हमन रख रखाव करत हन कि बचात हन कब एकस कर तो कही मैं नहीं करूँ ये तो पुराना समय के चीज हवे एला मैं करके थोड़ी ना स्मार्ट दिखूँ कि एला पहिर के मैं बढ़िया दिखूँ। तो ये सब धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं जैसे हमारे पेड़ पौधा होइन वैसे हमार पशु पक्षी होइन अब धीरे धीरे हमार भाषा बोली संस्कृति और जाता है कहाँ बट। तो यही कोशिश करूँ कि मैं देखी जैसे पेड़ पौधा के संरक्षण आग से बचाई कर वेट करत रहें उनमें जन जागरूकता भी उतना ही जरूरी है। जंगल में आग लगे के कारण देखिए भयानक परिणाम के बारे में हमला मनखे मल्ला शिक्षित करना चाहिए कहाँ कहाँ जग कर सकत हन जैसे हमन ए विषय में जागरूकता अभियान चलाए सकत हन हमर स्कूल हो गईस कॉलेज हो गईस गांव हो गईस स्थानीय समुदाय में हमन चलाए सकत हन। संगे देखिए हमर संगे सांजुआर चौपाल बैठते हमर गांव घर में सियान मन बैठते उमन से गोट बात कर सकत हन और जगह जगह देखी कुछ कुछ बेरा में देखी ऐसे गोट बात चर्चा करते रहना चाहिए जेकर से हमर हर चीज हर जंगल झाड़ी जीव जंतु जल जंगल जमीन हर पाँच सके जेकर से हमला हर तरफ से भाई ज्ञान बांट के हमन छोटा सा प्रयास कर सकत हन और देखी ये छोटा सा चिंगारी से जले वाला जंगल ला बचा सकत हन। अगर जंगल हर जलत है तो देखी नियंत्रित और कुछ सावधानी ला भी हमन ला चेतना हवे जैसे कि जंगल के आसपास या जंगल के अंदर अगर कभी कभी ऐसे हो जाते कि देखी वन विभाग द्वारा ही कुछ कारण से आग लगा जाते तो ये सुनिश्चित करी कि आग ला हमन कैसे बुझाए सकत हन। हमर जग पानी होए हमर जग बालू होए हमन सूखा पतैला तरी तरी कर दई इते उते कर दई ताकि देखी हमन इकट्ठा करके छोड़े छोटे छोटे जगह ला आग लगाई अगर लगाना जरूरी है तो और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई देखिए नान नान जीव जंतु जो रेंगता है भाई चाहे वो कीड़ा मकोड़ा रहें चाहे चाटीच रहें कहीं जात रहें हर चीज़ का महत्व है हमार जीवन के जो ये चक्र चलता है ना हर चीज़ कर है। तो संगी हो छोटा सा लापरवाही ले हमार जंगल के जीव जंतु ला नुकसान झन पहुँचाई। संगे आजकल फैशन हो गई सह का चीज़ कर धूम्रपान कर मार इतना मान कर देते हो संगी मन अगर भेटाए जही तो दो तीन गो बढ़िया सिगरेट हो गई बीड़ी हो गई ऐसन पीते ऐसन दिखाते कि वहीच में शान बान हवे हमर वहीच कस दिखते। तो देखे देखे में भी देखी बहुत अकन भाई करते कि तय करत हस तो महू पी देखो और पिए पिए में देखी इते उते चल जाते हैं जंगल बाट चल जाते हैं और सोचते हैं कि भाई नान कर तो चिंगारी है ला फेंक दई जंगल कति जाई और धूम्रपान ला झन करी बीड़ी सिगरेट ला हमन ऐसे देखी फेंक देती जेकर से और जैसे माचिस का जो तीली है वह जलत है ओला भी हमन फेंक देती आग लग के देखी बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा होते जंगल में आग लगे से हमर जंगल में रहे वाला नान नान जैसे जीव जंतु ल कहें उमन ला नुकसान होते। तो हमन ला देखी धूम्रपान में नियंत्रण रखना है बीड़ी सिगरेट पियत है तो पी लेकिन चटिक सावधानी रखी पीना तो देखी हमर जीव भर बढ़िया नहीं हवे लेकिन जैसे कहें कि हमन आधुनिक हो गए हन फैशन हवे भाई दिखाना जरूरी हो जाते हमन यही में अपन शान बान समझती तो देखी ऐसे करे से बाँच सकत है तो बाँची नहीं तो भाई देखी
बहुत बुरा हो जाही। जंगल में देखी हमन कोशिश करी कि जैसे वन विभाग है एला सूचित करी, कहों जग भी जंगल में आग लग जात है या आग जलत देखत ही तो जंगल कति झटकुन हमन वन विभाग ला देखी।

कि हमन सूचित कर सकत ही वो अपन संग मिल के या स्थानीय लोग आए उमन संग मिल के वो आग ल रोक सकत हैं, बुझा सकत हैं, चुपचाप झन बैठी। और देखी अग्नि रेखाओं का निर्माण होना, जंगल के संवेदनशील क्षेत्र में चारों कति अग्नि रेखा बनाल जाते जेकर से वनस्पतियों ले मुक्त पट्टियां होते जो आग ला फैले से रोकते। तो ये देखी अग्नि रेखाओं का निर्माण होना बहुत जरूरी है। जंगल देखी जांच और निगरानी, गर्मी कर समय में बेरा बेरा जंगल के जांच निगरानी रखना बहुत जरूरी है ताकि आग लगे से हमन बैच सकी, हमर जंगल ला बचा सकी। स्थानीय लोग संग सहायता भी ले सकत ही, कहो जगह आसपास में आग लग गई से तो हमर पंच है, सरपंच है या कोनो बाढ़ भी गई भाई कहीं दुनिया सड़क पे लग गई से तो आप मन जरूर सूचित करी ताकि हमर गाँव घर के लड़का मन मिल के वो आगला बुझा सके। पानी के स्रोत में देखी कर प्रतिबंध, जंगल कति जो भी जलाशय हवे पानी के स्रोत ला बनाए रखना जो हमर जंगल के आगला बुझाए में हमर मदद कर सकता है। अब तो देखी जैसे कहें अब तो हमन आधुनिक हो गए हवन, आधुनिक तकनीक कर उपयोग भी कर सकता हन। देखी हर चीज़ खराब नहीं होते, आधुनिकता में आना आधुनिक होना हवन जे तरह से मोबाइल टीवी लैपटॉप अनेक सामान कर उपयोग करते ही वैसे ही जंगल ला बचाए हमन ड्रोन कर उपयोग कर सकते ही, सैटेलाइट कर इमेज कर उपयोग कर सकते ही जो कि आधुनिक तकनीकी कर जो हमन उपकरण है ओकर प्रयोग करके हमन जंगल झाड़ी ला बचा सकते ही। संगी हो हमर पर्यावरण ला भी जंगल में आग लगे से भारी नुकसान होते, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, मृदा में देखी हमन ला नुकसान हुआ था, आर्थिक नुकसान तो होते होता है। देखी वन संसाधन कर हानि कृषि पर बहुत ही बगरा प्रभाव पड़ता है। जंगल में आग लगे से पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समाज ला गंभीर नुकसान होते। एकर ले देखी जंगल के आग से बचना और बचाना हमन सब छन कर जिम्मेदारी हवे। तो एकर नियंत्रण पाए कर प्रभारी हमन ला देखी एकदम कदम ऐसा उठाना चाहिए तभी हमन अपन जड़ जंगल जमीन जीव जंतु ला बचाए सकत ही। एकर बर हमन ला जन जागरूकता और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। धेरे टुरबुराए ले संगी हो लागत है कि मुँह अमन हर कटिक दुखात है, संगी मोर जग सुघर अकन गीत है ला सुन लेल जाए।

0: हाँ तो संगी हो देखी सुघर अकन हमन भोजपुरी लोकगीत ल सुनत रहन रामलोचन यादव कर गाल गीत रहिस। संगी हो देखी आज बहुत ही अनेक अनेक विषय में देखी गोट बात करें संगी मन ला कैसन लागिस होही तो हमन ला संदेश जरूर लिख भेजी। और संदेश लिखे बर देखी हमार ईमेल आईडी है ghargosain@gmail.com। संगी हो आप मन जरूर हमन ला लिख के भेजी ताकि हमन साझा कर सकी और संगी मन के पसंद पसंद कर गीत मन ला सुनवाए सकी। देखी गर्मी हर ढेरेज बाढ़ गई सा है और ऐसे में अपन खान पान कर तिहा करना बहुत जरूरी हो गई सा है। कोशिश करी कि देखी बगरा से बगरा पानी पी और देखी अपन सलाद हो गई सा अपन खान पान में देखी फल है तरबूज है खरबूजा है खीरा है ककड़ी है टमाटर है साग भाजी है ऐसे सेवन कर सकत ही। तो देखी जाए के बेरा हो गई सह जात जाते ही कहूँ कि स्वस्थ रहिया मस्त रहिया फिर भेटा हूँ सुमतिया बहन लदा विदा जय जोहार राम राम।
1: अभी ग्रामीण महिलाओं के लिए घर गोसाइन कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मिडवीप और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन की 1:40 हुई हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

नमस्ते, शुभ दोपहरिया और आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को दिल से प्रणाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त तरुण। जिंदगी का ताना बाना जब खूबसूरत एहसासों से बुना जाता है, तभी आता है एक ऐसा कार्यक्रम जो दिलों को जोड़ देता है, मुस्कुराहटों को बढ़ा देता है और खुशियों में एक नया रंग भर देता है। और उसी खूबसूरत एहसास के साथ हम लेकर आए हैं आपका अपना कार्यक्रम ईमेल की गूंज। तो बस हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहिए और अपनी खुशियों का जो एक छोटा स्वरूप नहीं बल्कि एक पूरा समंदर बनाइए। और इस समंदर की लहरें जानते हैं क्या है? वो है आपके भेजे हुए ये प्यारे प्यारे ईमेल्स जो बहुत ज़्यादा तादाद में आज हमारे पास आए हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की पहली फरमाइश के रूप में हमारे ये श्रोता साथी साथ हैं। नेहरू चौक पैठण से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जालाना शहर से हैं सोमनाथ जाधव, गीता ओम।

सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। सारसताल सोनगुड़ा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मीर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, रामकलावन सिंह पैकरा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं पूरब साहू, वीरा साहू, हर्ष और कुमकुम साहू। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। जनकपुरी से हैं पिंटू, राजेंद्र सिंह ओबराय। पलारी छत्तीसगढ़ से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और लखन लाल देवांगन। अकोला से हैं विक्रम भोसले, अनुष्का, गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले। दरियापुर बावली महाराष्ट्र से ये ईमेल आया है। परभणी महाराष्ट्र से हैं रुपेश संघई, महेश संघई, ब्रजेश, प्रीतेश और पूरा संघई परिवार इस गीत की फरमाइश में शामिल है। गांव कुंभार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन और इब्राहिम। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल और समस्त विश्वकर्मा परिवार। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, निवान, सौरव, शाइना और मैंडी शर्मा। इसी गीत के रूप में हमारे ये साथी भी शामिल हैं। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, आदेश कुमार काले। जेल रोड रायगढ़ से हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी, और इनके साथ हैं कमल। आइए इन सबकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं नमक हराम फिल्म से ये गीत। आवाज किशोर कुमार की है।

सच में दोस्तों, दिए जलते हैं जब आपके ये प्यारे प्यारे ईमेल्स हमारे पास पहुंचते हैं, और जब ये ईमेल हमारे पास आते हैं ना, तो एक प्रकाश आता है, कैसा, एक मुस्कुराहट के रूप में हमारे चेहरे पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ईमेल की ये मीठी सी गूंज आपके दिलों में ऐसे ही गूंजती रहे। चलिए अब आपके इन्हीं खूबसूरत जज्बातों को सुरों का एक नया लिबास पहनाते हैं। सुनिए गीत जो सीधा आपके दिल की खुशी को बढ़ाने वाला है। फिल्म का नाम है कस्मे वादे, आवाजें आरडी वर्मन और साथियों की, और पसंद आप सभी श्रोताओं की। दिल्ली से हैं स्वीटी और प्रतिभा, उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश, रसेड़ा से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश साहू और केश साहू, सेक्टर 67 चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, इंदिरा चौक तखतपुर से हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रत्नमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर, पाकुड़ झारखंड उत्तम नगर, माफ कीजिएगा, पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णो आनंद, सत्यम आनंद, बोढ़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, मेन रोड तेलहारा से हैं प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार, तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश और आसिफ शेख, बुलढाना महाराष्ट्र से हैं संतोष एस काले, तेजस, लोकेश, गजानंद सलोनकर, पश्चिम बंगाल रानीगंज से हैं रिहान शर्मा और करण दीप। आइए आप सब की पसंद पर सुनवाते हैं कस्मे वादे फिल्म का ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, कल क्या होगा किसको पता, लेकिन ये जो समय ना अपनापन और प्यार इस कार्यक्रम से हमें मिल रहा है ना आप सभी का, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खास है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ श्रोताओं का नाम कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते, वो बड़े नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर महफिल में हर श्रोता का नाम और प्यार इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए। समय की सीमाएं कभी कभी हमें थोड़ा बांध देती है, वरना दिल तो यही कहता है कि बस हर श्रोता को इस कार्यक्रम से जोड़ दिया जाए जिन्होंने अपने ईमेल्स इस कार्यक्रम में भेजे हैं। तो चलिए इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत जिसमें हमारे ये श्रोता साथी शामिल हैं। मजनू कटिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं खेलसाह मरगाम, नयन प्रकाश मरगाम, शारदा लक्की, सीताराम सितंबर, अमरनाथ मूर्ति, रोशन राजवाड़ी, पांडे राम राजवाड़ी, हीरालाल प्रजापति, नूर साह राजवाड़े, कविता मरगाम और आरती मरगाम। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी और पायल जोशी। पंजा नागपुर से हैं प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े। बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता पलक, लुबना और यश मंसूरी। कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। नवापारा अभ्यारण जिला बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से ही नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक खुशबू ज्योति ठाकुर। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहर, मेहरा किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। आइए आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं रुदाली फिल्म का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर की है।

जी हाँ श्रोताओं, मेरा दिल भी उदास हो जाता है जब आपके ईमेल्स कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपके सारे ईमेल्स इस कार्यक्रम में शामिल करें और आप उन्हें सुनकर बहुत खुश हो जाएं, मुस्कुरा उठें। इस दौड़ती भागती दुनिया में अगर कोई समय निकालकर आपको कुछ लिख रहा है तो यकीन मानिए, इस दुनिया में आप बेहद खास हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनत से बहुत समय निकालकर आप हम तक वो ईमेल्स पहुंचाते हैं अपने नाम के साथ, अपनी फरमाइशों के साथ, और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपका हर ईमेल इस कार्यक्रम में शामिल हो। तो चलिए अगले गीत में हमारे ये श्रोता साथी शामिल हैं। सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं चंदूलाल सिंह रॉल, माफ कीजिएगा, चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी कृष्टि पटवा, ग्राम सोगा धमतरी से हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन। अगला ईमेल आया है हमारे पास लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद

रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकी पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराडे, साफिया अरहान खोखर और मोहम्मद हसनैन पवार। मलकापुर से हैं पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर। नल्लेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर। और ये ईमेल आया है मलकापुर से। सिल्लोड जिला छत्रपति संभाजीनगर से हैं अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोटके। लोरमी चचेरी से हैं शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय, संध्या और शिवम कोलाम। छत्तीसगढ़ पथरिया भरीवा से हैं चंदुलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। आइए आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं जमीर फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

जब हम चलते हैं तो जिंदगी बहुत हसीन हो जाती है, कैसे, मुस्कुराने से। जब आपके ईमेल इस कार्यक्रम में आते हैं तो हम भी बहुत खुश हो जाते हैं, दूरी चाहे मीलों की हो। पर जब आपका ईमेल हमारे पास आता है तो ऐसा लगता है जैसे आप हमारे सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सचमुच मुस्कुरा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम में अगली फरमाइश शामिल करते हैं हमारे इन श्रोताओं की। सावरगांव महाराष्ट्र से हैं रघुनाथ पाटिल नारे, पुष्पाताई नारे। तेलंगाना भुवनगिर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन। संबलपुर कांकेर से हैं फग्गूराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकर्ण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, निधि, निखिल वर्मा। अहिवारा जिला दुर्ग पोषण बंछौर से हैं चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछौर। जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, आलोकिक चंसोलिया। पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से हैं उत्तर कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं शिकारी फिल्म का ये गीत, आवाज कुमार सानू की है। श्रोताओं, हम भी गजल लिख रहे हैं आपके नाम की, कुछ इस गीत की तरह।

0: सच में दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत हसीन है और इसे हसीन बनाते हैं आप, जब आप अपने ईमेल हम तक पहुंचाते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं उन ईमेल को आप तक पहुंचाने के लिए आपके नाम के साथ, आपकी फरमाइश के साथ। ऐसे ही ईमेल भेजते रहिए, अपनी पसंद के गीत सुनते रहिए। आज बस कार्यक्रम यहीं तक। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी है। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
2: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने

0: का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
0: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
4: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्ष

0: बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय पहली जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि BSF ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ITIR News हिंदी को

0: फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जा रहे थे। मिडवेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गीत गंधा कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी अंबिकापुर के इस खूबसूरत और प्यारे से सफर में आप सभी श्रोताओं का मैं तरुण दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि खुशियां तब और भी खूबसूरत हो जाती हैं जब उन्हें अपनों का साथ मिल जाता है, और रेडियो तो वही प्यारा एहसास है जो दूर रहकर भी दिलों को करीब ले आता है। तो बस चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सजाइए, दिल के सारे बोझ थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और शामिल हो जाइए इस महफिल में, जहां बातों में अपनापन है, गीतों में मिठास है और हर पल में ढेर सारी खुशियों की सौगात है। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त तरुण, और अब शुरू करते हैं प्यार, मुस्कुराहट और सुरीले गीतों से सजा हुआ ये शानदार कार्यक्रम, जिसका नाम है गीत गंधा, जिसमें हर धुन आपके दिल को छू जाएगी और हर बात आपके चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाएगी। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ सुनते हैं ये गीत। आवाजें हैं दलेर मेहंदी और साथियों की। तो श्रोताओं, इस गीत में झूमने वाली बात है, तो चलिए थोड़ा सा झूम लेते हैं।

तो यकीनन दोस्तों, इस गीत में आप थोड़ा बहुत तो जरूर झूमे होंगे। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं स्टेबिन बैन की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, गीत गंगा की इस महकती फिजा में आगे बढ़ते हुए आइए अब कुछ और सुगंधित बातों की ओर चलते हैं। जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों का भी नाम है जहां दिल मुस्कुरा उठता है और मन गीत गुनगुनाने लगता है। जरा सोचिए, किसी सुबह की ताज़ी हवा में गहराई से सांस लेना, किसी प्रिय दोस्त की मुस्कान में अपनापन पाना, या फिर बरसात की पहली बूंद में बचपन की यादों का लौट आना, क्या यह सब किसी गीत की तरह दिल को महका नहीं देते? जी हाँ, महकाते हैं। गीत गंधा का यही उद्देश्य है कि हर गीत हर धुन में आपका अपनापन हो और आप उसे महसूस करें खुशबू की तरह। तो आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर जिसमें माँ के लिए कुछ कहा गया है। आइए सुनते हैं ये गीत, आवाज़ जुबीन नौटियाल की। सुनकर बताइएगा कैसा है ये गीत।

0: एक ऐसा खूबसूरत सफर जिसका रहता है बेसब्री से इंतजार,
1: क्योंकि ये होता है आपकी ही फरमाइशों से गुलजार।
0: जब आपकी पसंद का कोई गीत रेडियो पर बजता है,
1: आप सभी की फरमाइशें होती हैं सर आँखों पर।
0: प्रोग्राम का नाम है ईमेल की गूंज,
1: मधुर गीतों की एक ऐसी माला जिसके हर एक फूल आपके ही भेजे हुए होते हैं।
0: जी हाँ, आपकी पसंद के गीतों का ये कारवां लेकर आता है आकाशवाणी अंबिकापुर खास आपके लिए।
1: इसके लिए करना होगा आपको हमें ईमेल।
0: ईमेल के लिए हमारा पता है ईमेल की गूंज @gmail.com, जिसमें प्राप्त होगा आपको एक पेज।

0: आपको इस पेज पर अपना नाम, पता और अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेजनी होगी। आपके मेल भेजने का समय होता है सुबह 10 बजे से सुबह 10:45 तक।
1: प्रिय श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि आकाशवाणी अंबिकापुर से प्रसारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज की प्रसिद्धि अब न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी है। हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश के साथ अपने व्यवसाय और उत्पाद के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन भी प्रसारित करवा सकते हैं।
0: तो जुड़े कार्यक्रम ईमेल की गूंज में आकाशवाणी अंबिकापुर के साथ। दोस्तों, जिंदगी भी कितनी खूबसूरत होती है ना। कभी किसी प्यारे गीत की तरह हम मुस्कुरा देते हैं, तो कभी किसी मीठी याद की तरह चुपके से दिल को हम छू लेते हैं। और सच कहूँ तो जब अपने साथ हो तो बातें दिल से निकल रही हैं, और संगीत का साथ हो तो सचमुच ये जो पल है ना, बहुत हसीन हो जाते हैं। चलिए इन पलों को और हसीन बनाते हैं। सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। आवाज़ें हैं दलेर मेहंदी और साथियों की।

सभा समापन से पहले आइए अब आपको बताते हैं हमारे केंद्र से आज के शेष मुख्य आकर्षण। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोंड। शाम 5:05 पर भजन संध्या कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवावाणी आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे हेलो फ्रेंड्स क्रम। शाम 6:05 पर विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोकगीतों कार्यक्रम गोदली। फिल्म संगीत का माधुरी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे शाम 7:05 पर। किसान भाइयों की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। इसमें आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, आजकल, लोकगीत, स्मार्ट कृषि, श्री अन्न समृद्ध अन्न पर कुछ चर्चा होगी। साथ ही आप सुनेंगे मंडी भाव, मौसम कर जानकारी, मौसम आधारित कृषि परामर्श। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम। रात्रि 9:15 पर आपको सुनवाएंगे चित्रपट संगीत। रात्रि 9:30 पर सुनेगा ईमेल की गूंज कार्यक्रम। और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे राग प्रधान कार्यक्रम। इसके अलावा रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम मन भावन। यतुति श्रोताओं, हमारे केंद्र से आज के शेष मुख्य आकर्षण की जानकारी।

मीडियो हिप 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। मीडियो हिप पर सभा समापन से पूर्व आपको बता दें कि FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी दिल्ली से FM गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियो हिप 1260 किलो हर्ट्स पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5:00 आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये मिंढारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये पूर्णिपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गाडांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांड गांव, बरवाली, बरडांड, दांतीढाप, कंडराजा, बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थल गांव, तपकरा और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूर चूंदी, बरटोली, खड़ामाचा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल, झिक्की, खंताडांड, परसाडांड, पेटा, सामरबार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 141 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, औरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीत, कोठारी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासुल खोई के वन क्षेत्र

0: में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी और फिल्मी भजन पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लखबीर सिंह लखा के गाए इस भक्तिमय भजन के साथ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। आइए सुनते हैं अब अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भजन।

इसी के साथ कार्यक्रम भजन संध्या का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी।

0: नए जोश, नई उम्मीद, नए ज्ञान के साथ स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की शाम में। तो चलिए करते हैं आज के युववाणी की शुरुआत आपकी दोस्त शालिनी चौबे के साथ। चलते हैं दोस्तों हमारे फ्राइडे स्पेशल प्रोग्राम हेलो फ्रेंड्स में और करते हैं आपसे कुछ प्यारी प्यारी बातें और सुनते हैं आपकी पसंद के कुछ प्यारे प्यारे गीत।
1: हेलो फ्रेंड
2: हेलो फ्रेंड
1: हेलो फ्रेंड्स,

0: आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो। हेलो सर, नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं अंबिकापुर से राजकुमार निभानी बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी राजकुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया है।
0: तो इतनी गर्मी पड़ रही है अंबिकापुर में, और साथ ही साथ अभी ऊर्जा संसाधनों की संरक्षण के बारे में काफी सारी बातें आई हैं, तो इस पर आप क्या करना चाहेंगे?
1: मैडम देखिए, आज कल देखा जाए तो गाड़ियों की संख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
0: जी जी जी।
1: और हमें क्या है, बैटरी की गाड़ी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए।
0: जी,
1: क्योंकि आने वाले समय में और दिक्कतें आएंगी मैडम।
0: जी जी जी।
1: और हमको ज्यादा करके पहले जैसे साइकिल में चलना होगा सर हमको मैडम।
0: जी बिल्कुल, साइकिल में चलने का एडवांटेज भी है कि एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाएगा।
1: जी जी मैम, जी मैम।
0: जी तो आज कौन से गीत की फरमाइश लेकर आए हैं आप?
1: फिल्म का नाम है प्रेम रोग मेरी किस्मत में तू नहीं शायद।
0: जी तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: जी इंद्रभान सिंह जी, बताइए।
0: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, घर पे हूँ। आज मेरा ड्यूटी नहीं था, ड्यूटी तरफ से ट्रेनिंग में भेजा गया।
1: जी जी।
0: और मतलब ड्यूटी समझिए, मतलब तो आज मैं घर आया और दिशा मूर्ति हुए मनोरंजन के साथ में अपने पसंद के गीत जरूर बताऊंगा।
1: जी जी।
0: लेकिन कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी गर्मी काफी बढ़ गया है, उम्र गर्मी भी चल रहा है, तो लोगों से आग्रह करूंगा कि इस मौसम में सेहत का विशेष ध्यान दें। छोटे छोटे बच्चे जो इधर उधर भागते हैं
1: उनको
0: भी घर पर रखें, और घर से जरूरी तभी बाहर निकले, पानी पानी को पानी खूब पिए, और ठंडा चीज जैसे जिसको मतलब ज्यादा ठंडा चीज भी नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक को भी मतलब परहेज करना है, और कहीं जा रहे हैं तो प्याज को लेके जाए, उसके बाद जानवरों को धूप में ना बांधे, पानी की भी बचत करें, जानवरों को भी मतलब कि उनको नहलाए या फिर नदी तालाब पर ले जाए, उनको वो लोग नहलाते हैं,
1: नहलाते
0: हैं, और मतलब कि उनको मतलब ताजा मतलब भोजन जो भी दे, मतलब कि ताजा ही रहे, बासी भोजन बिल्कुल भूख के ना दे, और दही माठा खीरा ककड़ी ये सब जरूर खाए, तेल वाला पदार्थ ना खाए, पानी की भी बचत करे, और चिड़ियों को भी पानी दे, दाना पानी दे, और पशुओं को भी पीने का भी पानी की व्यवस्था जरूर करें। धन्यवाद
1: जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, काफी अच्छी जानकारी साझा की
0: जी। और दिशा मूर्ति में मनोरंजन के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है हेरा फेरी का गाना है, कुछ सुना देंगे हेरा फेरी का,
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कितने

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो।
0: हेलो जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हाँ जी, हम योगेश जांगड़े सेवा बांधा विमे तरह।
0: जी योगेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं
0: जी। तो इतनी गर्मी पड़ रही है, इस पर हमारे साथियों को कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: अब गर्मी का दिन है, गर्मी तो पड़ेगा ही, तो
0: जी।
1: बचाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हर मौसम का अपना अपना एक मतलब विशेषता होता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: बचाव के लिए अभी जैसे नौटप्पा की भी स्थिति है, तो
0: जी
1: जितना हो सके घर में रहे, अति आवश्यक हो तो टॉर्च वगैरह है, हेलमेट वगैरह है, पानी बॉटल वगैरह है, हमेशा साथ में रखें।
0: जी। तो आकाशवाणी को 90 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, तो आप हमें आ रहे श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे कि रेडियो हमारे लिए कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है?
1: रेडियो पुराने समय से लेकर भी बहुत जरूरी है, आज भी जन सूचना का सबसे बेहतर और आसान तरीका बना हुआ है।
0: जी।
1: मोबाइल ऐप में आने से तो एक प्रकार की हम क्रांति भी मान सकते हैं इसको।
0: जी,
1: जी,
0: तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: फिल्म गए हो से सुनवा देंगे कोई भी गीत।
0: जी, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: जट लटक मटक लचक मचक चाल चलत जा।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो
0: हेलो जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार,
1: ग्राम राजापुर, जिला फिरोजपुर, छत्तीसगढ़, खेल साय मरकाम बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी खेल साय जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं मैडम जी।
0: तो खेल साय जी, वहाँ गर्मी कितनी पड़ रही है?
1: इधर तो बहुत गर्मी पड़ रहा है मैडम जी।
0: जी जी जी, तो आपके खेती बाड़ी के काम वगैरह कैसे चल रहे हैं इस गर्मी में? आप कैसे अपने खेतों पे काम कर रहे हैं?
1: खेतों को तो ठीक ही चल रहा है मैडम जी, लेकिन ज्यादा गर्मी आता है तो फसल खराब हो जाता है।
0: जी जी जी, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म मोहरा का कोई सा भी गीत सुना दीजिएगा
0: जी। तो आइए खेल साय जी, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: पक्के से?
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका?
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: हेलो फ्रेंड्स।
8: हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार महोदया
7: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
8: जी मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरिबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
7: जी तो कैसे हैं आप?
8: बहुत अच्छी तरह से हैं।
7: जी तो क्या करते हैं आप?
8: खेती किसानी करता हूँ।
7: तो अभी क्या क्या चीज की फसल लगाई है आपने इतनी गर्मी में, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी काफी गर्मी चल रही है?
8: जी इस समय काफी गर्मी, केवल एक ही फसल लगी हुई, मूंग की लगी हुई है।
7: जी मूंग की फसल, तो अपने फसलों का आप कैसे ध्यान रख रहे हैं इतनी गर्मी में, क्योंकि बेसिकली इतनी गर्मी है तो फिर खेतों पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ता है।
8: पानी लगाने जाना पड़ता है, रात को रखवाने जाना पड़ता है।
7: जी जी जी जी, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
8: फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर।
7: जी
8: सर की धीरे धीरे उस चुनरिया दिल ले गई।
7: जी तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

अगर आप भी हमसे बातें करना चाहते हैं और अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार दोपहर 3:30 से 4 बजे के बीच हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 231-917-231-918। अंबिकापुर से बाहर या मोबाइल से फ़ोन करने वाले श्रोता अंबिकापुर का STD कोड 077-74 लगाना ना भूलें। इसी के साथ हमारा आज का ये क्रम बस यहीं तक। वक्त हो चला है दोस्तों आपसे विदा लेने का, तो दीजिए इजाजत आपकी दोस्त शालिनी चौबे को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और DGP से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ।

0: आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। आलेख है परवरिश, संकलन एवं वाचन स्वर हैं सबनम खानम के।
2: परवरिश यानी संस्कारों की छांव और प्रेम की सबसे सुंदर विरासत। ये वो मौन प्रक्रिया है जिसमें केवल एक बच्चे का बचपन नहीं संवरता बल्कि उसका संपूर्ण भविष्य आकार लेता है। परवरिश केवल पालन पोषण नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की सबसे सुंदर कला है। परवरिश केवल बच्चे को बड़ा करने की प्रक्रिया नहीं होती बल्कि ये उसके व्यक्तित्व, विचारों और संस्कारों को आकार देने की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी होती है। ये केवल देखभाल का नाम नहीं बल्कि प्रेम, धैर्य, अनुशासन और संवेदनाओं से बुनी हुई वो यात्रा है जो किसी मासूम मन को एक सुंदर व्यक्तित्व में बदल देती है। ये वो आधार है जिस पर किसी भी इंसान का भविष्य खड़ा होता है। जिस प्रकार एक माली अपने पौधे को प्रेम, धैर्य और देखभाल से सींचता है, उसी प्रकार अच्छी परवरिश एक बच्चे के जीवन को सुंदर दिशा देती है। परवरिश का अर्थ केवल भोजन, वस्त्र और शिक्षा देना नहीं, सच्ची परवरिश वो है जहां बच्चे को अच्छे संस्कार, संवेदनशीलता, आत्मविश्वास और मानवता का पाठ सिखाया जाए। क्योंकि जीवन में केवल सफल होना ही पर्याप्त नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना उससे कहीं अधिक आवश्यक है। बच्चों का मन एक कोरे कागज की तरह होता है। वे वही सीखते हैं जो अपने आसपास देखते और महसूस करते हैं। इसलिए माता पिता और परिवार का व्यवहार ही उनकी पहली पाठशाला बन जाता है। यदि घर में प्रेम, सम्मान और सकारात्मकता का वातावरण हो तो बच्चे के भीतर भी वही गुण सहज रूप से विकसित होने लगते हैं। अच्छी परवरिश में अनुशासन भी होता है लेकिन वो कठोरता से नहीं, समझ और स्नेह से जुड़ा होता है। जब बच्चों को सही और गलत का अंतर प्रेम पूर्वक समझाया जाता है तब वे डर से नहीं बल्कि समझदारी से सही रास्ता चुनना सीखते हैं। यही समझ आगे चलकर उन्हें मजबूत और जिम्मेदार इंसान बनाती है। परवरिश का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि बच्चों को केवल जीतना नहीं बल्कि हारना और फिर उठना भी सिखाया जाए। जीवन हमेशा आसान नहीं होता, इसलिए यदि बचपन से ही धैर्य, संघर्ष और आत्मविश्वास का भाव दिया जाए तो वे हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाते हैं। आज के आधुनिक समय में जहां तकनीक और व्यस्तता ने रिश्तों के बीच दूरी बढ़ा दी है, वहां बच्चों को समय देना सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। खिलौनों और सुविधाओं से अधिक उन्हें अपनापन, संवाद और साथ चाहिए। कई बार माता पिता की एक मुस्कान, एक प्रेरणादायक बात या कुछ पल का साथ बच्चों के जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। अच्छी परवरिश बच्चों को केवल शिक्षित नहीं करती बल्कि संस्कारित भी बनाती है। ये उन्हें केवल सपने देखना नहीं बल्कि दूसरों के सपनों का सम्मान करना भी सिखाती है। ये उनके भीतर आत्मबल, करुणा और सच्चाई की ज्योति प्रज्वलित करती है। परवरिश में सबसे सुंदर बात ये होती है कि इसका प्रभाव केवल एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता। जिन बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं वे आगे चलकर समाज को भी बेहतर बनाते हैं। परवरिश में शब्दों से अधिक व्यवहार का प्रभाव होता है। यदि माता पिता अपने जीवन में ईमानदारी अपनाते हैं तो बच्चा भी सत्य का महत्व समझता है। यदि घर में बड़ों का आदर होता है तो वही सम्मान बच्चों के स्वभाव में उतर जाता है। इस प्रकार अच्छी परवरिश केवल परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को समृद्ध बनाती है।

0: परवरिश एक जिम्मेदारी से कहीं अधिक एक साधना है। इसमें धैर्य चाहिए, प्रेम चाहिए और सबसे अधिक चाहिए समझ, क्योंकि बच्चे केवल हमारे शब्द नहीं सुनते, वे हमारा व्यवहार भी पढ़ते हैं। और सच तो यह है कि किसी बच्चे को दी गई सबसे बड़ी विरासत धन नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और सुंदर परवरिश होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार हम रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
2: छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री काली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले देश के 47 ठिन जगह में रोजगार मेला के तहत 51,000 ले ज्यादा अभ्यर्थी मल्ला नियुक्ति पत्र प्रदान करहीं। राज्य सरकार है खनन गतिविधि में पारदर्शिता और शिकायतमन ऊपर तुरते कार्रवाई सुनिश्चित करे बर खनन सूचना केंद्र के स्थापना करे है। और दुर्ग जिला में एक ठिन मकान ले दंपत्ति और उखर दू झिन लयिका के शव संदिग्ध परिस्थिति में मिले है। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 23 मई के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले देश के 47 जगह मन में रोजगार मेला के तहत 51,000 ले ज्यादा अभ्यर्थी मन ला नियुक्ति पत्र प्रदान करही। इही कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डहार ले रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होही। रोजगार मेला में 257 युवा मल्ला नियुक्ति पत्र दे जाही। इमा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलावा डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार भाटापारा जिला के ग्राम करही बाजार पहुंचीं। इस दौरान मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत निर्माणाधीन सोखता में श्रमदान करीं। संग्रह मुख्यमंत्री पीएम आवास योजना के हितग्राही परिवार ले भेंट करीं। उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंच के मुख्यमंत्री धात्री महतारी मन किट घलो प्रदान करीं। ए मौका में मुख्यमंत्री स्कूल मन के उन्नयन, सीसी रोड और मांगलिक भवन बनाए समेत आने आने घोषणा करीं। एकर पहली मुख्यमंत्री काली सुशासन तिहार के दौरान चिरमिरी में अधिकारी मन के बैठका में पीए के पानी के समस्या और स्कूल परीक्षा परिणाम लेके नाराजगी जताईं। ओमन कोरिया जिला में खातु वितरण में गड़बड़ी आगू आए में सहायक आयुक्त और सहायक पंजीयक सहकारी संस्था आयुष प्रताप सिंह ला तत्काल प्रभाव ले निलंबित करे के निर्देश दिन। इही बीच कोरिया जिला के जिल्दा समिति खड़गवा में खातु वितरण ले जुड़े गबन प्रकरण में दोषी मन के विरुद्ध कार्रवाई में लापरवाही पाए जाए में प्रभारी शाखा प्रबंधक और नोडल अधिकारी ला घलो निलंबित कर दे गए है। राज्य सरकार है खनन गतिविधि में पारदर्शिता और शिकायतमन ऊपर तुरते कार्रवाई सुनिश्चित करे बर खनन सूचना केंद्र के स्थापना करे है। ये पहल के तहत टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी करे गए है। इन नंबर में आम नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिज संबंधी अनियमितता के शिकायत सीधा दर्ज करा सकें। सूचना केंद्र के संचालन हरेक दिन बिहानिया 10 बजे ले संझा 5:30 बजे तक करे जाही। नीति आयोग डहा ले जारी देश के आकांक्षी ब्लॉक मन के चैंपियंस ऑफ द क्वार्टर रिपोर्ट में बीजापुर जिला के उसूर ब्लॉक सेंट्रल जोन में देश भर में दूसर स्थान हासिल करे है। आयोग स्वास्थ्य और सामाजिक विकास ले जुड़े कई ठिन संकेतक के आधार में मूल्यांकन करे रही जेमा उसूर ब्लॉक के प्रदर्शन उत्कृष्ट पाएगीज। ये उपलब्धि में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री केदार कश्यप जिला के नागरिक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जिला प्रशासन ला बधाई दिन है। सहकारिता विभाग के आयुक्त महादेव कावरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले विभागीय योजना और काम के समीक्षा बैठका लीन। सहकारिता आयुक्त श्री कावरे अधिकारी मल्ले कहन कि किसान मल्ला बेरा में खातु उपलब्ध कराना शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता है। एखर बर ओमन जम्मो पैक्स समिति में पर्याप्त मात्रा में खातु के आगूले भंडारण सुनिश्चित करे बर कहन। ओमन खातु के उपलब्धता और वितरण के नियमित रूप ले समीक्षा करे के निर्देश दिन। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल डहा ले प्रदेश के

0: डाकघर में अवैया 25 और 26 मई के अल्प बचत खाता खोले बर विशेष अभियान चलाए जाही। ए दौरान कोनो भी नागरिक अपन नजदीकी डाकघर जाके या राज्य सरकार डहले नियुक्त अधिकृत एजेंट के माध्यम ले अल्प बचत योजना जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या औ कोनो योजना में निवेश कर सकी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।

0: बनी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कुती। सुनैया मल्ला बता दन कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में म ए बखत बस्तर संभाग में नक्सलवाद के सिराय के बाद स्थानीय लोगन तक विकास के रोशनी पहुंचाए बर सरकार डहाले करेगे अभिनव पहल ऊपर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ले गए विशेष भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एकर प्रसारण काली 23 मई के आकाशवाणी केन्द्र रायपुर डहाले FM और प्राइमरी चैनल में बिहानिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी अंबिकापुर डहाले काली बिहानिया वाकथन के आयोजन करे जाही। ए वाकथन में आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारी श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होही। वाकथन के शुरुआत बिहनिया 6 बजे आकाशवाणी भवन अंबिकापुर ले होही। ए वाकथन चंद्रशेखर आजाद चौक, घड़ी चौक, पुराना बस स्टैंड और गांधी चौक होवत लहुट के आकाशवाणी परिसर में सिराही। ए आयोजन ऑल इंडिया रेडियो के 90 बच्छर के गौरवशाली यात्रा के सुरता में करे जाते। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग डहाले पारंपरिक शिल्पकला के संरक्षण प्रचार प्रसार और रुचि जगाए के उद्देश्य ले आने आने कला प्रशिक्षण शिविर आकार 2026 के आयोजन करे जाते। ये आयोजन 25 मई ले 9 जून तक रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में करे जाही। शिविर में दो पाली में बिहानिया 7 बजे ले 10 बजे तक और संझा 5 बजे ले 8 बजे तक आने आने कला के प्रशिक्षण दे जाही। ज्यादा जानकारी पर प्रशिक्षु मन संस्कृति विभाग के वेबसाइट www.cgculture.in ला देख सकत हैं। खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिला में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम अब बदल के राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय करे जाही। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग विश्वविद्यालय के नाम बदले के प्रस्ताव ला औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दे है। दुर्ग के मोहननगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आर्यनगर में एक ठीन मकान ले दंपत्ति और ओखर दू जिन लैका के शव संदिग्ध परिस्थिति में मिले है। शुरुआती जांच में पुलिस है आशंका जताए है कि दंपत्ति है पहली दोनों लैका मन के हत्या करिस एकर बाद खुदे फांसी लगा के आत्महत्या कर लेन। पुलिस है मौका ले सुसाइड नोट बरामद करे है जेमा आर्थिक तंगी और पारिवारिक झगड़ा के जिक्र हर है। पुलिस मामला की जाँच करत है। और अब पेश है मौसम के हाल। राजधानी रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिला मन में तापमान सामान्य ले ज्यादा दर्ज करे जाते। मौसम विभाग है रायपुर समेत बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम के अलावा प्रदेश के 14 जिला के कुछ एक जगह में लू चले के चेतावनी दे है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान ले आवत गर्म हवा के सेती अवैया 3 दिन में प्रदेश के अधिकतम तापमान में लगभग 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रायपुर के माना में दर्ज करेगिस। और अब थोरकुन समाचार सारमा। लोक निर्माण विभाग अपन जम्मू अनुविभागीय अधिकारी मंडल के प्रमुख अभियंता तक सबोला मुख्यालय में रहे के निर्देश दे है। निर्माणाधीन कार्य मन के गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करे काम के मॉनिटरिंग और स्वीकृत कार्यालय तुरंत शुरू करे बर विभाग ये निर्देश जारी करे है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कोतिले हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य अवसर परीक्षा खातिर अभ्यर्थी मल्ला 25 मई ले 30 जून तक आवेदन मंगाए गए हैं और महासमुंद जिला ले लगे बानवापारा परियोजना मंडल के रवान रेंज में जंगली जानवर गौर के हमला में एक ग्रामीण के मौत हो गए है जबकि दूजन दूसर गंभीर रूप ले घायल हो गए है। बताया जाते है कि ये ग्रामीण जंगल के आने आने जगह तेंदुपत्ता संग्रहण करत रहें। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फेर। प्रधानमंत्री काली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले देश के 47 तीन जगह में रोजगार मेला के तहत 51,000 ले ज्यादा अभ्यर्थी मल्ला नियुक्ति पत्र प्रदान करी। राज्य सरकार है खनन गतिविधि में पारदर्शिता और शिकायत मन ऊपर तुरते कार्रवाई सुनिश्चित करे बर खनन सूचना केंद्र की के स्थापना करे है और दुर्ग जिला में एक ठीन मकान ले दंपत्ति और ओका दू झीन लैका के शव संदिग्ध परिस्थिति में मिले है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गोधूली। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं धर्म साय राजवाड़े और साथी के स्वर में ये सरगुजिहा भुईहारी गीत।

कार्यक्रम गोधूली की अंतिम प्रस्तुति में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी ददरिया लोकगीत विजय सिरदार और साथी के स्वर में।

अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। रिजर्व प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का ये गीत। संगीत निर्देशन है प्रीतम का, गायक कलाकार हैं आतिफ असलम और चिन्मयी श्रीपदा।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधूली मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये

कार्यक्रम माधुरी का अगला गीत है लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म है दिल तो पागल है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत निर्देशन है उत्तम सिंह का।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम माधुरी यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने गए हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
9: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
8: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
6: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
10: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के करही बाजार गांव में लगाई चौपाल, कई घोषणाएं की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में आपातकालीन सेवा डायल 112 को ड्रोन सुविधा से भी जोड़ा जाएगा। और दुर्ग के आर्य नगर में एक मकान से पति पत्नी और उनके 2 बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 23 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियल में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रोजगार मेले में 257 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलावा डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं।

0: में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में इस ऐप का शुभारंभ किया। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम करही बाजार पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नल जल योजना के तहत निर्माणाधीन सोखता में श्रमदान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना के हितग्राही परिवार से मुलाकात की। वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने धात्री माताओं को किट भी प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूलों के उन्नयन, सीसी रोड और मांगलिक भवन बनाने सहित विभिन्न घोषणाएं की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ सुव्यवस्थित रूप से जन जन तक पहुंचाना है।
1: आज सुशासन तिहार के अंतर्गत करही बाजार में समाधान शिविर में आए हैं। 45 डिग्री गर्मी के बाद भी पूरे क्षेत्र से भारी संख्या में समाधान शिविर में आए हैं। सबने अपना अपना अनुभव बताया है कि कोई ट्राईसाइकल की मांग की तो उनको तत्काल मिला है, किसी का राशन कार्ड तत्काल मिला है। तो इस सुशासन तिहार का मतलब ही है कि जो हम लोग जन सेवा करना चाहते हैं वो लोगों तक ठीक से पहुंचे और पहुंच रहा है कि नहीं, ये फील्ड में गांव में जाने से ही, लोगों के बीच में जाने से ही पता चलता है और मैं बड़ा मुख्यमंत्री के नाते संतुष्ट हूँ।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल सुशासन तिहार के दौरान चिरमिरी में अधिकारियों की बैठक में पेयजल समस्या और स्कूल परीक्षा परिणामों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कोरिया जिले में खाद वितरण में गड़बड़ी सामने आने पर सहायक आयुक्त और सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं आयुष प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। इस बीच कोरिया जिले की जिला समिति खड़गवां में खाद वितरण से जुड़े गबन प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी शाखा प्रबंधक और नोडल अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी देश के आकांक्षी ब्लॉकों में चैंपियंस ऑफ द क्वार्टर रिपोर्ट में बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक ने सेंट्रल जोन में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। आयोग ने स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े कई संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया था, जिसमें उसूर ब्लॉक का प्रदर्शन उत्कृष्ट पाया गया। प्रदेश के कई जिलों में बीते दिनों डायल 112 फेस 2 नेक्स्ट जनरेशन सेवा का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में इस सेवा का शुभारंभ करते हुए 54 नए इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले समय में डायल 112 को ड्रोन सुविधा से भी जोड़ा जाएगा।
2: 112 जो कोई कॉल करेगा उसको अपने लोकेशन भेजने की जरूरत नहीं होगी, उसका लोकेशन ऑटोमेटिक आएगा, उसके नियरेस्ट 112 की जो हमारी गाड़ी खड़ी होगी वो जाकर असिस्टेंस देगा। इसमें एक जवान भी, एक पुलिस का इसमें तैनात होगा। 112 की इस व्यवस्था से जनता तक, पहले 16 जिलों में था, 33 जिलों में अब आने वाला है। आने वाले समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्रोन सिस्टम से भी जुड़े। आज गाड़ी सड़कों पर चलकर पहुंचती है, उससे पहले हमारा ड्रोन पहुंच जाए 112 कॉल करने पर। इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं।
0: राज्य सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है। इस पहल के तहत टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी किया गया है। इस नंबर पर आम नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिज संबंधी अनियमितताओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। सूचना केंद्र का संचालन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार बस्तर संभाग में नक्सलवाद की समाप्ति के बाद स्थानीय लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा की गई अभिनव पहल पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 23 मई को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में आगामी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक शिल्प कलाओं के संरक्षण, प्रचार प्रसार और रुचि जागृत करने के उद्देश्य से विविध कला प्रशिक्षण शिविर आकार 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 25 मई से 9 जून तक रायपुर स्थित महंत

0: घासीदास संग्रहालय परिसर में किया जाएगा। शिविर में दो पाली में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 से 8 बजे तक विविध कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी अंबिकापुर द्वारा कल सुबह वाकथन का आयोजन किया जाएगा। इस वाकथन में आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होंगे। वाकथन की शुरुआत सुबह 6 बजे आकाशवाणी भवन अंबिकापुर से होगी। यह वाकथन चंद्रशेखर आजाद चौक, घड़ी चौक, पुराना बस स्टैंड और गांधी चौक होते हुए वापस आकाशवाणी परिसर में सम्पन्न होगा। यह आयोजन ऑल इंडिया रेडियो की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की स्मृति में किया जा रहा है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का नाम अब बदलकर राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय किया जाएगा। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आर्यनगर में एक मकान से पति पत्नी और उनके 2 बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। शुरुआती जांच में पुलिस ने आशंका जताई है कि दंपत्ति ने पहले 2 बच्चों की हत्या की, उसके बाद खुद फांसी लगा कर बरामद किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने रायपुर सहित बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम के अलावा प्रदेश के 14 जिलों के कुछ स्थानों में ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण अगले 3 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रायपुर के माना में दर्ज किया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। वन मंत्री केदार कश्यप ने आज नया रायपुर स्थित नंदन वन जू और जंगल सफारी में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों और नई बोटिंग सेवाओं का शुभारंभ किया। राजधानी रायपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर और हिस्ट्री शीटर रवि साहू की 7,66,00,000 रुपये कीमत की 16 संपत्ति को सीज कर दिया है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में तेंदुपत्ता से भरे एक ट्रक में अचानक आग लगने से जलकर खाक हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य अवसर परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 25 मई से 30 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और महासमुंद जिले से लगे बारनवापारा परियोजना मंडल के रवान रेंज में वन्य प्राणी गौर के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये ग्रामीण जंगल के अलग अलग क्षेत्रों से तेंदुपत्ता संग्रहण कर रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के करही बाजार गांव में लगाई चौपाल, कई घोषणाएं की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में आपातकालीन सेवा डायल 112 को ड्रोन सुविधा से भी जोड़ा जाएगा और दुर्ग के आर्यनगर में एक मकान से पति पत्नी और उनके 2 बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाश प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है।

शाम के 7 बजे हैं। आइए जानते हैं हमारे केंद्र से आज और कल की प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आज शाम 7:05 पर हम पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा। ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय होगा शाम 7:20 पर। सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश हम लेकर आएंगे आज रात 8:00। श्रोताओं का लोकप्रिय फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय होगा रात 9:30 पर। कार्यक्रम राग प्रधान आप सुनेंगे रात 10:00। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन का समय होगा रात 10:30 पर। ये थे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब आपको बताएंगे हम कल दिनांक 23 मई दिन शनिवार के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। दिल्ली केंद्र से कल रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का अनुप्रसारण समय होगा और रात 9:30 पर अखिल भारतीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कल सुबह 8:30 पर कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह और सुबह 9:00 बातों बातों में कार्यक्रम का अनुप्रसारण किया जाएगा। ये दोनों कार्यक्रम हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। हमारे केंद्र से कल सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना और कार्यक्रम भजन संध्या का समय होगा शाम 5:05 पर। कार्यक्रम विचार बिंदु आप सुनेंगे सुबह 6:30 पर और पुनः प्रसारण समय होगा शाम 6:05 पर। कल सुबह 6:35 पर कार्यक्रम रामचरितमानस का प्रसारण समय होगा। कार्यक्रम खेती की बात आप सुनेंगे सुबह 6:45 पर और पुनः प्रसारण समय होगा दिन के 1:05 पर। कल सुबह 7:00 लोक संगीत के कार्यक्रम गूंजी जंगल का समय होगा और शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। कार्यक्रम सुगम संगीत हम पेश करेंगे सुबह 7:15 पर। शाम 7:20 पर लगेगी चौपाल और साथ ही होगी किसानवाड़ी शाम 7:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम लेकर आएंगे शाम 7:05 पर। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का समय होगा सुबह 7:30 पर। बातों और गीतों का लोकप्रिय कार्यक्रम गुंजन आप सुनेंगे सुबह 9:15 पर। सुबह 10:00 कार्यक्रम नए तराने का प्रसारण समय होगा। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे सुबह 11:05 पर। दिन के 12:00 मिश्रित गीत संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम सबरंग का समय होगा। जफर हुसैन खां और साथी की आवाजों में पेश करेंगे हम कार्यक्रम कव्वालियां दिन के 12:30 पर। बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन हम लेकर आएंगे दिन के 1:10 पर। कार्यक्रम ईमेल की गूंज का समय होगा दिन के 1:40 पर। कार्यक्रम गीत गंधा हम पेश करेंगे दिन के 2:30 पर। सोशल मीडिया पर आधारित इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:00। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण समय होगा शाम 5:00। कार्यक्रम युवाणी का समय होगा शाम 5:30 पर। कार्यक्रम माधुरी सुनेंगे आप शाम 6:30 पर और चित्रपट संगीत का समय होगा रात 9:15 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज और कल के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में पेश है भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में रविंद्र का लिखा ये कलाम।

चौपाल सुनवैया जाम किसान भैया बहनी मन के राम राम। किसान भैया बहनी हो देखिए दे भाई, कहब तो अभी कर जो समय है तेहर देखिए दे ऐसा है कि हमन ला देखिए दे भाई घरेच में बगरा ले बगरा समय ला बिताना है। काबर की ये दे गर्मी हर ऐसे पड़ता है नहीं कि ये दे भाई विशेषज्ञ मन और मौसम कर जानकार मन और डॉक्टर मन घलो कहता है कि राउ रे दे 10 बजे ले आ दे कहब तो सांझ के 4 बजे तक घरेच में रही। काबर की गर्मी हर इतना बाढ़ी से नहीं कि भाई तबीयत मने दे तुरंत ख़राब हो सकत है और लू कर चपेट में हमरे आ सकत ही। तो एकस में देखिए अपन बगरा ले बगरा समय ला हमन ला दे भाई बिताना है कहाँ ये दे घरे काबर की देखी भाई ये दे चटी के भाई बीमार नहीं होना है और आए वाला समय में खेती पाती कर काम ला करना भी है तेकर बर हमर जांगर हर बढ़िया रहना चाहिए। तो ओकर बर देखिए हमर स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। संग संग जरूरी का है कि घरे भी रहती नहीं तो हमर खान पान में ऐसे चीज शामिल होना चाहिए जेहर अभी कर मौसम कर हिसाब से हमर शरीर ला देखिए दे भाई पूर्ति दे सके। जे में कथें कि भाई बगरा ले बगरा राउ रे दे भाई पानी पी, ये दे खाए ले बगरा जरूरी अभी कर समय में दे पानी हरे। और अगर बगरा जरूरी हो जाता है हमन ला काम बूता से दे ही निकलना है घर ले बाहर नहीं तो ओकर बर हमरे का कर सकत ही देखी भाई कुछ सावधानी है तेला ये दे करके ही निकलना है। काबर ही निकलना है काबर की भाई ये दे गर्मी हर बाढ़ी से ओकर बर देखिए दे मुँह कान ला बढ़िया ढाँप ले साफ ही होना चाहिए हमर जग आऊ चाहे आने कहीं दे भाई व्यवस्था रहे हमर जग ते में देखी मुँह कान ला बढ़िया ढाँप ले और जरूरी हो तबे हमन ला निकलना है। और घरे ले अगर हमरे हिकलत ही तो ओकर ले पहले बगरा ले बगरा कही तो 2 से 3 गिलास दे पानी जरूर पी के निकलना है। एकस दे छोटे छोटे बात मन कर तीहा करना है और कोशिश करना है कि संझा बेराही काम लाए उसराई चाहे दे 10 बजे ले पहले बिहाने काम ला उसराए दे। काबर कि भाई ये गर्मी हर तो ये दे परेशान करी से हलकान करी से और भाई ये हर जरूरी है अगर सतर्क हमरे नहीं रहब नहीं तो चट्टी के दे परेशानी तो हो जाइए। तो ओकर बार देखी भाई जरूरी है कि छोटे छोटे बात कर तीहा करी। विशेष रूप से देखी ये दे भाई अगर घरे लड़का हैं और सियान है तो देखी लड़का है तो देखी चट्टी कन भी गर्मी हर लागेल नहीं तो लड़का मन दे कोहरे लगते हैं दे रोए लगते हैं तेकर ओकर बर भाई ध्यान करना जरूरी है। देखी भाई ये दे बिजली मन भी जाते हैं तो हमर घरे पंखा मन रहते ते मन भी अगर बंद होता है तो लड़का मन रोए लगते हैं। तो ये समय भी हमन लतीहा करना है कि ओमन कर भाई व्यवस्था बनाए के रखी हमर जग बेना हो सकेल ते में धुक सकत ही पंखा हो सकेल ते में धुक सकत ही तो भाई हवा ओमन ला भाई पूर्ति करना है। काबर के लड़का मन नहीं समझ पाए और हमन अपन हिसाब से व्यवस्था जरूर बनाई। और पानी हर इतना भाई महत्वपूर्ण है कि हमन ला पीतेच रहना है और संग संग देखिए दे अपन घर कर आसपास कहों जग व्यवस्था है नहीं तो भैया बहनी हो जरूर ये दे चिड़ई चुनगुन मन बर भी ये दे दाना पानी कर व्यवस्था बनाना है। दाना तो देना है ओकर ले बगरा जरूरी आज कर समय में है कि देखी कहीं माटी कर बर्तन में चिड़ई चुनगुन मन बर चटी के दे पानी ये दे साझा बिहनिया मढ़ाए देना है। काबर की भाई जेकस हमन प्रयास में ये दे भाई छटपटात ही गर्मी में वही कस देखी चिड़ई चुनगुन मन भी ये गर्मी में भाई छटपटाए लगते हैं ओमन के भी जरूरत होल तो ये पूरा करना भी हमर दे है नैतिक जिम्मेदारी है हमर अपन जिम्मेदारी है और मानवता है। अब ऐसे काम बुता ला हमरे करब तबे तो भाई इंसान कहा तो ये काम ला हमन ला जरूर करना है अपन सुविस्ता कर अनुसार। देखिए भाई एक से दे छोटे छोटे बात मन कर तीहा करे ले बीमारी मन से भी बाँच सकत ही और देखिए दे कहब तो परेशानी ले भी बाँच सकत ही। बाकी देखी परेशानी से बचना है तो अभी घामा नगद है तो ये समय एक बात है कि अगर हमर जगह दे सोलर कर व्यवस्था है सौर ऊर्जा कर व्यवस्था है तो हर बहुत सुघर व्यवस्था है। काबर की सरकार भी हमन ला मदद देहत है प्रधानमंत्री कुसुम योजना कर माध्यम से जे में कथे नहीं सौर ऊर्जा से किसान समृद्ध होवत है। तो भाई हमन ला ये योजना से जुड़ के और समृद्ध भी बनना है काबर की एकरे माध्यम से किसान मन ला सोलर

रवि पवार की लिखी इस गज़ल के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

और पंप भी लगाए कर सुविधा मिलत है, और हमर जो खेती पाती में सिंचाई कर जो सुविधा है तेहर भी बाढ़ी और भाई बचत घलो भी हो। दो तरह से हमरे काम कर सकती, दो तीन तरह से कर सकती अगर कही तो। सबले पहले तो देखी किसान अपन जो हमर बंजर है चाहे कृषि कर हिसाब कर हमर जो भूमि है ते में भाई सोलर पावर प्लांट हमारे लगवा सकत ही। संग संग देखी डीजल पंप कर जगह भी हमरे देखिए दे सोलर कृषि पंप कथे तेला भी स्थापित कर सकत ही। और संग संग देखिए हमर जो किसान भैया बहनियाँ हैं तेमन कर जो अभी कर समय में जो ग्रिड से जुड़ी हैं ते कृषि पंप मनला भी ये दे सौर ऊर्जा से जोड़ सकत हैं। आउ कहब तो एकर बर भाई सुविधा सरकार कर माध्यम से मिलत है जेकर नाम हमरे खूब सुनत ही आकरे हमारे दे चर्चा होता है जेकर नाम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कहब तो भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर माध्यम से दे सोलर पंप लगाए बर बढ़िया दे 60% तक सब्सिडी हमन ला देखिए दे भेटाल वित्तीय सहायता जिला हमरे कह सकत ही तेहर भेटाल। संग संग देखी ये परियोजना कर अगर हमरे शुरुआत करना चाहती नहीं तो 30% तक कर लोन सरकार कर माध्यम से हमन ला प्रधानमंत्री कुसुम योजना कर माध्यम से भेटाल। अगर एकर लाभ कर बात करी कि का लाभ हो सकता है तो कही तो ये दे भाई पहले तो मुफ्त भेटा ही हमन ला, फ्री में भेटा ही, पैसा नहीं लागी और निरंतर सिंचाई कर सुविधा भी भेटा ही जे हमर जैसे किसान मन पर बहुत जरूरी रहे। काबर कि दिन कर समय बिना बिजली कटौती चाहे डीजल कर खर्चा कर बिना सुविधा दे भेटा जाही। संग संग देखी भाई अतिरिक्त आय भी अगर हमरे बनाना चाहती तो अतिरिक्त आय भी बना सकते ही काबर कि सौर ऊर्जा ला ग्रिड बनाए के और ग्रिड ला बेच के भी हमरे देखी स्थायी आय चटिक बना सकत ही। बाकी भाई चटिक सोचना पड़ी। संग संग सबले बड़े बात देखी पर्यावरण संरक्षण कर तरफ हमारे एक कदम बढ़ जाही ये योजना कर लाभ लेहे कर बाद। काबर कि डीजल से चले वाला जे पंप मन रथे नहीं ते में देखिए दे कार्बन निकले लो कही तो ये धुआं कर माध्यम से पर्यावरण हर प्रदूषित हो एला भी हमरे बचा सकत ही काकर माध्यम से ये सुघर कन योजना कर माध्यम से जेकर नाम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। और भाई बहुत कन लाभ है तो लाभ कर हमन ला भाई कब मिली लाभ जब हमरे एकर लाभ लेना चाहत ही तो हमर योजना सरकार हमर पर बनाएल और अगर हमर पर बनाता है तो हमन ला लाभ लेना चाहिए। अब अगर हमरे लाभ नहीं लेहत ही तो देखिए योजना कर जो कही भाई जे सोच के हमर सरकार मन योजना बनाता है नहीं तेहर गड़बड़ा जाए तो जरूर हमन ला योजना कर जानकारी जुटाना है और जुटाए के बाद योजना कर लाभ लेना है। एकर ले पहले मैं सुघर राउर मन ला कहत रहन कि देखिए भाई अभी गर्मी पड़ता है और पानी हर नगद जरूरी है। देखिए पानी यदि कहब तो प्यास और नहीं मारता है एक गिलास देकर दुई गिलास देकर तीन गिलास देकर भाई दे कहब तो गिलास एक गिलास लेकिन कयास और नहीं मारता है। मन हर कहता है आओ एको गिलास आओ एको गिलास देकर भाई एकस में तो नगद पानी हर जरूरी होगी सहाय तो भाई पानी हर तो जिंदगी का आधार तो लगी यदि बेराहर भी होगी सहाय गीत सुने कर और गीत गाइना है राकेश तिवारी और सुघर कन एक गीत कर बाद हो ही हमार गोठ।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ तो देखिए भैया जी सुनें संदेश और संदेश ले पहले सुनें देखी सुगर कन संदेश ले जुड़ल गीत। पानी है जिंदगी का आधार राकेश तिवारी ये लगाए रहिन और देखी अजय गोट ही करत रहन कि हमर जिंदगी का आधार कहो न कहो पानी है और अजय देखी हमरे दे हलाकान हो ही आओ कहब।

जगह जे ठंडा नहीं भेटाए एदे राउर नहाय बर जाई नहीं तो अजे टोटी ला चालू करी तेकर तुरंत पानी हर गरम हो जाए तो पानी देखी कई जगह अजे तो ऐसे होगी सहाय कि भाई एदे परेशान हैं खोजत हैं और धीरे धीरे ये समय हर आए वाला है तो हमन ला जरूर ध्यान करना है कि पानी ला बचाए के रखना है काबर की पानी है जिंदगी का आधार और अगोरत भी ही कि कब बरखा पानी हर आए काबर की जैसे बरखा पानी आई तो चटी के गर्मी ले हमन ला छुटकारा भेटा ही। बाकी भाई देखिए दे आज कर अगर दिन विशेष बात करी नहीं तो आज है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो देखिए एकर हिसाब से बात ऐसे है कि हमरे जानत ही 22 तारीख के महीना में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमरे मना थी। बाकी देखिए एकर उद्देश्य ऐसे है कि जो मनसे मन है नहीं ते मतलब भाई जैव विविधता कर महत्व और ओकर संरक्षण पर जागरूकता फैलाना है। अब जैव विविधता कहले तो पृथ्वी में पाए जाए वाला जितना भी जीव जंतु हैं रूख राई हैं चाहे छोटे जीव हैं चाहे बड़े जीव हैं उनकर पारिस्थितिक तंत्र कर विविधता है। कही तो ये जो हमर व्यवस्था है ये जो हमर पर्यावरण है ते में जम जीव जंतु रूख राई जब जम चीज देखी आने आने रिकिम रिकिम करा है। अब यही जैव विविधता हमर पृथ्वी ला कही तो संतुलित बनाए के रखेल। राउर सोची कि एगो कोई जीव कर कमी हो जाता है तो गड़बड़ाए जाही। राउर सोच ली कि अगर ये पृथ्वी में मुष्टा खत्म हो जाता है नहीं रही तो देखी गड़बड़ाए जाही। ओकर होना भी जरूरी है जितना जरूरी आने जीव मरकर होना है तो जैव विविधता हर बहुत जरूरी है। अब सबले बड़े बात अभी कर समय में ऐसे है कि प्राकृतिक संसाधन मनकर संरक्षण से ही सतत विकास का रास्ता हर सुनिश्चित होएल। तो काबर होएल काबर की देखिए ये जो मानव जीवन है पूरा तरह से कहब तो प्राकृतिक संसाधन मनकर ऊपर निर्भर है। जल कहली जंगल कहली जमीन कहली हवा कहली चाहे वनस्पति कहली चाहे खनिज कहली ये जम जात हर प्रकृति कर अमूल्य देन है। और अगर कहले कि ये संसाधन मनकर संतुलित और हमर विवेक कर हिसाब से एकर उपयोग अगर करल जाए तो आए वाला पीढ़ी मन पर भी एक सुरक्षित और समृद्ध देखी कही तो भविष्य हमरे ओमन ला दे सकत ही। लेकिन अगर हमरे एला संतुलित मात्रा में और सही तरीका से उपयोग नहीं करब तो आए वाला जो हमर दे लड़का मन आए हमर आए वाला जो पीढ़ी है ते मन तो कहीं कि हमर पुरखा मन कहीं चीनी छोड़ी हमन बर तो एक में तो गड़बड़ाए जाही। तो भाई ये बात ला जरूर हमन ला सोचना है कि भाई ओमन ला हमन बढ़िया से दे भाई सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराई और भाई एकर बर छोटे छोटे बात ला ध्यान देना है और प्राकृतिक संसाधन जितना है हमर जग तेमन कर संरक्षण अपन स्तर से हमन ला करना है चाहे वो रूख राई है चाहे वो हवा है चाहे वो पानी है चाहे आने देखी जंगल मना है सब चीज ला हमन ला भाई यदि सुरक्षित और संरक्षित करके रखे कर प्रयास अपन स्तर से करना है। काबर की आज पूरा दुनिया जलवायु परिवर्तन प्रदूषण वन मनकर कटाई जल संरक्षण और जैव विविधता कर ये सबसे परेशानी से जूझता है तो ये ला जरूर हमन ला पूरा करना है। एक गोट बात ला देखी भैया बहनी हो आगू करूँ बाकी सुरता आएगी देखी एगो गोट बात मैं करे हूँ। सुघरकन किसान है ग्राम दीवानपुर पत्थल गाँव जिला जसपुर करे किसान नाम है देवेंद्र यादव और सुघर देखी तरबूज टमाटर और बैगन कर खेती से लाभ कमाता है तो लगी इनकर से गोट बात सुना थी।

के सुनवाए। अब ये जगह है देखिए राउर अगर अंबिकापुर ले आया थी तो सोच राउर ला सीतापुर, सीतापुर ले देखिए दे पत्थल गांव। बाकी पत्थल गांव जाना नहीं है राउर मंडला पत्थल गांव ले 5-7 किलोमीटर ये दे पहले एगो गांव पढ़ी और वो गांव का नाम है दीवानपुर। उहे मोर भेंट होगी से गो सुघर किसान से नगद दे कमात खात अहा कहब तो बढ़िया दे तरह तरह कर मोटर गाड़ी

0: कहब तो ए खेती पाती ले इतना बढ़िया कमाता है नहीं कि मोर मन हर नहीं मानिस मैं कहन की गोट बात करत चलूं। तो दीवानपुर करे किसान ले जाना थी इनकर नाम का है?
1: मोर नाम है देवेंद्र यादव, बाकी गांव में जनरली मोला पिंटू नाम से जानते हैं।
0: तो राउर ला पिंटू कही चाहे देवेंद्र भैया कही नहीं आ। तो राउर मोके ये बताई कि खेती पाती में राउर अभी जो राउर खेत मन में लागिन हुई ते मन ला बताई कि का का लगी से?
1: अभी तो मैं टमाटर लगाए रहे हैं 1 एकड़ में, और मिर्चा लगी से 1 एकड़ में, तरबूज लगी से और बैगन लगी से।
0: तरबूज कहन खीरा कहन और बैगन कहन?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो देखी तरबूज कर खेती तो अभी भाई बहुत जरूरी है, काबर की हर कहीं तो पानी ला पुराल भी नहीं। कितना जगह में तरबूज लगाए?
1: लगभग 1 एकड़ में हो जाए सर।
0: तो 1 एकड़ में अगर तरबूज राउर लगाए ही तो एकर बीज और बिहन मनला बताई कि कहाँ ले जुगाड़ करें?
1: मैं अभी तो टोटल चीज ला मतलब हमारे यहाँ लोकल जो मार्केट में मिल जाते हैं, और मैं जर्मिनेशन नहीं करे ही, मैं तो टोटल मैंने ट्रे वाला जो रायपुर ले वो नर्सरी ले मंगाए रही। हाँ, 5 रुपया पीस के हिसाब से मोला पौधा घर उपलब्ध कराए दे रही यहाँ के जो दुकान वाला है कृषि केंद्र वाला मन। और मतलब लगभग मैं बीज नहीं लानो, मोला जो भी कंपनी के रथे जो भी जरूरत पड़ते ना ओकर मोला नर्सरी उपलब्ध करवाए देते हैं, मन पौधा दे देते हैं।
0: तो पौधा पौधा में कही
1: हाँ।
0: तरबूज कर ऊपर 1 एकड़ में राउर खेती करी
1: हाँ।
0: तो कितना खर्चा करें पौधा पौधा में?
1: पौधा पौधा में लगभग मैं 1000 पौधा यूज करे हूँ, काबर की तरबूज के खेती शुरू करे हूँ तो 1000 पौधा लगभग मैं लगाए हूँ।
0: तो 5 ले 6 हजार राउर दे पौधा ऊपर खर्चा करे?
1: हाँ हाँ।
0: और बाकी खर्चा मन ला अगर जोड़ी मोटा मोटी
1: हाँ,
0: तरबूज ऊपर अजे जो खर्चा करे ही राउर, चाहे वो सिंचाई ला कह ली, चाहे निंदाई गुड़ाई ले कह ली, चाहे तोराई लमन ला कह ली,
1: हाँ।
0: कितना करे हो लगभग?
1: लगभग वही 10 से 15 हजार करे ही
0: है ना।
1: काबर शुरू बार है तो अभी थोड़े से समझे में भी लागते, लेकिन बढ़िया उत्पादन होते, अभी तो शुरू नहीं करे हो
0: हाँ।
1: लेकिन मोला समझ में आ गई कहा तरबूज के खेती।
0: तो 1 साल भी नहीं कही है, कहां 1 साल का खेती? नहीं
1: 2 महीना के मान के चला, 2-3 महीना।
0: तो 1 एकड़ में 2-3 महीना कर खेती तरबूज कर अगर हमरे कर थी तो
1: हाँ।
0: अभी कर हिसाब से अनुमानित बताई राउर कितना लाभ कमाए सकत ही?
1: अभी तो अब रेट के ऊपर हो, तो बाजार में जो भाव रही रेट तो कभी गिरते कभी उठते, तो अभी 1 एकड़ में लगभग 30 से 40 हजार 50 हजार वो बढ़िया रेट रही तो लाखों पहुंच जाही
0: है ना।
1: हाँ।
0: तो बाकी रेट के ऊपर है लेकिन नुकसान में तो नहीं?
1: नुकसान तो नहीं है,
0: और पहिल धार करे ही?
1: हाँ, पहिल धार करे ही।
0: तो भाई बाकी चीज हर समझ में आ जाही, ओकर बाद देखी लाभ हर भी समझ में
1: आ जाही आ जाही।
0: और ओकर अलावा राउर
1: बैगन के है
0: हाँ।
1: और टमाटर के है और मिर्ची के है।
0: मिर्ची के है, टमाटर के है, बैगन के है। तो मोके चटिक बैगन कर बारे में बताई कि बैगन कब ले शुरू करे ही?
1: बैगन भी मैं साते में लगाए रहे ना, अभी बैगन टूटत है डेली के मोर नहीं तो भी 2 से 3 क्विंटल टूटत है, और मार्केट में अब अपन लोकल मार्केट में बेचती
0: हाँ।
1: बाकी तो व्यापारी मन बाहर भेजत हो ही, तो 20 से 25 रुपया थोक रेट मोके मिलत है।
0: कितना कहन टूटत है अभी?
1: 2 से 3 क्विंटल टूटत है।
0: और का भाव चलत है?
1: 15 रुपया 20 रुपया 25 रुपया डेली के अलग अलग रेट है।
0: हाँ। तो देखी भाई एक दिन में इतना टूटा था है, तो भाई वो में तो लाभ कमा थी?
1: हाँ, लाभ कमा थी, वो में बढ़िया है।
0: ड्रिप कर व्यवस्था करे ही?
1: हाँ, ड्रिप का वाला खेती करे ही सब, टोटल ड्रिप वाला।
0: तो ये ड्रिप ला अपने से लगवाए ही कि सरकार तरफ करे?
1: अपन तरफ से लगवाए ही और फार्म भी भरे ही अभी ओला करे में।
0: अगर लह जाता है तो भेटा जाही?
1: लह जाते है तो भेटा जाही, और का है अभी शुरू शुरू 1-1.5 साल होते मोला खेती में उतरे हो, महू मतलब पुराना खेतिहार चाहे किसान नहीं हो, तो अभी मोला थोड़ा समझे में भी टाइम लागी, और पढ़ाई लिखाई में ठीक लागी तो मैं बहुत कम उम्र में ही खेती शुरू कर दे।
0: बहुत सुघर देखी युवा किसान ही राउर और कहत ही की 1-2 साल होवत है राउर के खेती पाती में उतरे। मैं देखी जानना चाहूँ की पढ़े लिखे भी दिशत ही भाई, मजे तो पूछ नहीं पाए हूँ राउर से
1: हाँ।
0: बाकी पढ़े लिखे कर बाद युवा होए कर बाद इतना सुघर तरीका से खेती पाती करके राउर कमा थी, कहाँ ले सोचें कि ये नौकरी मनला छोड़ी, आने काम बुता मनला छोड़ी और खेती में उतर के नगद लाभ कमाई?
1: अबेला बताई तो मोर दादा शुरू ले हमर गांव के सबसे बड़े खेतिहार रही
0: हाँ।
1: लगभग 40 एकड़ कर जमीन रही
0: हाँ।
1: और मोर पिताजी मन दुई भाई रही, और मोर पिताजी अभी कोर्ट में न्यायालय में पदस्थ है, तो मैं बचपन से बहू बाहर मोर शिक्षा दीक्षा हुई, जहाँ जहाँ मोर पिताजी के पोस्टिंग रही वहाँ वहाँ मैं पढ़े
0: हाँ।
1: तो सरगुजा में, सूरजपुर में भी रहे, अंबिकापुर में भी रहे
0: हाँ।
1: ओकर बाद मोर पिताजी के जैसे जैसे ट्रांसफर होगी तो मोला बाहर भेजी, तो मैं

0: 12वीं ला बिलासपुर पढ़े, ओकर बाद डिफार्मा करें, डिफार्मा करे के बाद आईटीआई ले में कोपा भी करें। लेकिन खेती में जब पिताजी संग रहें और मोर माता जी मरे शुरू ले बहुत मेहनत, अकेले 20 एकड़ के खेती करते हो। हाँ, तो ओकर जब मेहनत ला देखें, ओकर आमदनी ला देखें, मोर पिताजी ला 21 साल हो गई बाहर नौकरी करत।
1: हाँ,
0: तो हम देखें और मैं देखें नौकरी ला और खेती ला, तो मोर माता संग में ओला देख के मोला प्रेरणा होइस कि मोर घर में इतना जमीन बाड़ी रह के भी मैं नौकरी भी करूँ तो गांव के मोला माहौल नहीं मिली और गांव के जो संस्कृति है उमे मोला ज्यादा आकर्षित करी और खेती बाड़ी में मोर रुचि होगी तो मैं फिर खेती में उतर गई।
1: देखी कितना सुगर राउर बता थी, राउर खेती पाती करे कर प्रेरणा कहीं न कहीं राउर माता जी है।
0: हाँ।
1: और इतना सुगर खेती पाती कर थी और एक बात आऊ कहन तेहर देखी मन ला मोह लेस कि राउर यहाँ कर संस्कृति, यहाँ कर परंपरा, यहाँ कर रहन सहन हर नहीं इधर राउर ला आकर्षित करीस। तो राउर अभी अगर हमारे युवा किसान राउर ला सुनता है, राउर आमदनी भी नगद है, मैं तो देख के समझा थो राउर घर दूरा लाए जग हो तो राउर चटिंग मोके बताई कि राउर आने जो युवा किसान है चाहे युवा भाई बहन मन सुनता है राउर मन ला तो का कहिया उमन के
0: मोर यही संदेश है, मोर जो अनुभव है 2 साल में तो बगरा ज्यादा माने लंबा समय के खेती नहीं करे हो, लेकिन खेती ले अच्छा अगर मन लगा लेन मेहनत तो कहीं भी करना पड़ी। लेकिन अपन ऊपर अगर स्वतंत्र रहना है और अपन के भविष्य ला अगर मोर जो सोच है कि जरूरी नहीं है कि नौकरी आओ माने आओ कुछ करना, ठीक है अपन अपन रोजगार अपन अपन बिजनेस सबके अपन अपन क्वालिफिकेशन पढ़ाई लिखे के अनुसार दिशा ला चुनते, लेकिन खेती में भी ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे हो के खेती कर रहे हो करके एला नहीं सोचना चाहिए।
1: हाँ।
0: पढ़े लिखे होए के बाद भी खेती एक ऐसा चीज है ना कि एक बार करी तो समझ में आई, जब मैं करत हो ना तो मोर मन अभी इतना ज्यादा होगी कि मैं अभी लगभग 20 से 25 एकड़ में अगले साल वरना टमाटर के खेती करे बर मैं सोचत हूँ।
1: हाँ।
0: और ए साल में करे रहे लगभग 2.5 एकड़ में।
1: हाँ।
0: और मैं 15 से 20 लाख रुपए मोर आमदनी हो रही, तो मैं ना अब सोचत हूँ कि मोला खेती में ही आगे बढ़ना।
1: देखिए कितना सुगर राउर बात करत थी और भाई इतना ऊर्जा है राउर जग, 1-2 साल राउर खेती करे कर बाद इतना प्रोत्साहित हो गए कि भाई आने काम ला राउर कहती कि वो बेकारे है एक तरह से।
0: हाँ।
1: और खेती पाती में करके लाभ कमाना है राउर ला। मिर्चा खेती करता करी? हाँ,
0: मिर्चा खेती लगभग 1 एकड़ में लगा ही, तो अभी मैंने हार्वेस्टिंग तो नहीं करे हो, बाकी तैयार होगी से फसल तैयार है, अभी 1 सप्ताह के अंदर टूट जाये 50 से 1 क्विंटल लगभग
1: है ना।
0: हाँ।
1: तो देखी भाई यहू बढ़िया राउर ये चटिक मटिक बताते नहीं, जेहर टूटी तेहर 50 किलो 1 क्विंटल ले कम टूटी नहीं।
0: हाँ।
1: तो नगद दे भाई रोट रोट जगह में लगाए ही।
0: हाँ।
1: राउर माता जी ला देख के सीखे ही और वही ला दे आगू बढ़ा थी और खेती पाती में अपन रोजगार ला भाई चुने ही। और संग संग सबले बड़े बात ना कि अजय ले कहती कि पढ़ाई ला नहीं छोड़े हूँ,
0: नहीं छोड़े है।
1: अब तो नगद लगातार राउर पढ़त ही और ओकर साथ साथ खेती पाती करत ही। कहीं ना कहीं देखिए हमारे युवा किसान भैया बहनी मन राउर ला अगर सुनता है नहीं तो मन भी कहीं ना कहीं प्रेरणा पाही। तो बहुत बहुत धन्यवाद राउर के हमारे से गोट बात करें।
0: धन्यवाद।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ, किसान भैया बहनी हो, देखिए दे सुघर अजय संदेश सुनेन और संदेश ले पहले सुनेन। क्रम स्मार्ट कृषि में देवेंद्र यादव ग्राम दीवानपुर पत्थलगांव जिला जसपुर कर किसान से गोट बात विषय रहीस तरबूज टमाटर और

गगन कर खेती से लाभ। अब बेरा होगी सहाय देखी आगु गोट बातला बढ़ाए कर बकी देखी अभी माए गोट बात सोचत रहन कि का विषय में करूँ तो सुरता इसकी चट्टी के दे कद्दू वर्गीय सब्जी मन कर कैसे वह बढ़िया खेती पाती कर सकत ही ते विषय में गोट बात करे कर। तो देखिए अगर हमरे कद्दू वर्गीय सब्जी मन कर फसल लेना चाहती तो सबले पहले देखी जानना पड़ी कि भाई का होयल ए वर्गीय सब्जी में। तो हमरे भाई लौकी ले सकत ही, खीरा ले सकत ही, करेला होगी सब अजय गोट करें ते तरबूज घलो हो सकेल, तोरई हो सकेल, एकस हमरे बढ़िया अगर उन्नत तकनीक से लेहत ही तो लाभ कमा सकत ही। लेकिन कोई खेती करे ले पहले जरूरी है जानना कि कौन कस जलवायु में खेती पाती हो सकेल जेला हमरे करना चाहती तेकर। तो देखिए अगर हमरे कद्दू वर्गीय सब्जी कर फसल लेना चाहती तो भाई बढ़िया गर्म और आर्द्र जलवायु बढ़िया रहल कथे विशेषज्ञ मन। संग संग देखी भाई ये दे पानी निकासी कर सुघर बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए और दोमट और बलुई मिट्टी अगर बढ़िया है तो ओकर ले बढ़िया काहीं नहीं हो सके। संग संग अगर हमरे पीएच मान कर जानकारी जुटाए सकत ही तो जुटाए के जरूर जानकारी निकालना चाहिए कि 6 से 7.5 पीएच मान हर कद्दू वर्गीय जो फसल है तेला अगर हमरे लेना चाहती तो ओकर बर सुघर रहेल। खेत कर तैयारी ओकर बाद दूसरा नंबर पर महत्वपूर्ण हो जाए भाई ओहर देखी जरूरी है। तो अगर हमरे कद्दू वर्गीय सब्जी कर खेती करना चाहती तो खेत कर तैयारी में 2 से 3 बार बढ़िया जुताई करके माटी ला भुरभुरा बना लेना चाहिए और अंतिम जुताई कर समय बढ़िया सड़ल गोबर कर खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फेंटना चाहिए, मिलाना चाहिए। और संग संग एक बात जिला मैं शुरू में कहें कि भाई पानी निकासी कर व्यवस्था जरूर बना के रखना चाहिए नहीं तो फसल हर सड़ जाही। ओकर बाद देखी किस्म कर चयन और भी महत्वपूर्ण हो जाए। अगर लौकी हमरे वो लेना चाहती तो कौन कौन दे किस्म हो सकेल तो पूसा नवीन हो सकेल, अर्का बहार हो सकेल। उसने अगर करेला हमरे लेना चाहती तो पूसा विशेष है, संग संग प्रिया है, खीरा में भी पूसा उदय है, स्वर्ण पूर्णिमा है, कद्दू में अर्का सूर्य है, पूसा विशाल है, तरबूज में देखी सुगर बेबी और अर्का ज्योति। ये देखिए अनुशंसित कहब तो भाई किस्म है। और अगर समय कर बात करी तो देखिए दे तीनों समय में ले सकते ही। तीनों समय कह कर बात ऐसे है खरीफ में चाहे गर्मी में चाहे जायद में। अगर हमरे गर्मी कर गोट करी काबर की अभी तो देखी भाई गर्मी हर है तो गर्मी में अगर लेना चाहती तो समय देखिए वैसे जनवरी फरवरी रहेल। लेकिन आए वाला समय में भी अब हमरे खरीफ मेला ले सकते ही कब जून जुलाई में बढ़िया समय रहेल विशेषज्ञ मन कथे। तो देखिए अगर हमरे जून जुलाई में लेती तो भाई बढ़िया है, तैयारी का समय भी है अभी हमारे जग। बीज कर मात्रा ध्यान करना है कि 2 से 5 किलोग्राम जो है बीज प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीज ला बढ़िया देखिए उपचारित कर लेना चाहिए। और भाई बुआई कर विधि में हमरे अपन अपन तरीका से चाहे गढ़ा कर माध्यम से चाहे मेड़ बनाए के चाहे मल्चिंग तकनीक हर सबले बढ़िया है अजय कर समय में। और ड्रिप कर व्यवस्था बना लेती तो ओकर ले बढ़िया काही नहीं है। तो वही तरह से देखिए भाई बढ़िया खाद मन कर व्यवस्था करना है और बुआई कर तुरंत बाल बढ़िया हल्का सिंचाई कर देना है। और अगर गर्मी पड़ता है तो 5 से 7 दिन कर आतर करके सिंचाई जरूरी हो जाए। और फूल और फल बने कर समय नमी कमी नहीं होना चाहिए एकर ध्यान रखना है। एक हमरे कद्दू वर्गीय सब्जी मन कर उन्नत बुआई करके और फसल उत्पादन में लाभ ले सकत ही। बाकी देखी बेरा होगी सहाय एगो आऊ गीत कर तेकर बाद मंडी भाव और मौसम कर गोट करूँ। तो बरखा पानी हर नगद जरूरी है भाई, गुहार करना जरूरी है, अगुरना जरूरी है। तो लगी सुनती आलिक राम और उनकर संग तामन कर गाल बढ़िया जसपुरिया कर्मा गीत।

तो देखी भाई, ये दे बरिशो पानी हमर देशे, हर जरूरी होगी सहाय, और जितना जल्दी बरखा पानी हरा ही गर्मी ले मिली ये दे छुटकारा। आलिक राम और उनकर संगता मन गाई ने सुघर गीत ला, भगी बेरा होगी सहाय मंडी भाव मौसम कर जानकारी कर। तो देखी भाई, मंडी भाव कर गोट करी तो राम तिल चलत है 7,000 रुपया प्रति कुंटल, कोदो 3,250 रुपया प्रति कुंटल, उसने दे गेहूं कही तो 2,428 रुपया प्रति कुंटल, और मक्का कही तो 1,400 रुपया प्रति कुंटल। उसने मौसम कर बात करी तो आज कर अधिकतम तापमान रहीस 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहीस 23 डिग्री सेल्सियस। काल कर अनुमानित है अधिकतम एतरेज 43 डिग्री सेल्सियस रहकर और न्यूनतम 1 डिग्री बाढ़ी 24 डिग्री सेल्सियस रहकर संभावना है, और गर्मी में चटिक देखिए दे भाई बढ़ोतरी होकर संभावना है। तो जरूर तिहा करी, ध्यान करी और ध्यान करके ही घरेले बाहरी हिंकली, बाकी ये समय है ध्यान कर, तो जरूर अपन ध्यान रखब, बेरा होगी सहाय आज कर चौपाल ला यही जग समेटे कर, तो आने दिन फिर भेंट होही, चलल जाए, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी अंबिकापुर केंद्र के इस खूबसूरत मंच पर। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी प्रियंका और अगले कुछ पलों तक हम साथ बिताएंगे संगीत, मुस्कुराहट और आपकी पसंदीदा फरमाइशों के संग आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी फरमाइशों का कारवां।

कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है देवीगंज रोड अंबिकापुर से। राजकुमार नेभवानी, संगीता आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और परिवार के सभी सदस्य। कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवण भामबिस्टे, अनीता और राहुल भामबिस्टे। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। ग्राम रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा विमलेश, दिव्यांश बघेल और परिवार के सभी सदस्य। जिला नांदेड़, इताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती। बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से वसीम अकरम और परिवार के सभी सदस्य। गांव कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युधव कड़वासरा। पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नशीम बेगम, आयशा खान, सोएब खान, मुश्तफा खान, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद और असीफा परवीन। ग्राम कुंज नगर पोस्ट जयनगर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेमलता देवांगन, अमीर तांजे, महिमा देवांगन, श्रेया देवांगन। अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं परदेश फिल्म का ये गीत। अलका याग्निक, उदित नारायण और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

दिल को छू लेने वाला ये गीत उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म फर्ज से। गायक कलाकार हैं मुकेश और लता मंगेशकर, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है। चनोरा जिला फिर

फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से सी कुशवाहा मंजुलता, राम और श्याम रवि आर्यन रंजीत कुशवाहा और रामनंद कुशवाहा, औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान, कुन्नी चौक नवापारा लखनपुर सरगुजा से मुनेश राम, सालिनी, रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी, दीपांशु और परिवार के सभी सदस्य, पौड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा से ओम प्रकाश यादव, संतोष तारा, सरोज, संध्या, साक्षी, गया प्रसाद यादव, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल साय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लकी मरकाम, सीताराम मरकाम, सितंबर मरकाम, अमरनाथ, मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़ी, पांडेराम राजवाड़ी, हीरालाल, नूर साय, कविता और आरती। इसी गीत के लिए इंस्टा फरमाइश मिली है हमें ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन, बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा, भाटापारा से रोहित जयलक्ष्मी और लक्ष्मी जयलक्ष्मी, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू, राजेंद्र सिंह रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ, ग्राम चरौदा बार नवापारा जिला बलौदा बाजार से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू और ज्योति ठाकुर, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयसा सबीहा, अनस और रेहान, वीर सिंहपुर पाली जिला उमरिया से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह और ओम प्रकाश सिंह। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर यह प्यारा सा गीत।

संगीत कभी याद बन जाता है तो कभी किसी खास पल का एहसास, और जब गीत आपकी पसंद का हो तो सफर और भी खूबसूरत बन जाता है। लीजिए अब पेश है एक और शानदार नगमा सिर्फ आपके लिए। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में अगला गीत है, फिल्म है जान की बाजी। गायक कलाकार हैं एस जानकी, मोहम्मद अजीज और साथी, गीतकार हैं अनजान और संगीत निर्देशन है अनु मलिक का। इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी। जय जिनेंद्र श्रोता संघ पर भड़ी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और परिवार के सभी सदस्य। ग्राम पंचायत खोंधला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके। बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आजाद। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। मटीना रोड मणि डबवली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू रानू, ईशु और परिवार के सभी सदस्य। जिला जालना मराठावाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत सैयद। निजामुद्दीन से धोतर जोड़ा आस्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सावले, रेखा सावले, हिमांशु अनुराग और परिवार के सभी सदस्य। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत और परिवार के सभी सदस्य। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये प्यार।

श्रोताओं, आपके संदेश और फरमाइशें हमारे संगीत भरे सफर को हर बार खास बना देती हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म मैंने प्यार किया से। गायक कलाकार है लता मंगेशकर, गीतकार है अर्शद भोपाली, संगीत निर्देशन है राम लक्ष्मण का। इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है कुम्हार गली श्रीरामपुर से, अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली।

रोहिणी दले ऋषिकेश और जीविका दले, श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से, डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका सानू कुम्भार और अर्चना कुम्भार, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे, अंबेडकर चौक वाकोडी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज, साधुल शहर राजस्थान से राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़, मल्हार मचहा से राजकुमार पटेल, श्रीमती गोमती पटेल, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरिनाथ, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, वैदेही जोशी, बेबी आयश, अंशिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयमंत्री केवट, पदमा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, डाघाट रोड जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह और वेदा सिंह, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में अगले गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है गांव टोरोवाल जिला नवा सहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा और काफिर भाई, चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से जज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम और इरफान, मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा और परिवार के सभी सदस्य, फाजिलका पंजाब खेड़ा से विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, शाली खेड़ा, टिवानसी खेड़ा और परिवार के सभी सदस्य। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, सगुन बारासा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा, कपिल शिपा और पूजा परिहार, रायपुर से विनोद वंडलकर, बीड़ा वंडलकर और विविधा, अररिया बिहार से फैशल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा और परिवार के सभी सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं हिमेश रेशमिया की आवाज में आशिक बनाया आपने फिल्म का ये गीत, संगीत निर्देशन है हिमेश रेशमिया का।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें इंस्टा फरमाइश मिली है। नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, ऐश्वर्य, प्रीतम और मनोज यादव, अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, जावेद अंसारी, जैस्मीन, सकीला और परिवार के सभी सदस्य, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, निवान, मायंडी, सौरभ और साइना, गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, दीपल परमार और हर्ष परमार, पंजाब से मोहम्मद हफिजूर रहमान, मजनू कटेला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, गुजरात पाटन से धीरज वीरबारी, जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खार, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना। आप सभी सुनना चाहते हैं जोश फिल्म का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार है समीर और इसी गीत की फरमाइश की है उन्हें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भीरूलाल वाक्तारिया ठाकड़, भोला वाक्तारिया, प्रवीण वाक्तारिया, रियांश वाक्तारिया और प्रतीक। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश की आखिर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो लम्हे फिल्म का गीत केके की आवाज में। गीतकार है नीलेश मिश्रा, संगीत निर्देशन है प्रीतम का। इस गीत के लिए हमें इंस्टा फरमाइश मिली है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल, चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता और परिवार के सभी सदस्य, धुलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता, आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय, शुभम और पवन, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन, दुर्गा कॉलोनी हांसे से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, दादा बाबू रोड गेडी झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत, और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है गांव राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया और आयान बाबू। पाइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आज का ये संगीत भरा सफर आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी नई फरमाइशों, नए गीतों और ढेर सारी प्यारी बातों के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी रेडियो साथी प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में समाचारों का अनुप्रसारण हम दिल्ली केंद्र से करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित

0: विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in।

0: या afcat.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की

0: बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अगला नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत निर्देशन है मदन मोहन का, फिल्म है वीर ज़ारा।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। कुमार सानू की आवाज में संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का, गीतकार है इब्राहिम, फिल्म है कहो ना प्यार है

श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। कल घर आंगन कार्यक्रम के अंतर्गत फोन इन बातें करें गीत सुने की रिकॉर्डिंग की जाएगी। समय सुबह 10:30 से 11 बजे तक। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, अपनी बातें साझा कीजिए और अपनी पसंद के गीतों का आनंद लीजिए। कॉल करने के लिए नंबर 2319172318188 और STD कोड है 07774। सूचना समाप्त। इसी के साथ चित्रपट संगीत का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का संगीत की मीठी धुनों और आपके प्यार भरे संदेशों के साथ शुरू हो रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो साथी प्रियंका। श्रोताओं, आपके भेजे हुए ईमेल्स में छुपी भावनाएं, दिल से निकली फरमाइशें और गीतों की मधुर खुशबू आज के इस कार्यक्रम को बनाएंगी बेहद खास। तो मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ एक खूबसूरत और सुरीले सफर में।

कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है सदर बाजार कुरावली से अनिल वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा का। ग्रामला शूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला रायगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। यशोदा हमारे राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल रणजीत कौर, मन्नत गुरक्रीत, राहुल गुरशब्द सिंह। क्लब अकोला से के शरद पाचपुर, श्रीमती शोभा पाचपुर, बेबी वैदी ही, विहान बाबू, रश्मि, अक्षय और अभिनव पाचपुर। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल जैनब मुजावर। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। बलौदा छत्तीसगढ़ से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद और समृद्धि पटेल। छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार डोम, संदीप जाटव, लड्डू जाटव और टुकटुक जाटव। उमरखेड़ से सिराज खान और शबाना खान। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता आयुषी, सागर यशी, हनी पूजा सीता। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत, परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी और परिवार के सभी सदस्य। मिट्ठू मुंडा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई। आप सभी सुनना चाहते हैं रोग फिल्म का ये प्यारा सा गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

पेश है कार्यक्रम का अगला नगमा, कमाल खान की आवाज में संगीतबद्ध किया है रजत अरोरा ने, फिल्म है द डर्टी पिक्चर। इस गीत के लिए हमें ईमेल मिला है आप सभी श्रोताओं का। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा, कापसहेड़ा दिल्ली से फिरोज खान अहमद मोगा, इकबाल मोगा, जालंधर से संदीप जाटव और सुरेश जाटव, मेरठ कैंट से राधिका साक्य और दिव्या अग्रवाल, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार, इंदिरा विहार दिल्ली से बीबी अंसारी, निशा परवीन और डब्लू अंसारी, जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शरफुद्दीन अंसारी, जालंधर से संदीप कुमार जाटव, राजकोट से प्रेमा रानी जाटव, डॉली और सुरेश, गुजरात से प्रवीण राज सोनी और श्वेता सोनी, चमनपुरा मोरबी से प्रमिला जेटली, दीपक और आशु जेटली, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम, डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अलकबीर, डुमराव से अशमा अंसारी, आमना परवीन, टुकटुक अंसारी, लड्डू अंसारी, गाजियाबाद से शीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी, डोंडी छत्तीसगढ़ से मास्टर कबीर, डोम और राधिका, बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री अंजलि करवा और बाबा साहेब करवा। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और पढ़ते हैं आपके ईमेल। कार्यक्रम की अगले गीत के लिए हमें ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्रव्या रामटेके, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास शेख आज़ाद, ग्राम बेवरा संबलपुर से शिवदयाल वर्मा और नरोत्तम वर्मा, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी, बेताब रेडियो लिस्नर्स क्लब पटना बिहार से वसीम अकरम, सालेहा खातून और गुड़िया खातून, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर और आदेश कुमार काले, बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर और विशाल निशा, पलेरा जिला टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर मदहोशी फिल्म का ये प्यारा सा गीत साधना सरगम और उदित।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अगले गीत के लिए हमें ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम, कुरुक्षेत्र से दीपक सैनी, प्रमिला और अनुश्री सैनी, महादेवपारा से मीरा सिमरन और योगेश कुमार राजवाड़ी, डुमराव से वली उल्लाह अंसारी, सोनम और अस्मा वली, जालंधर से अजय देव जाधव और संदीप जाधव, रेडियो

दीवारे ग्रुप दिल्ली से रेशमा अंसारी, निशा और सकीला। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। मिनिस्ट्री रोड न्यू दिल्ली से कीर्ति नगर, माफ़ कीजिएगा, गौरव अनिल मानसी, कविता अरोरा। ये श्रोता हमारे दिल्ली कीर्ति नगर से हैं। आप सभी सुनना चाहते हैं ऐतराज़ फिल्म का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इसी गीत के लिए हमें ईमेल मिला है डेरपाटन गुजरात से धीरज वी रबारी, रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मुअज्जम शेख और परिवार के सभी सदस्य, जेल रोड जलंधर से रोशन जहां और मन्नत जहां। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम के आखिरी गीत के लिए हमें ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता हैं अंबिकापुर से स्वरूप आनंद और परिवार के सभी सदस्य, देवरी भाटापारा से KR साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव और समर्थ नामदेव। आप सभी सुनना चाहते हैं ए दिल है मुश्किल फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल की गूंज, मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग प्रधान।

नमस्कार श्रोताओं, शास्त्रीय रागों पर आधारित सुरीले कार्यक्रम राग प्रधान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए सुर और संगीत के इस खास कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम राग प्रधान का पहला गीत। फिल्म है लाल पत्थर, गायक कलाकार हैं आशा भोसले और मन्ना डे, संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन का। ये गीत यमन राग पर आधारित है। ये एक संपूर्ण जाति का राग है।

जिसका वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद है। इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है।

सुरों की मिठास और रागों की खूबसूरती लिए कार्यक्रम राग प्रधान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा ये गीत भूपेंद्र सिंह की आवाज में, संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने, फिल्म है परिचय। ये गीत राग मिश्र हेमंत पर आधारित है। मिश्र हेमंत राग एक सुरीला

और भावपूर्ण राग माना जाता है। यह मुख्य रूप से शीत ऋतु और शांत मधुर वातावरण से जुड़ा हुआ राग है। मिश्र शब्द का अर्थ है इसमें अन्य रागों के स्वर या रंग भी हल्के रूप में शामिल किए जाते हैं, जिससे इसकी प्रस्तुति और भी मधुर बन जाती है।

हर राग अपने साथ एक अलग एहसास लेकर आता है। आइए सुनते हैं अगली मधुर प्रस्तुति फिल्म गुड्डी से। गुलजार की शब्द रचना को स्वर से सजाया है वाणी जयराम ने और संगीतबद्ध किया है वसंत देसाई ने। ये गीत राग मियां मल्हार पर आधारित है। मल्हार प्रकार में ये सबसे अधिक प्रचलित तथा सर्वमान राग है। इसमें गंधार और निषाद स्वर कोमल हैं। म रे प और नी ध नी ये स्वर संगीत इस राग की जान है। मान्यता है कि ये राग मियां तानसेन के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। ये एक रात्रिकालीन राग है।

शास्त्रीय संगीत की यही खासियत है कि यह सीधी दिल को छू जाता है। राग प्रधान कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है लता मंगेशकर के स्वर में। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है मदन मोहन ने। फिल्म है दस्तक। ये गीत राग दरबारी सिंदूरा पर आधारित है। यह एक चंचल और अपेक्षाकृत हल्का राग है जिसका उपयोग अक्सर उपशास्त्रीय संगीत में होता है। यह काफी थाट से उत्पन्न राग है।

कार्यक्रम राग प्रधान की अगली प्रस्तुति है तलाश फिल्म से। गायक कलाकार है मन्ना डे, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत निर्देशन है एसडी बर्मन का। ये गीत राग मांज खमाज पर आधारित है। राग मांज खमाज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही मधुर और लोकप्रिय राग है। यह मूल राग खमाज की ही एक शाखा या प्रकार है, जिसकी उत्पत्ति अलाउद्दीन खान के मेहर घराने से मानी जाती है। भावपूर्ण प्रकृति के कारण यह ठुमरी, टप्पा और गजल के लिए बहुत ही पसंद किया जाता है।

कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है ये गीत मन्ना डे के स्वर में। शाहिर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है रोशन ने। फिल्म है दिल ही तो है। ये गीत राग भैरवी पर आधारित है। राग भैरवी ये एक संपूर्ण जाति का राग है। इसमें ऋषभ तथा धैवत कोमल प्रयोग किए जाते हैं, बाकी स्वर शुद्ध हैं। ये एक प्रातःकालीन राग है। भैरव स्वयं एक थाट है। इसका वादी स्वर धैवत और संवादी स्वर ऋषभ है।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम राग प्रधान यहीं समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
2: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी।
1: चलिए बनाए एक मिसाल अपने प्यारे संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
3: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।

मीडियम वेव और FMN पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मन भावन में। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमें पत्र मिला है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से।

ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहरा जहां का। देवी गंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार ने भवानी, संगीता ने भवानी, आकाश ने भवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी और परिवार के सभी सदस्य। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्य। पुणे से पंकज कुमार, आर्या, प्रियंका वाडोदे, बाबा साहेब वाडोदे और चंद्रप्रभा वाडोदे। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना, परी, गणेश मराठा, कार्तिक भाव मराठा, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता खर्चे और नारायण भाव खर्चे। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और साथी की आवाज़ों में सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है जीवा फिल्म से। गायक कलाकार है आशा भोसले और अमित कुमार। इस गीत के लिए हमें पत्र मिला है आप सभी श्रोताओं का। अलगीरार जिला कोरबा से जोहित यादव, विपिन आयुष और श्रीमती फूलजी यादव। डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बिबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन। राजापुर जिला सूरजपुर से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती जानकी प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर और प्रशांत प्रजापति। सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरिस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, कासिफ हासिम और इरफान मीना। रेलवे कॉलोनी बटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक और शोभा नायक। सत्यम क्लब फूलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम हिमांशु, काजल यादव और अनुष्का यादव। तो ये सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं सिवनी कोंडागांव छत्तीसगढ़ से सुभाष चक्रधारी, श्रीमती कविता चक्रधारी मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी, शालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेहरजुद्दीन कैशरुद्दीन और नजमुद्दीन, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, श्रीमती प्रमीला और ज्योति श्याम कुंवर,

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774, 230, 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म कर्ज से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और साथी, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के लिए हमें पत्र मिला है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण

गीतू, निहारिका और वंशवत्ता का। इसी गीत को सुनना चाहते हैं शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। करजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से कुलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, दीपक चांदनी, दीपा और कृति। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा सारदा और दामिनी वर्मा का। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति और परिवार के सभी सदस्य। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधली और आरती जोंधली, बेलरगांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। आप सभी सुनना चाहते हैं कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में।

कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है आराधना फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत के लिए हमें पत्र भेजने वाले हमारे श्रोता हैं खोंदला बड़कापारा विकासखंड उदयपुर जिला सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, सोमार साय करेश्वर पैकरा और करिश्मा पैकरा, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और परिवार के सभी सदस्य, चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, निजामाबाद आंध्र प्रदेश से वासुदेव सावलानी, अशोक कुमार सावलानी और डीएम मोटवानी।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं पहरा अहिरवार जिला दुर्ग से पोषण वंशोर चंद्रकिरण प्रीति और छाया। छत्तीसगढ़ छुरी से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, महेंद्र सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, मानु शानू और परिवार के सभी।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन भावन के आज के अंक से अपने रेडियो साथी प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: Discussions focused on enhancing cooperation.
4: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने

0: की प्रतिबद्धता दोहराई
1: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Navanita Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1,267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defence and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cyber security, maritime security and counter-terrorism.
4: Aaj humne cyber security, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
3: Later, President Draupadi Murmu received Cyprus President Nikos Christodoulidas at Rashtrapati Bhavan today. She also hosted a banquet in his honour. Welcoming President Nikos Christodoulidas and his delegation to India, President Murmu said India and Cyprus share close relations based on trust and goodwill. She said bilateral relations have been elevated.